मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 11, तदनुसार 1 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति कह के नहीं जने छ। महाकवि माँ गंगा के स्तुति कतिपय पद में कहने छाती। नगाधिराज हिमालय सँ बहराए गंगा अपन अमृतोपम जल सँ भारत भूमि के प्राणवंत बनबैत बंगोप सागर में मिल जाए छ। विद्यापति अपना पद सब में गंगा के माय कही संबोधित कहने छाती। महाकविक संबंध में एकटा जनश्रुति प्रचलित अछि। महाकविक इच्छा छलन जे ओ गंगा कात जाय देह त्याग कराथी। अंत समय लौ गेला पर हुनका लोक गंगा कात लौ जाय लगला। बाट में पड़ गेल साँझ। राति बितेबाक लेल लोक सब ओतहि अटक गेल। ओ स्थान संप्रति समस्तीपुर जिलाक विद्यापति नगर कहबै छै। गंगा ओतहि सँ चारि कोस पर रहती। स्वजनक शांति देखि कवि हृदय व्यथित भेल। कवि गंगा सँ प्रार्थना करे लगला। माँ गंगे हम जीवन पर्यंत अहाँक स्तुति आ पूजा कैल। आब हम एहि संसारक त्याग कऽ रहल छी। अहाँक पावन स्पर्शक लेल हम अतेक दूर अयलहुँ। की अहाँ अपना एहि अबोध शिशुके नहि अपनायब? हम शारीरिक दृष्टिये अक्षम छी माँ, चलि फिर नहि सकै छी। की अहाँ अपना बालककेँ कोरमे नहि लेब? माँ गंगे अहाँ करुणामयी छी, की अपन अमृत धाराक स्पर्श हमरा नहि करायब? करुणा विगलित स्वरें महाकवि माँ गंगाक आवाहन करय लगलाह। भोर भेल। लोक देखैये जे गंगाक धार समीपे में बहि रहल अछि। सब आश्चर्य चकित रहि गेल। माँ गंगा अपना बालक के निज कोर में समेटऽ लेल चारि कोस चल स्वयं आबि गेल छलिए। जना माय अपन शिशु के कनैत देखि ओकरा कोर में लबाक हेतु दौड़ी पड़ै छै। साँचे इच्छा शक्ति प्रबल वस्तु थिक। इच्छा शक्ति असंभवों के संभव कय देखबै छै।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।

0: अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है जून मास के प्रमुख कृषि कार्य, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं अनिल कुमार कर्ण।
1: किसान भाई लोकनि, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार कर्ण। एहि कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आई जून मास के पहिल दिन अछि, हम सब ई कार्यक्रम में जून मास में कोन कोन प्रमुख

0: कृषि काज सब अछि ओहि संबंध में विस्तार सँ गप करी। जून मास के कृषि के हिसाब से बड़ बेसी महत्वपूर्ण मास होइत अछि, किएक एहि मास में खरीफ फसिल सबके लगेबाक समय होइत अछि। गर्मी वाला तरकारी वाला फसिल सबक तैयारी सेहो आरंभ भ जाइत अछि। एहि मास में खेत के गहीर जकाँ जोताई कऽ कऽ ओकरा खुजल छोड़ देबाक चाही। बीज सबक उपचारित करब सेहो बड़ बेसी आवश्यक अछि। मानसून के वर्षाक लेल पानि के संरक्षण जेहन प्रमुख कृषि काज सेहो यह मास में कयल जाइत अछि। एहि मास में बड्ड बेसी गर्मी पड़ैत अछि, चारू दिस पानि आ बिजली के कमी बुझना जाइत अछि। हमसब तक कुसियारक रस, आम के रस व तरबुजा खा कऽ अपन प्यास के शांत कऽ लै छी, मुदा धरती आ गाछ वृक्ष सबके मानसून के आस लगौने रहैत अछि जे कखन बरखा होयत, जे पानि सँ तृप्त होयब। जून मास के पहिल सप्ताह में आम लीची सब फल वाला गाछ सबक लेल कोरल गेल खद्धा में माटिक संग अनुशंसित मात्रा में खाद आ उर्वरक संगे थीमेट तक को ऊपर धरि भर देबाक चाही। जखने बरखा आरंभ भ जाय तो हरियर खाद वाला फसिल सबके बुआई सेहो कऽ लेबाक चाही। गर्मा धान में निकोनी को नेत्रजन खाद के आधा मात्रा सँ अपने उपरवेशन कऽ सकै छी। शीघ्रता सँ खरीफ धान के रोपनी संपन्न कऽ लेबाक चाही। 15 जून धरि अगहनी धान के बिचरा सेहो गिरा देबाक चाही। किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान राखल जाय जे रोपनी के 15-20 दिनक उपरांत नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी के 12-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जखन खेत में पानि लागल रहे त छिड़काव कऽ देबाक चाही। ग्रीष्मकालीन मकई के फसिल के कीट व्याधि से सुरक्षाक उपाय सेहो करब आवश्यक अछि। अगात वर्षाकालीन मकई के फसिल में निकोनी कऽ लेबाक चाही। किसान भाई लोकनि एहि गप के ध्यान राखल जाय जे खरीफ मकई के रोपनी वाला काज मौसम देख कर जल्दी से जल्दी संपन्न कऽ लेबाक चाही, मुदा रोपनी से पहिने बीया के उपचारित केनाई कखनो नहि बिसरक चाही। शरदकालीन ईख के फसिल में नेत्रजन खाद के शेष मात्रा दऽ कऽ माटि चढ़ा देबाक चाही। बसंतकालीन कुसियार के फसिल में निकाई गुराई आ उपरवेशन वाला काज सेहो करब आवश्यक अछि। शकरकंद के फसिल तैयार भ गेल अछि तऽ अवसर देख कऽ ओकरा खुनि लेबाक चाही। संगे नर्सरी में बियाक लेल लत्ती सेहो लगा देबाक चाही। समय देख कऽ मेस्ता आ पटुआ के रोपनी वाला काज सेहो अपने संपन्न कऽ सकै छी। सोनापाट के फसिल के देखरेख आ निकौनी कमठौनी वाला काज संपन्न करब आवश्यक अछि। जे किसान भाई लोकनि गर्मा मूंग के फली नहि तोड़लहुँ अछि ओ काज के संपन्न निश्चित रूप से कऽ लेबाक चाही। एकर उपरांत हरियर खाद के लेल माटि पलटा वाला हर सँ ओकरा निक जकाँ जोत कऽ खेतक माटि में गाड़ि देबाक चाही। मूंग उड़ीद आ राहरि के मिश्रित खेती सेहो कयल जा सकैत अछि। मूंगफली तिल अंडी के बुआई सेहो अपने एहि मास में कऽ सकै छी, मुदा बुआई से पहिने बीया के उपचारित निश्चित रूप से करक चाही। ग्रीष्मकालीन मरुआ में उपरवेशन कऽ लेबाक चाही। वर्षाकालीन मरुआ के रोपनी सेहो करब आवश्यक अछि। खरीफ चारा वाला फसिल ज्वार बाजरा मेथ कलाई दीनानाथ के रोपनी सेहो अपने आरंभ कऽ सकै छी। बरसाती तरकारी सब में फफूंदनाशक दवाई सबक छिड़काव सेहो स्थित देख कऽ अपने कऽ सकै छी। पशु सबक प्रमुख रोग एंथ्रेक्स ब्लैक क्वार्टर जकरा डकहा कहल जाइए HS गलघोटू सँ बचाव के लेल मालजाल के टीकाकरण करा देब आवश्यक अछि। बानकी में बबूल खैर करंज गम्हार बकाइन के बिया सबके पौधशाला में लगा देबाक चाही। एहि संग आब आजुक कृषि चर्चाक समय संपन्न भ रहल अछि। अनिल कुमार कर्ण के चलबाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, विषय था जून मास के प्रमुख कृषि कार्य, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अनिल कुमार कर्ण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना UBT 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुक की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार IPL खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 96 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे टॉन्सिलाइटिस इस विषय पर, और इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय कुमार झा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि टॉन्सिलाइटिस क्या है।
2: टॉन्सिलाइटिस से टॉन्सिल का सूजन है। टॉन्सिल मुंह के अंदर मतलब जीभ के पिछले भाग में दोनों तरफ होता है। टॉन्सिल दो है।
1: अच्छा।
2: और इनका सूजन जो है वो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। मूलतः ये बच्चों की बीमारी है। इसमें बच्चों को तेज बुखार आना, कान में दर्द होना, खाने में तकलीफ होना, मुंह से लार आना, तेज बुखार होना, ये सब उसके प्रमुख लक्षण हैं। और इसका समय पर इलाज होना, एंटीबायोटिक दवाएँ और गार्गल से इसका इलाज होता है।
1: कैसे लोग समझें कि टॉन्सिलाइटिस है?
2: टॉन्सिलाइटिस को देखेंगे बच्चे के गले के दोनों तरफ देखेंगे कि एक उभार आ गया, गिल्टी आ गई गले में, और बच्चा बुखार में है, बच्चा को खाने में तकलीफ हो रहा है, खांसी भी हो रहा है, सर्दी है, तो समझें कि बच्चे को टॉन्सिल
1: निगलने में भी तकलीफ होगी। अच्छा, टॉन्सिल जो गले के दोनों भाग में आपने बताया उसमें दर्द होता है।
2: जी, दर्द होगा।
1: ऐसा देखा गया है कि जिस भी बच्चे को एक बार टॉन्सिलाइटिस हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, उसमें तकलीफ हो, तो बार बार ये समस्या आती है। इसकी क्या वजह है?
2: इसकी वजह भी इन्फेक्शन ही है। जो बच्चे, कुछ बच्चे प्रोन होते हैं किसी इन्फेक्शन के लिए। कहा जाता है कि इसको ज़्यादा सर्दी होता है तो उनका एक तो बॉडी का प्रीडिस्पोजिशन है, उसके शरीर की बनावट इस ढंग की है कि वो रिकरेंट इन्फेक्शन उनको होता है वहाँ पर टॉन्सिल का। तो इसके बचने के लिए ठंड से बचाव करना, ठंडा कोई पेय वगैरह नहीं पीना, और नियमित रूप से बच्चे को गार्गल घरेलू इलाज कराना तो ठीक रहेगा।
1: कुछ लोगों में भी, मतलब बड़े लोगों में भी ये समस्या होती है।
2: जी, बच्चों में, बड़े लोगों में ये समस्या कम देखी जाती है, लेकिन लक्षण उनमें भी यही प्रकट होगा। मूलतः लेकिन ये बच्चों की बीमारी है।
1: अच्छा, जब एक बार तकलीफ हो जाए, बुखार रहे, तेज बुखार भी हो सकता है, एक कम भी बुखार हो सकता है, लगातार बुखार बने भी रह सकता है, ये दोनों ही स्थितियाँ हैं। अगर तेज बुखार हो, कुछ भी निगला नहीं जाए, उस कंडीशन में लोग क्या करें?
2: पैरासीटामोल दें, बच्चे को सिरप दें, सियाने को इसका टैबलेट दें, और एंटीबायोटिक दवाएं दें।
1: और कोई भी दवा लें तो पहले विशेषज्ञ की राय जरूर लेंगे। उसे कितनी दवाएं देनी है?
2: जी हाँ, उसकी मात्रा, उसका निर्धारण तो चिकित्सक ही करेंगे।
1: अच्छा, टॉन्सिलाइटिस के बारे में कहा जाता है, कभी कभी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ये दवा से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन की स्थिति बन गई है।
2: ऑपरेशन की स्थिति तब होती है जबकि टॉन्सिल के ऊपर में मवाद बनाता है। अगर वो स्थिति आ जाती है तो वो और भयानक स्थिति, इसको पेरी टॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। अगर वो हो जाता है तो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराते हैं, या किसी को अगर बार बार इन्फेक्शन हो टॉन्सिल का तभी कराते हैं। साल में अगर 4-6 बार किसी को इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिल का, तो ऐसी परिस्थिति में टॉन्सिल का कराते हैं, या खाने में तकलीफ हो। उसके अलावा बहुत लोगों को स्नोरिंग की समस्या होती है, खराटे बढ़ने की समस्या होती है, तो वो भी बड़ा टॉन्सिल होने से होता है, तो उस सब परिस्थिति में टॉन्सिल का ऑपरेशन होगा।
1: टॉन्सिल का ऑपरेशन अगर एक बार करा लिया जाए तो क्या हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाती है, या फिर?
2: जी, टॉन्सिल तो नहीं रहेगा तो टॉन्सिलाइटिस तो नहीं होगा, लेकिन गले के और भाग में इन्फेक्शन हो सकता है जिसको फेरिंजाइटिस बोलते हैं।
1: जी, उसमें लोग क्या करें?
2: फेरिंजाइटिस का भी वही इलाज होगा जो कि टॉन्सिल का इलाज, टॉन्सिलाइटिस का इलाज।
1: अच्छा, कुछ सावधानियाँ, कुछ परहेज
2: जी
1: अगर लोग अपनाएं तो इस समस्या से जो बार बार उनका सामना होता है वो कम किया जा सकता है।
2: जी, उससे बचा जा सकता है।
1: क्या है ये सावधानियाँ?
2: ये सावधानियाँ है कि ठंड से बचाव करना सबसे पहले बहुत जरूरी होगा। धूल डस्ट ये सब, घर का जो झाड़ू वारू है, सबसे अपने को थोड़ा परहेज रखना। ये कोल्ड ड्रिंक्स सबका इस्तेमाल नहीं करना, ये जरूरी होगा परहेज में।
1: तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमने चर्चा की टॉन्सिलाइटिस के विषय में। डॉक्टर विजय कुमार झा, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: स्वास्थ्य चर्चा, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

नमस्कारा था शिव मंत्र, अभी आप सुन रहे थे सूर्य गायत्री के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भरत भाई कपि से हुरिन हम नाही। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज के स्वर में।

0: जगजीत सिंह के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे भूपेंद्र सिंह और ए हरिहरन को।
1: एपिसोड नंबर 394।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आपने सुना भूपेंद्र सिंह और ए हरिहरन पार्टी को। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दिन में 10:00, 12:00, 1:15 पर और दिन में 2:30 पर। विद्यापति गीतों का समय होगा दिन में 10:30 पर और हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत संध्या 6:10 पर। दिन के 11:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे पंडित जसराज। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन के 12:30 पर। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। शाम 5:00 हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। मैथिली संवाद आप सुनेंगे संध्या 6:25 पर। इसके तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गांव घर संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 से। फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनेंगे रात 10:00। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचक अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिना यू मिन आंग लाइंग इत्यनेन सह चर्चां करिष्यति। उभयोः

0: आकाशवाण्याः स्वकीये मासिक कार्यक्रमे मन की बात इत्यनेन कार्यक्रमेण राष्ट्रम् अभिसंबोधयन् श्रीमोदी झारखंड राज्यस्य रांचीनगरे आयोजिते राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धायां उदयोन्मुख क्रीडकानां उत्कृष्ट प्रदर्शनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। प्रवर्तमानायाः उष्णतरङ्गस्य स्थितिं प्रति चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमन्त्रिणा जनान् अधिकृतान् उपदेशान् अनुसृत्य सुरक्षितं स्थातुं पूर्वसूचनानुसारं कार्यं च कर्तुम् उद्बुद्धवान्।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: पश्चिम बंगाल राज्यस्य मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पञ्चत्रिंशत् नूतनाः मन्त्रिणः मन्त्रिमंडले समाविष्टाः भविष्यन्ति। शपथ ग्रहणं प्रातः एकादशवादने लोकभवने भविष्यति। नूतनेन समावेशेन शुभेंदु प्रशासने महत्वपूर्णरूपेण संवर्धनं भविष्यति, येन मई मासस्य नवमे दिनांके पञ्चमन्त्रिभिः सह कार्यभारं स्वीकृतमासीत्। अनेन विस्तारेण राज्यमन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणां कुलसंख्या एकचत्वारिंशत् यावत् वर्धिता भविष्यति। निर्वाचनायोगेन दश राज्यानां चतुर्विंशतिः राज्यसभासदस्यानां द्विवार्षिक निर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य घोषणा अद्य क्रियते। भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एच.डी. देवगौड़ा, केन्द्रीयमन्त्रिणौ जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंहश्च तेषु सदस्येषु अन्तर्भवन्ति। आन्ध्रप्रदेशे, गुजराते तथा कर्णाटके प्रत्येकस्मिन् राज्ये चत्वारि चत्वारि आसनानि सन्ति। राजस्थाने तथा मध्यप्रदेशे प्रत्येकस्मिन् राज्ये त्रीणि त्रीणि आसनानि सन्ति। झारखण्डे द्वे आसने स्तः, मणिपुरे, मेघालये, अरुणाचलप्रदेशे च, मिजोरमे च प्रत्येकस्मिन् राज्ये एकैकम् आसनं रिक्तमस्ति। आयोगस्यानुसारं जूनमासस्य अष्टादशदिनाङ्के मतदानं भविष्यति। मतगणना अपि तस्मिन्नेव दिने भविष्यति। महाराष्ट्रस्य, तमिलनाडुराज्यस्य, ओडिशाराज्यस्य च प्रत्येकस्य एकस्य आसनस्य कृते राज्यसभायाः उपनिर्वाचनस्य कार्यक्रमस्य अपि आयोगेन घोषणा क्रियते। एतत् निर्वाचनमपि अग्रिममासस्य अष्टादशदिनाङ्के भविष्यति। एकोननवतिवर्षीया प्रख्यातगायिकायाः सुमनकल्याणपुरस्य मुम्बईनगरे स्वनिवासस्थाने मृत्युः अभवत्। 50-29 शततमाद् वर्षात् 70-29 शततमं वर्षं यावत् चलचित्रसङ्गीतस्य स्वर्णयुगे नैकासु भारतीयभाषासु कृतकार्याणां कृते एषा वयोवृद्धगायिका प्रसिद्धा आसीत्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे अन्तिमस्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलं 5 स्तोभैः पराजित्य गतविजेतृदलेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इत्यनेन अस्य वर्षस्य श्रृंखलापि विजिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या

0: बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। सुमन 1950 से 1970 के दशक के फिल्मी संगीत में हिंदी, मराठी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में मधुर गायकी के लिए लोकप्रिय रहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंधन तेगचिनलिंग मठ में अहर्त सारिपुत्र और अहर्त महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोदसुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोगली वेंकटरामन ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये इस वर्ष की प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। रिले स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भूमिका, ताहुरा, सेहनूर और नीरू की महिला टीम ने 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने 3:38.07 के समय के साथ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी बनाया। काजल, भावना, आरती और निपम ने 4x100 मीटर में 45.05 के समय के साथ रजत पदक जीता। पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार और मोहम्मद अशफाक की पुरुष टीम ने 4x400 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया। ये चैंपियनशिप विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। विश्व चैंपियनशिप 5 से 9 अगस्त तक अमरीका के ओरेगन में यूजीन में आयोजित होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला।
1: नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा
0: और साथ में मैं हूँ कल्याण कुमार झा।
1: कल्याण जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार से।
0: आज का सुविचार हमने लिया है चाणक्य की उक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि वह जब भी बोलता है उसकी बोली हमें कांटों की तरह चुभती है।

0: आओर जहन सुविचार सुनि लै छी तकरा बाद उन्टबै छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना मे अजुका तिथि अर्थात 1 जून किया विशेष रूप से जानल जाइए ताहि पर एक नजर घुमा लै छी।
1: 1992 मे भारत एवं इजराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था, जी के दिन 2005 में अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। 2008 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 2010 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त बाला कृष्णन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आज के दिन कुछ हस्तियों के जन्म पर, तो 1929 में नरगिस जो भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी उनका जन्म हुआ था। 1938 में बलदेव वंशी समकालीन कवि एवं लेखक थे। 1927 में एस मुखर्जी जो भूतपूर्व 20वें मुख्य न्यायाधीश थे। निधन की बात करें तो 1996 में नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। 2010 में बाल राम नंदा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय के संस्थापक। 1987 में ख्वाजा अहमद अब्बास जो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक थे। 2020 में वाजिद खान जो प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे। 2001 में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह जो नेपाल के राजा और दक्षिण एशियाई नेता थे। दिवस की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस तथा विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है।
0: तो ई छल आजुक इतिहास। और इतिहासक बाद वर्तमान में आओ तो वर्तमान जे से अखन जेठ मास चल रहा है और जेठ मास में जे दुपहरिया हेबाक चाहिए से दुपहरिया अखन नहीं देखा रहा है। यद्यपि उमस गर्मी तो एक दू दिन से किछ बुझा रहा है लेकिन लगातार रहि रहि के जे छै से वर्षा भ जा रहा है जैसे वातावरण से
1: परिवर्तित लग रहा है।
0: हाँ हाँ अखन तो देखबा में निक लाग रहा है लेकिन कहल जाए छै जे जेठ मास में अगर गर्मी नहीं पड़े तो ओहो जे छै से प्रकृति के लेल ओकर जे मौसम के चक्र छै ओकरा में गड़बड़ी बुझियो ओकरा।
1: और गर्मी का जो प्रकार, एक उमस वाली गर्मी होती है और एक तपन वाली गर्मी होती है। जो मतलब जैसे कि हम लोग बचपन में जब थे तो उस समय देखते कि बैसाख और जेठ में वो पड़वा पछिया हवा के थपेड़ा जो झड़क मारता था वो सब अब गायब हो गया है। हाँ, वो नहीं दिख रहा है। अभी उमस वाली गर्मी ये बरसात की गर्मी होती थी जो दिन भर उमस पड़ा और कहीं से बादल आया बरस गया। हाँ, उस तरह की स्थिति लग रही है।
0: तो आप जो स्थिति है से मौसम के परिवर्तन भ रही है और मौसम के समय के जो है से परिवर्तन भ रही है। और ये अपने सबक ओत के नहीं छे, वैश्विक एकटा जे छे से समस्या छे और एकर कारण हम सब छे मनुष्य मात्र जे छे से एकर कारण छे। और चूंकि हम सब अपना आसपास में जे छे से वृक्ष के ओतेक महत्व नहीं दे पाबि रहल छे और वृक्षारोपण नहीं कर पाबि रहल छी और संगे प्रदूषण जे छे से ओकरा बहुत बेसी बढ़ावा दे रहा लिया। हम सब
1: प्रकृति के प्रति हम लोग साकांक्ष नहीं हो रहे हैं। पर्यावरण को असंतुलित करने के पीछे एकदम से भागे जा रहे हैं। संतुलन के पीछे जरा भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि पर्यावरण जब संतुलित होगा तभी मौसम भी सही दिशा में और सही स्थिति में गमन करेगा।
0: पर्यावरणक प्रति हर मनुष्य के संवेदनशील हेबाक चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जे एकदम नहीं भ रहा है वो ध्वनि प्रदूषण हुए, वायु प्रदूषण हुए आ कि अनेक कोनो प्रदूषण हुए।
1: हाँ, इसे अनेक प्रकार के प्रदूषण हैं जैसे कि भू प्रदूषण भी उसी के अंतर्गत आता है। तो ये तमाम जो बातें हैं उसके कारण जो मौसम का जो अस्थिरीकरण है, जो मौसम जिस समय जो मौसम होना चाहिए उस समय वो मौसम न होकर के कोई और मौसम होता है। अभी सुबह में आ रहे थे तो जो फांका इलाका हाँ, है हाँ, उसमें हम धुंध भी देखे हाँ,
0: हाँ, रात में ओस खसल है।
1: हाँ,
0: जेठ मास में अगर ओस खसे
1: हाँ,
0: तो वो शुभ सूचक नहीं है मौसम के हिसाब से।
1: हाँ,
0: लेकिन आप जो समय के चक्र छे जना पिछलो साल अहाँ देखने हेबे जे सौन भादव में वर्षा के अभाव रहले और तकरा बाद जहन दुर्गा पूजा छठ के समय एले ओहि काल में जे छै से हथिया में खूब वर्षा भ गेले और फिर बाढ़ के स्थिति उत्पन्न भ गेले
1: और इससे दोनों ही फसलों को उनका नुकसान हुआ। एक तरफ जहाँ खरीफ फसल बर्बाद हुआ वहीं पर वहीं दूसरी रबी को भी मतलब चौपट कर दिया। उसके लिए भी जिस जमीन में रबी की बुआई होती उस जमीन में जल जमाव हो गया।

0: और उसके कारण रबी फसल भी जो है सो चौपट हो गया।
1: तो मौसम के चक्र कोना सही हेतै तैमे वैज्ञानिक लोग लागल छै तो तहकीकात में या खोज में अन्वेषण में, लेकिन हमरो सभक ई एकटा जे छै से नैतिक दायित्व बनैए जो हम सब अपना आसपास में जे छै से वृक्षारोपण जरूर करी और पर्यावरण के जे छै से सुरक्षित और मने अनुकूल बनाकर राखी। और जहन मौसम अनुकूल छे अनुकूल रहत तो अपन दिनचर्या वही हिसाब से
0: जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, कभी उमस भरी गर्मी होती है तो कभी बारिश अचानक से आ जाती है, कभी धुंध देखते हैं सुबह में ओस गिरता है, तो इस तरह के मौसम में अपने दिनचर्या को हम किस तरह से संयमित रखें, किस तरह की दिनचर्या अपनाएं कि हमें स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े हमारे स्वास्थ्य पर।
1: तकरा लेल तो अपना स्वास्थ्य हाँ। के एहन अहाँ के बना कर रखा के है जे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा तो जिसमें मिला दे रंग उस हाँ। जैसा, तो अहाँ के अपना आप के ढाला पड़त ओहि में ओहि में अगर अहाँ ढल जाइ छी मौसम के संग अहाँ एडजस्ट कर जाइ छी तो अहाँ के स्वास्थ्य पर में प्रतिकूल असर जे छै से ककरो नहीं पड़त।
0: और उसके लिए जब जैसा मौसम रहे तब वैसा खान पान वैसी दिनचर्या अपनाना आवश्यक हो जाता है।
1: और तो पहिनेओ से कहल छै जे कोन मास में की खाएब की नहीं खाएब, तकर सभक आयुर्वेद में जे छै से व्यवस्था कयल गेल छै। और जना कि लोग पहले भादव में साग नहीं खाई, सौन में साग नहीं खाई छलै, भादव में दही नहीं खाई छलै, चैत में दूध नहीं पीबै छलै, तो ई सब चीज जे निर्धारित छै ओ ओकरा पालन हेबाक चाही। लेकिन आब की भ गेलै समस्या, तऽ अगर भादव में लोग दही नहीं खाई छलै तऽ भादव भादव जकाँ रहते तहन ने, आब तो भादव भ जाइ छै अखार जकाँ जेठ जकाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो ओहि में जे छै से अब ई सब समस्या भ रहल यऽ, तो किछु किछु सुधार के आवश्यकता छै। और जेहन मौसम छै ओहि मौसम के अनुरूप अहाँ के अपन खान पीन राखऽ पड़त। खान पीन अगर ओहि अनुरूप अहाँ रखै छी तऽ स्वास्थ्य अहाँ के जे छै से मने स्वस्थ रहत।
0: यानी अब मास के आधार पर नहीं, अब जिस मास में जैसा मौसम दिखे उस मौसम के अनुसार अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अगर भादव जैसा मौसम हमको जेठ में ही मिल रहा है तो हम फिर उसमें साग ना खाए, दही ना खाए, सावन जैसा मौसम अगर जेठ में मिले तो साग ना खाए, तो ये जो है सो अपनी अपने विवेक को भी चलायमान रखना होगा कि हम कौन से मौसम में क्या चीज़ खाएँ और क्या ना खाएँ, कैसा वस्त्र पहने कैसा वस्त्र ना पहने, किस चीज़ से मतलब वर्जित रखें किस चीज़ को और किस चीज़ को अपनाएं, तो ये आवश्यक हो जाता है।
1: आब जहन वर्जित राखा वाला गप अहाँ कहूँ तो हमरा लगे जे आब चर्चा के थोड़े काल के लिए वर्जित करी और गीत संगीत दिस बढ़ी और सुनी
0: सुनी
1: मैथिली सुगम संगीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जनै छे जोगिया कोनो जोग टोन, बहुत सुंदर
4: सरिता पराशर के स्वर में ये गीत मैथिली सुगम संगीत के अंतर्गत आपने सुना। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल का। हालचाल लेकर उपस्थित हैं मणिकांत झा।
3: नमस्कार। कल 2 जून के आयोजित हो वाला सहयोग शिविर के सफल बनेबा के लेल प्रशासनिक व्यवस्था जोर शोर से कैल जा रहा है। दरभंगा जिला में 18 प्रखंड के 36 पंचायत में, नगर निकाय क्षेत्र के 12 वार्ड में ई सहयोग शिविर काल्हि खन आयोजित कयल जायत। दरभंगा के जिलाधिकारी पिछला दिन बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बरुआरा पंचायत आ हायाघाट प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर सोहरा पंचायत के औचक निरीक्षण कयलनि आ शिविर के तैयारी के जायजा लेलनि। जिलाधिकारी दोनों प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशित करित कहलनि कि शिविर प्रारंभ हुआ से पूर्वे आमजन से शिकायत एवं आवेदन पत्र प्राप्त कलबा पर्याप्त संख्या में कर्मी के प्रतिनियुक्ति कैल जाए, जैसे आबे वाला नागरिक के कोनो प्रकारक असुविधा नहीं होन। वो स्पष्ट निर्देश दिलनि जे शिविर में प्राप्त हुआ वाला सब आवेदन के निर्धारित पोर्टल पर वही दिन ससमय अपलोड कर दिल जाए आ ओकर निष्पादन के प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कैल जाए। जिलाधिकारी कहलनि जे सहयोग शिविर के मुख्य उद्देश्य आम नागरिक के समस्या के प्रभावी एवं शीघ्र समाधान थिक। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा सुनिश्चित करबा करब, अवैध अतिक्रमण हटाएब, अवैध पार्किंग पर नियंत्रण आ व्यवस्था के प्रभावी बनेबाक उद्देश्य से जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में समीक्षा बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था के सुरक्षित एवं सुचारू बनेबा रखला के लिए

0: विभिन्न विभाग के बीच विस्तार सॅ चर्चा कयल गेल। दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमारक अध्यक्षता में बेनीपुर एवं बहेरी प्रखंड अंतर्गत सब अंचल के राजस्व कर्मी के विस्तृत समीक्षा बैसार पिछला दिन आयोजित कयल गेल। बैसार में सब राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित छलाह। बैसार में जिलाधिकारी राजस्व महाअभियान के अंतर्गत प्राप्त सब आवेदन के शीघ्र पोर्टल पर अपलोड करबाक निर्देश अंचलाधिकारी लोकन के दिलन। सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विश्व तंबाकू दिवस कल मनायल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करैत विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कहलन जे निशा हमारा जीवन के लेल अभिशाप थिक। आई हम पूरा भारतवर्ष के निशा से मुक्ति देवक लेल संकल्प लड़ रहल छी। ओ कहलन जे एहि अवसर पर कॉलेज में उपस्थित कर्मचारी और छात्र लोकन के शपथ सेहो दियलन। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहल छी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। विक्रमशिला सेतु भागलपुर पर आवागमन ताधरि सुचारू नहीं भ जायत ताधरि आम जनता के नाव पर कोनो शुल्क नहीं लगते हैं। ये बात बिहारक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहलन है। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन के लऽ कऽ ओ समीक्षा कऽ रहल छलाह। श्रद्धालु के सुविधा एवं सुरक्षा के ध्यान में रखैत श्रावणी मेला 2026 के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीका से पुख्ता तैयारी सेहो कयल जा रहल है। प्रस्तावित भागलपुर गंगा पथ आ मुंगेर गंगा पथ के संबंधित जे कोनो समस्या है ओकर त्वरित समाधान सेहो होयत। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास गौरवशाली है, ओकर पुनर्स्थापित कयल जायत से मुख्यमंत्री कहलन। मुख्यमंत्री भागलपुर जिला अंतर्गत 2.3 करोड़ रुपया के लागत से 84 विकासात्मक योजना के क्रिया के उद्घाटन कयलन आ शिलान्यास सेहो कयलन। सूफी मत के सिलसिलाए मजारिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत मखदूम भिखा शाह सैलानी रहमतुल्लाह अल्लाह के 377वां सालाना उर्स मुबारक के कल शुभारम्भ भ गेल। एहि अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु लोकन जुटलाह। 31 मई से 4 जून तक ई उर्स मनायल जायत। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के मुंबई में निधन भ गेलन। 89 वर्षीय सुमन के गौल अनेक गीत श्रोताक हृदय पर अमिट छाप छोड़ गेल अछि। हिनक निधन से संगीत जगत में शोकक लहर पसरि गेल। एहिक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: विज्ञापन से पूर्व आप अवगत हो रहे थे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित हालचाल से। हालचाल लेकर उपस्थित थे मणिकांत झा। और मणिकांत जी, अब श्रोताओं को अवगत करवा दें मौसम पूर्वानुमान से। तो श्रोताओं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 30 मई 2026 से 3 जून 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों तक उत्तर बिहार के जिलों में वर्षा की संभावना बने रहने की आशंका है। उसके बाद मौसम के

0: आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 48 घंटों में जिस क्षेत्र में वर्षा होगी हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उसके बाद हवा की रफ्तार कम होने की संभावना है। अधिकांश क्षेत्रों में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो सुबह में 85 से 90% तथा दोपहर में 35 से 40% रहने की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: एक बार पुनः कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में अपने लोग स्वागत है। हम श्री मणिकांत
0: और साथ में मैं हूँ कल्याण कुमार झा।
4: कल्याण जी, आई जे दिवस के यहाँ चर्चा केने छलों हैं वही पर से हो किछ गप सब अपना सब करी। आई अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है। बाल रक्षा तो कोनो दिवस विशेष के चीज नहीं है। बाल रक्षा 12 मास 3600 दिन के लेल आए। सब दिन बाल के सुरक्षा, बाल धियापुता के सुरक्षा केनाए हमरा अहाँ के पुनीत कर्तव्य है और आवश्यक से होए। लेकिन कोनो दिवस हमरा सब मनबै छी तो ओकरा विशेष रूप से समाज में ओहि बात के जागृत कर के एकटा उद्देश्य लऽ कऽ ओ दिवस जे छै से अबैए। और ई दिवस धियापुता के अपन ओकर जे अधिकार छै, ओकर जे स्वास्थ्य के प्रति ओकर जे चेतना छै, ओकर स्वास्थ्य के प्रति जे गार्जियन के, अभिभावक के कर्तव्य छै, एहि सब के दृष्टिगोचर करबा के लेल जे छै से एकटा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से मनायल जा रहल है ई दिवस के। तो हमरा सब चाहब जे धियापुता के कल्याण कोना होए से सब गोटा में
0: उस बच्चों के उस कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए जो नींव है, जैसे कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, ये जो आवश्यक शिक्षा कुल मिलाकर के अगर कहें तो कम से कम माध्यमिक शिक्षा तक बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कहा गया है। उसे बाल श्रम से वंचित रखना है, बच्चों को श्रम नहीं करवाना है, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करवाना है और उसके अलावे स्वास्थ्य के प्रति भी हमें संवेदनशील रहना है कि बच्चों का स्वास्थ्य जब रहेगा तभी अन्य जो भी बातें हैं शिक्षा या और कोई भी बात, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य के प्रति हम संवेदनशील रहें कि बच्चों को क्या आहार दें जिससे उसको संपूर्ण पोषक तत्व की प्राप्ति हो और इससे शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, और जब शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा ही।
4: और धियापुता के जे छै से कोमल ओकर जे मानसिक स्थिति होइ छै से बहुत कोमल होइ छै, बहुत तन्नुक होइ छै और बहुत शार्प होइ छै, बहुत माने
0: तीक्ष्ण तेज।
4: हाँ, तो अहाँ ऊपर में जे चीज परसबे ओ बहुत सूक्ष्मता से ओकरा ग्रहण करी छे बच्चा। तो बच्चा के नीक परिवेश में राखी इस कर्तव्य अभिभावक के हुई छे जे ओ जेहन परिवेश में रही छे ओकरा अमिट छाप ओकरा मस्तिष्क में ओई परिवेश के पड़ी छे। तें बढ़िया परिवेश में हुए, पढ़ा लिखा वाला परिवेश में रहे, खेल धूप वाला परिवेश में रहे, तो ओइसँ बच्चा के आगामी विकास जे छै से बढ़िया रहै छै। अगर अहाँ ओकरा पढ़ाई लिखाइ वाला परिवेश से दूर कऽ देबै, कतौ जे छै से एहन ठाम दऽ देबै जे ठाम ओ नीक बात नहि सीख रहल है, तऽ ओ जीवन भरि के लेल ओइ बच्चा के जे छै से गड़बड़ी पैदा करैत रहतै, तऽ से अहाँ के कर्तव्य नहि बनैए।
0: हाँ, और उसके साथ अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो समय पर उसे प्रोत्साहित भी करें, उसे शाबाशी भी दें, और अगर कहीं पर वो कुछ गलत कर जाता है या बच्चा ही तो है उसे इस बात की समझ नहीं होती है कि क्या गलत है क्या सही है, तो हम और आप परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन जो

0: बड़े बुजुर्ग या ज्येष्ठ हैं, उन सब का की यह जिम्मेवारी या यह दायित्व बनता है कि हम उसे समय पर जब कुछ गलत करता है तो उसे डांटे भी और समय पर उसे पुचकारे भी, दुलार भी दें। हर हमेशा डांटना भी बेहतर नहीं है और गलत पर उसे शाबाशी देना भी बेहतर नहीं है कि अगर आप गलती पर भी उसे नज़रअंदाज करते जा रहे हैं या शाबाशी देते जा रहे हैं तो बाद में जाकर के वो आपराधिक किस्म का बच्चा हो जाएगा और इससे उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और दूसरी ओर यदि हम उसके सही कार्य पर भी अगर कुछ वो सही करता है और उस पर हम उसे शाबाशी अगर नहीं देते हैं जो तरह की शाबाशी होनी चाहिए, जो उसका मनोबल बढ़ाने का जो की जो बात होनी चाहिए वो अगर नहीं देते हैं तो फिर वो कुंठित विचारधारा का हो जाता है कि वो फिर कुछ अच्छा करने की तरफ अग्रसर नहीं होता है।
1: नीक के नीक कहवाक चाहिए और बेजाय के बेजाय कहवाक चाहिए। नीक बेजाय बुझ के क्षमता धियापुता में ओते नहीं होइ छै। अहाँ जे कहबे जे ई नीक छै तो ओकरा ओ नीक बुझते, जे बेजाय छै तो बेजाय बुझते। तो से अहाँ के सही कहलहुँ हैं कल्याण जी, जे अगर अहाँ मनोबल ओकर बढ़बैत रहबे गलत के प्रति तो फिर वो जे छै से आगा बढ़ के गड़बड़ा जेते ओकर भविष्य। लेकिन अगर ओकरा सही के प्रति जे छै से अहाँ ओकरा साकांक्ष करित रहबे जे हम ई नीक काज कर रहल छी, वाह बहादुर और बढ़िया करू, तो ओकर मनोबल ओहि में बढ़ते और आगा बढ़ के जे छै से नीक रिजल्ट अहाँ के देखायत। रिजल्ट मतलब परीक्षे में रिजल्ट नहीं देखायत, लेकिन वो अपना जीवन में ओकर प्रतिफल जे छै से बढ़िया ओकरा भेटित जेते। तो ई काज अभिभावक के छन, अभिभावक में माते पिता नहीं अबै छथि, धियापुता के अभिभावक समाज समाजक लोक सेहो होइ छै। अहाँ के टोल के कोनो बच्चा है, अहाँ के गाम के कोनो बच्चा है, अगर वो नीक कऽ रहल है तो ओकरा प्रोत्साहित करियौ, अगर वो खराब कऽ रहल है तो ओकरा अहाँ डटियौ, ओकरा अहाँ समझबियौ, ओकरा बुझबियौ जे बाबू ई काज जे करै छी अहाँ से नीक काज नहीं कऽ रहल छी, अहाँ के भविष्य के लेल गड़बड़ है और समाज
0: के लिए गड़बड़ है।
1: तो आ धियापुता के सेहो चाही जे अपना सँ जे श्रेष्ठ छथि घर में, टोल में, गाम में या कतौ, हुनकर आदर निश्चित रूप से हेबाक चाही, हुनका डिसोबे जकरा कहै छी से नहीं करबाक चाही। और जे ओ कहै छथि ओ बुझबाक चाही, ओहि बात के ज्येष्ठ श्रेष्ठक बात के अमृतवाणी जगह बुझक चाही जो
0: उसके लिए बच्चों में अनुशासन
1: हाँ
0: अति आवश्यक है। और बच्चों में अनुशासन तभी होगा जब घर के लोग स्वयं को अनुशासित रह करके उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बच्चे का प्रभाव पारिवारिक परिवेश का बहुत गहरा पड़ता है।
1: अनुशासन तो एहने चीज छै जे अहाँ देखबै जे ट्रक बस के पाछा में सेहो लिखल रहै छै जे अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो ई सूतबा के जकां भ गेल छै जे चीज, तो ओहि बात के और अनुशासन के पालन तो हर व्यक्ति के करबाक चाही, लेकिन खास कर जे धियापुता छथि हुनका तो अनुशासित रहब जे छै से एकदम आवश्यक छनि। किया तो अनुशासन में अगर अहाँ नहीं छी तो तहन फिर सब चीज अहाँ के जे छै से गड़बड़ होइत चलि जायत। तो चर्चा तो अपना सब जे छै से लगातार जारिये राखब और नमस्कार
0: मिथिला के अनुशासन में भी एक बात आती है कि चर्चा के साथ साथ हम लोग श्रोताओं के मनोरंजन को भी ध्यान में रखें।
1: श्रोता में खासकर एखन विशेष हमरा लोग चूंकि धियापुता के गप कलो है और धियापुता से संबंधित गप कलो है, तो हम चाहब जे धियापुता के लिए एक सुंदर सनक गीत सुना भी।

0: लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा दौरा दौरा घोड़ा दुमुठा का दौरा। बहुत सुंदर ई गीत धियापुता के लेल एखन हमरा लोकन सुनलो। और धियापुता के सुरक्षा हमरा सभक कर्तव्य एहि बात के जानकारी हर व्यक्ति के हेबाक चाही। और जे चीज के चर्चा अहाँ कल्याण जी कयने छलहुँ हैं जे धियापुता के कतौ जे 14 वर्ष से कम आयु के छथि हुनका श्रम में नहीं लगेबाक चाही, कतौ नौकरी में नहीं राखक चाही, कतौ हुनका से खटाबक नहीं चाही। ई बात सब गोटा के अहाँ देखबै जे सब दिन आबो दिन मने एक दिन दू दिन पर में अहाँ के समाचार पत्र में ई भेटिए जायत जे फलां ठाम से 4 बाल श्रमिक के जे छै से मुक्त करायल गेल, ओतय से 2 बाल श्रमिक के मुक्त करायल गेल, ओहि होटल से 2 बाल श्रमिक के मुक्त करायल गेल। तो ई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छै।
1: बिल्कुल।
0: और समाज के हर नागरिक के एही बात के अपन कर्तव्य बुझबाक चाही जे धियापुता के जे अधिकार छै, बच्चा के भगवान प्रदत्त अधिकार छै, ओ जे ओ स्वच्छंद रहे और 14 वर्ष तक ओकरा कोनो कतौ कमाय खटाय नहीं पड़े, ओकरा रोजी रोटी के लेल तलाश नहीं करो पड़े। एही बात पर में हर आदमी के सिर्फ माए बाप के नहीं समाज के हर व्यक्ति के जे छै से एही बात के चिंता हेबाक चाही जे कोनो धियापुता जे अय ओहि धियापुता के ओकर सुव्यवस्थित रहन सहन केना हेतै, ओकर पढ़ाई लिखाई केना हेतै। प्राथमिक आवश्यकता छै पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जे छै से अधिकार छै बच्चा के, तो ओहिसँ ओ वंचित नहीं रहे। तै के लेल समाजक हर व्यक्ति के जे छै से जिम्मेदारी उठेबाक चाही और हर व्यक्ति एकरा लेल प्रयत्नशील रहे। अगर कतौ कोनो धियापुता एहन अछि जकर माता पिता सक्षम नहि छथि ओकरा पढ़ाई लिखाई करेबाक लेल, तो समाजक जे लोक छथि जे सक्षम लोक छथि हुनको आगा बढ़ि कऽ अयबाक चाही और ओहि बच्चा के पढ़ाई लिखाई के भार उठा लेबाक चाही। समाज में किछु लोक तऽ एहन होइते छथि जे सक्षम छथि और किछु लोक एहन जरूरे छथि हर समाज में जतौ धियापुता के पढ़ाई लिखाई के औकात नहि छनि हुनका। तऽ ओहिमे एक तऽ सरकार आब एहन व्यवस्था केने अछि जे सरकार सबके मुफ्त शिक्षा जे छै से कम से कम दए रहल है, तो निश्चित रूप से स्कूल पठावक चाहिए अपना बच्चा के। और स्कूल अगर पठेबे नीक वातावरण में रहते बच्चा तो ओकरा नीक संस्कार भेटबे करते और आवा वाला दिन में ओ ओकर भविष्य

0: जे छै से उज्ज्वल हेतै। कोनो जरूरी नहि छै जे सब आदमी डॉक्टरे बनय, सब आदमी इंजीनियरे बनय, कि सब आदमी पायलटे बन जाए। जे जै क्षेत्र में जिनका रुचि छनि, जै धियापुता के जिम्हर रुचि छै, ओहि क्षेत्र में बैठ कऽ अपन कैरियर बना सकै छथि। ओ संगीत के क्षेत्र भऽ सकै छै, ओ खेल के क्षेत्र भऽ सकै छै। एखन देखियौ एकटा 9 के बच्चा, एखन तऽ बच्चे कहबै, 14-15 साल के लड़का वैभव सूर्यवंशी, सम्पूर्ण विश्व में जकर डंका एखन बाजि रहलै है, चर्चा भऽ रहलै है, तऽ ओ खेल में अपन कैरियर बना लेलक और ओकर माता पिता जे छथिन से ओहि पाछा हुनका अग्रसारित मने प्रेरित करित रहलखिन और लागल रहलखिन। तो अहाँ कोनो क्षेत्र में बच्चा के कैरियर बना सकै छी, तकर कर्तव्य के निर्वहन निश्चित रूप से करबाक चाही। और से कर्तव्य के निर्वहन अगर अहाँ करै छी, तो अहाँ के बच्चा आगा बढ़ कर जे छै से सफल हैत अपना जीवन में। तो से ई बात कही छलहुँ जे सिर्फ माते पिता के काज नहीं छन, समाजक हर व्यक्ति के ई बात के ध्यान रखबाक चाही।
1: समाज के हर व्यक्ति का यह दायित्व बनता है, यह परम कर्तव्य बनता है कि अगर समाज में कोई बच्चा अनाथ है, गांव में कोई बच्चा जिसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, विकलांग है या अत्यंत गरीब है, तो उसके प्रति हम साकांक्ष रहें, संवेदनशील रहें और उसके भविष्य को एक प्राथमिक स्तर तक जो एक उसके जीवन यापन का, उसके पालन पोषण का जो जरिया है, माध्यम है, वो उसको प्रदान करवाने में, चाहे वो सरकारी तौर पर हो या सामाजिक तौर पर हो, चंदा लगा करके हो या व्यक्तिगत रूप से हो, अगर हम उसमें सक्षम हैं कि हम किसी अनाथ बच्चे को हम उसके पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठा सकते हैं, तो वैसे वो सबसे बड़ा धर्म भी होता है। अन्य जो भी धर्म के जो भी प्रक्रियाएँ हैं, जो भी आधार है, उसके अलावा असहाय बच्चों को, अनाथ बच्चों को उसके भविष्य को उज्जवल बनाने में अगर हम कुछ पूंजी निवेश करते हैं, तो उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है।
0: और चर्चा हमरा लोकन करैत रहब, लेकिन आइ जे एकटा संवाद हमरा लोकन सुनलूं जे प्रख्यात गायिका सुमन कल्याणपुर अपना सभक बीच आब नहीं रहली है, तो हुनका अपना सब तक कहबी छै जे जले लऽ कऽ जल के पूजा, हुनके गीत से हुनका श्रद्धांजलि हमरा लोकन अर्पित करै छियनि। सुनी सुंदर सनक ई हुनक कॉल गीत।

0: जिंदगी में बाहर आ जाए सुमन कल्याणपुर और मुन्ना डे के स्वर में। एखन हमरा लोकन ई गीत सुन रहा छलों हैं और एही गीत के माध्यम से सुमन कल्याणपुर के विनम्र श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में आगा बढ़े छी और समसामयिक जे घटना ते सब पर एक नज़र घूमबे छी। देश दुनिया में कतौ की भ रहले है ते पर एक नज़र सुना रहा है कल्याण कुमार झा।
1: समसामयिक घटनाओं की बात करें श्रोताओं, तो कल पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए केरल के साजी वलासेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया जिससे नदी को स्वच्छ रखने में मदद मिली। उन्होंने समाज में पर्यावरण जागरूकता को प्रोत्साहन देने का अभियान भी चलाया। श्री मोदी ने गोवा के सेवानिवृत्त अध्यापक बालकृष्ण अय्या की कहानी भी साझा की, जो पानी के संकट से निपटने के लिए पानी के पाइप बिछाते हैं। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने ग्रहण किया नौसेना प्रमुख का कार्यभार। ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कथन। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब। खेल मंत्री ने दी बधाई। ऑन मार्क पोर्टल की खामियों को लेकर सीबीएसई सतर्क, निगरानी जारी। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज होगी जारी। और प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।
0: तो इछल समसामयिक घटना पर एक नज़र आ चलित एकटा और फिल्म संगीत के आनंद हमरा लोकन लॉ ली
1: क्यों नहीं।

0: ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, ये बहुत सुंदर गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश के स्वर में अखन हमरा लोकन सुन रहा छलो। और यही गीतक संग आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय सेहो संपन्न भ रहा है। तो आजुक यही अंक से मणिकांत के
1: और कल्याण कुमार झा को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ।

प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जाते अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनी आनि के दिया था, बहुत कमे लोग हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
5: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध, जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
6: जनकपुर जाने के लिए आए,
5: कभी खरीदारी भी करते हैं।
7: हिंदी सामान किनना,
5: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
6: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
5: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
8: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
5: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
9: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन

0: जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा, संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमा भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमा के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जन प्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है।

0: साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
0: वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
3: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है। सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल

0: 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। कागिसो रबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला, उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिएं देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी सरकार के कार्यकाल में 5वां FTA, पश्चिम एशिया संकट के बीच 2 गुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत ने 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार। जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली वालों के लिए राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है, 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिंट लांग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के दो साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। एक माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलूकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी

0: तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा दिफाई ताल्लुकात मजीद मुस्तकम होंगे, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में इजाफा होगा। भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग हासिल होगा और दिफा और सिक्योरिटी मामलात में इश्तराक के नए मौक़ों को उजागर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमायां तब्दीली रुनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज़ और नफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इक़दामात पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है। आज हम किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता 12 साल में किसानों की बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफा करने के लिए मुतअद्दिद पहल कदमियों का आगाज़ किया है। इन इकदामात में सबसे नुमाया पीएम किसान स्कीम का आगाज़ रहा है, जो मुल्क में फलाह बहबूद से मुतालिक सबसे बड़ी पहलों में से एक है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद सूदमंद है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
1: फसल बीमा योजना से तकरीबन 23 करोड़ किसानों 1,92,000 करोड़ रुपए मालियत के बीमा दावों से मुस्तफीद हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के छोटे और आशिर बरादर किसानों को 3,000 रुपए की यकीनी माहाना पेंशन मिल रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एक रिहायशी ने कहा कि मजकूरा स्कीम से किसानों को रोजगार में मदद मिलेगी।
3: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब
1: से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने MSP को पैदावार से मुतालिक अखराजात का 1.5 गुना कर दिया है। आकाशवाणी न्यूज से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौन हैदर।
0: मशहूर मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई में उनकी रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 89 बरस की थी। उन्हें 1950 से 1970 की दहाई के दरमियान, जिसे फिल्म मौसीकी का सुनहरा दौर कहा जाता है, हिंदी, मराठी और बहुत सी दीगर भारतीय जबानों में उनकी गुलुकारी के सबब जाना जाता है। सुमन कल्याणपुर के बारे में कुछ तफसील।
4: सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी साल 1937 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पैदा हुई थी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में पहली बार 1950 की दहाई के वस्त में गाना गाया था। उनकी आवाज़ लता मंगेशकर की आवाज़ से काफ़ी मिलती जुलती थी। उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत आवाज़ में दिल को छू लेने के अंदाज में तारीख साज मौसीकारों, गुलूकारों, खासतौर पर मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में से कुछ गाने ये हैं।

महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और सुनेत्र पवार, नीज मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मौसीकी के मैदान में उनके तआवुन को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया, रिलीफ कमिश्नर दफ्तर और मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो रियासत के कई अजला में तूफान, बारिश और इंतहाई खराब मौसमी हालात पर मुसलसल नजर रखे, किसी भी हादसे की सूरत में फौरी इकदाम को यकीनी बनाए। कल राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में मौसम में तब्दीली आई, जिससे लोगों को शदीद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसमियात महकमे ने रियासत के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसराइली फौज ने जुनूबी लबनान में दिफाई एतबार से अहम ब्यूफोर्ट कासल इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइल की दिफाई फौजों ने बताया कि ब्यूफोर्ट रिज और वादी अल सलूकी में फौजी दाखिल हुए और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी

0: डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें ये कहा गया है कि ईरान के साथ उनके मुजवजा माहदे में न्यूक्लियाई मामलात का जिक्र नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने बताया कि इस माहदे में वाजे किया गया है कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करना नहीं दिया जाएगा और इस माहदे में न्यूक्लियाई सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली कवानीन शामिल हैं। क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। बीसीसीआई सदर मिथुन मन्हास और सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने आईपीएल 2026 की बावकार ट्रॉफी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को पेश की। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: कल रात उस वक्त आरसीबी के हर फैन का ख्वाब पूरा हो गया जब विराट कोहली ने गेंद को हिट करके बाउंड्री से बाहर पहुंचाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस की तरफ से दिए गए 156 रन के निशाने को आरसीबी ने विराट कोहली के 42 गेंद पर 75 रन की मदद से बआसानी हासिल कर लिया। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट के नुकसान पर महज 155 रन बनाए। गुजरात टाइटंस की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर सबसे ज्यादा 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कोनन हैदर।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहना, एहतियात, तैयारी और हिफाजत के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से वाबस्ता डॉक्टर रूपाली मलिक के साथ किया जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं नीतिका त्यागी।
3: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 134वीं किस्त से खिताब करने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने मन की बात में समाजी खिदमत, तालीम और माहौलियात के मैदान में नुमाया काम करने वालों की सताइश की, साथ ही अवाम से अच्छे कामों से जुड़ने की अपील की। एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन बने बहरिया के 27वें सरबराह, इस खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ पहले सफ़े पर शाई किया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल मुकम्मल, ये खबर भी तमाम उर्दू खबरों में नुमाया है। और अखबारात में शाये होने वाली अहम बैनुल अक्वामी खबर है कि अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का मुश्तरका दिफाई प्लान, साल 2027 तक ज़ेर-आब ड्रोन्स तैयार करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलोंग से बातचीत करेंगे। राज्यसभा के 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के तहत 10 रियासतों की 24 सीटों के इंतखाबात का नोटिफिकेशन आज सुबह जारी किया जाएगा। मरकज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का आगाज करेगा। 1 माह तवील इस मुहिम का मकसद कीमियावी खादों के सही इस्तेमाल को फरोग देना है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी 35 वजीरों को अपनी काबीना में शामिल करेंगे। मारूफ गुलुकारा सुमन कल्याणपुर का मुंबई में इंतकाल हो गया। और क्रिकेट में अहमदाबाद में आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर,

0: वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठा घने बादलों को चीर

0: कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी। 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 11 जून नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है। इन सीटों पर चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। गौरतलब है कि डॉ कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। इधर आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव भी 18 जून को कराए जाने की घोषणा की है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
1: उम्मीदवार को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने 5 सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से कृषि बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।
0: इधर पूरे प्रदेश में भी आज से खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हो रही है। इस दौरान किसानों को कम खाद और हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ दिलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत पटना स्थित कृषि भवन से कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान कांवरिया पथ पर सुरक्षा और सुविधा का व्यापक इंतजाम

0: सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भागलपुर समाहरणालय के सभागार में श्रावणी मेले की तैयारी और अन्य योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
1: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से इस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
0: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने आम लोगों को राहत देते हुए 30 आवश्यक दवाओं की खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। इन दवाओं में विटामिन D3, कैल्शियम, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण के बाद दी जाने वाली महत्वपूर्ण दवाएं भी शामिल हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्धारित कीमतों में वस्तु और सेवा कर यानी GST शामिल नहीं है। NPPA ने स्पष्ट किया है कि दवाओं की कीमत में GST तभी जोड़ा जा सकता है जब संबंधित कर का भुगतान सरकार को किया जा चुका हो या उसका भुगतान देय हो। सरकार का कहना है कि आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मरीजों को उचित दर पर दवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सेवानिवृत्ति की निकटता वाले 275 पुलिस कर्मियों का ऐच्छिक तबादला किया है। इन पुलिस कर्मियों में 5 इंस्पेक्टर, 176 SI, 42 ASI, 54 हवलदार और 6 सिपाही शामिल हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्मिक के अनुसार सेवानिवृत्ति में 2 साल से कम अवधि वाले कर्मियों को गृह जिला और ऐच्छिक स्थानांतरण संबंधी आवेदनों पर विचार किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बक्सर में महाराणा प्रताप जयंती पर समारोह का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री सिंह ने युवाओं से महाराणा प्रताप के जीवन से सीख लेने की अपील की। इस अवसर पर विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, विधायक आनंद मिश्रा, संतोष निराला और राहुल सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले सहित उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
3: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर राज्य के कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए

ने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वो अपनी सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने बताया कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम गया जी के नारदगंज ब्रह्मनी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेईई मेंस के दोनों सत्रों में 100 परसेंटाइल प्राप्त किए थे। इस परीक्षा में 56,880 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं, वहीं जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। औरंगाबाद जिला परिषद की सदस्य नीतू सिंह को 3 जून को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें अपने क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों और ग्रामीण विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आगामी 5 जून को पटना चिड़ियाघर द्वारा बच्चों के लिए चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार बच्चे अपने घर से ही प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतिभागियों को पर्यावरण विषय पर चित्र या पोस्टर बनाकर ऑनलाइन पोर्टल patnazoodigital@gmail.com पर अपलोड करना होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र निर्धारित तिथि तक अपने चित्र और पोस्टर ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। पटना चिड़ियाघर ने अधिक से अधिक बच्चों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की है, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा पुलिस ने रामनगर थाना क्षेत्र के 3 दुकानों से भारी मात्रा में लॉटरी और कैश के साथ 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र में सोन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में अवैध बालू उठाव के कारण बने गहरे गड्ढे में डूबने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी दीदारगंज घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली के साकेत के सेदुला जवाब इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरने से बिहार के 2 अभियंताओं की मौत हो गई। इनमें एक अभियंता नवादा के और दूसरा मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास के पीयूष राज ने रिले रेस में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के पहले एथलीट बने हैं। भारतीय पुरुष टीम में पीयूष राज के साथ सैयद कबीर, रंजीत कुमार एस, मोहम्मद अशफाक मौजूद थे। इन्हें सभी ने 4x400 मीटर रिले टीम में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में सारण की मोहिनी पंडित और पटना के देवांश केसरी चैंपियन हुए। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने 18 ओवर में लक्ष्य को प्राप्त किया। इधर राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चयन किया गया। उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

हिन्दुस्तान का शीर्षक है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जर्दालू आम और सत्तू की प्रशंसा की। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आज भेजा जाएगा जर्दालू आम। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीबीएसई ने स्वीकारी ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल में सुरक्षा खामी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार की पहली एरो सिटी होगा हरिहरनाथपुर, 11 टाउनशिप में 5 लाख को रोजगार मिलेगा। प्रभात खबर ने टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बढ़े बिलों से फिक्स होता था 10% कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव के लिए आज होगी अधिसूचना जारी, 18 जून को होगा मतदान। देश भर में उर्वरकों को संतुलित और उचित बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान आज से हो रहा है शुरू। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 30 आवश्यक दवाओं का मूल्य निर्धारित किया, इनमें मधुमेह और हृदय रोग सहित कई दवाएं शामिल। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सारण, सिवान और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के उत्तर पूर्वी भागों के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा

0: क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं।
2: हिंदी वाला सामान किनना लाए।
0: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियां।
1: मैं चाहता हूं कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
3: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
6: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
5: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।

प्रोग्राम पर। प्रोग्राम का आगाज हिज्ब मामूल गजल से ही होगा। इसके बाद आज आप सुनेंगे रेडियो मुशायरा महफिल सुखन, जिसमें शामिल होने वाले शायर होंगे सैयद परवेज आलम और तबस्सुम फरहाना, निजामत करेंगे मोहम्मद आलम। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं पंकज उदास की ये खूबसूरत गजल से।

सके हम चाह कर भी आप इसी नफरत न कर सके। सब जुल्म जार हम बखुशी झेलते रहे,

0: लेकिन किसी से शिकवा शिकायत न कर सकी।
1: वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: हम चाहे कर भी आप से नफरत न कर सके। शुक्रिया भाई।
2: वाह
1: बहुत खूब।
0: ताम्र दश्ते गम में झुलसते रहे मगर

0: अपने वास्ते एक छत न कर सके। हम चाह कर भी आप से नफरत न कर सके।
1: बहुत खूब।
0: ये शेर देखें।
2: इनायत।
1: इरशाद।
0: फनकार बे नयाज हैं हम सीधे सादे लोग,

0: इस दौर में भी कोई सियासत न कर सके।
1: क्या कहना है?
0: हम चाह कर भी आप से नफरत न कर सके। कैसे

0: जो खुद ही अपनी जात की इज्जत न कर सके। हम चाह कर भी आप से नफरत न कर सके। मक्ता पेश करती हूँ
1: इनायत।
0: फरहाना हक पसंद तो सूली पे चढ़ गए,
2: फरहाना हक पसंद तो सूली पे चढ़ गए,

0: बहुत खूब
1: फिला किसे आगे भी जहां देख रही हूँ,
2: अफलाक से आगे भी जहाँ देख रही हूँ,
1: अफलाक

0: ही हूँ,
1: सही सही है, बहुत
0: ये
1: सही
0: शेर देखें,
1: इनायत।
0: सन्नाटा है आवाज मगर गूंजी रही है,
1: वाह,
2: सन्नाटा है आवाज मगर गूंज रही है।
0: सन्नाटा है आवाज मगर गूंजी रही है, हर शख्स की आंखों में जुबां देखी रही
1: वाह
0: हूँ,
1: वाह वाह,

0: और मरता है
1: इरशाद
2: इनायत।
0: फरहाना छुपाते रहे वो अपने फसाने,
1: फरहाना छुपाते रहे वो अपने फसाने।
0: फरहाना

0: रही हूँ।
1: बहुत खूब, ये थी मोहतरमा डॉक्टर तवस्सुम फरहाना जो गया से तशरीफ लाई थी और अपने कलाम से हमें नवाज रही थी। अब इनके बाद दावत सुखन देते हैं जनाब सैयद परवेज आलम को इस

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। श्रोताओं, सुमन कल्याणपुर हिंदी सिनेमा की एक महान और दिग्गज पार्श्व गायिका थी। उनकी मखमली और सुरीली आवाज ने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। हिंदी ही नहीं, उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगाली और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में लगभग 3000 से अधिक गीत गाए। आज वो हमारे बीच नहीं है। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज और पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जी का निधन संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय का अंत है। उनकी मखमली आवाज और सदाबहार गीत हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ सदाबहार नगमे।

सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे कन कन में भगवान फिल्म में। भरत व्यास के लिखे इस गाने को संगीत दिया था पंडित शिवराम ने।

पहचान फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीत के बोल इंडिवर के, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फर्ज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत

राजकुमार फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शैलेंद्र के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम में अब सुनते हैं फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: दिन ताक तिनक तिन घा आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।
1: गंगा जमुना, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूनी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नौशाद ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का हमारा कार्यक्रम।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित राम कुमार मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक, समित कुमार मल्लिक, सूर्य नारायण पोद्दार, सूर्य नारायण यादव, गौतम मिश्र और शारदा सिन्हा को। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। सभा को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें सुनवाते हैं आपको पंडित जसराज का गाया हुआ ये कबीर भजन, राग शुद्ध वराड़ी में।

पंडित जसराज का गाया हुआ ये कबीर भजन अभी आपने सुना। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्डखे, नंदा बोर्डखे, हनुमान बोर्डखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोताओ, रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?
3: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
2: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
3: यह कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET

0: एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और सीआईटी एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप सीआईटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समतामूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समतामूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समतामूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्यधारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी भी अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे, और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए, तो ये

0: हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दें। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या हैं।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी।
0: है, ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है, तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक औपचारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है
1: जी। आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की तो हमारे श्रोता जरूर ये

0: जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है
1: okay.
0: और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
1: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
0: जी।
1: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से संकेतों से पहचानते
0: जी।
1: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
0: जी
1: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
0: जी।
1: आप सोचिए आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
0: जी
1: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
0: जी।
1: अच्छा अब ये लोग क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा।
0: जी।
1: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा।
0: जी।
1: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है।
0: जी।
1: दोनों भाषाओं में अंतर है और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का
0: इस्तेमाल
1: इस्तेमाल करते
0: करते हैं।
1: हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है। और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत। गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में,
0: जी।
1: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहाँ, उत्तरी भारत में।
0: बिल्कुल
1: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं।
0: जी।
1: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी कि किसी और मौखिक भाषा में है।
0: जी ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी
1: जी
0: और समावेशी शिक्षा के बारे में
1: जी
0: जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
1: जी देखो सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं।
0: जी।
1: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो
0: जी
1: हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोस में हम परिवर्तित कर रहे हैं।
0: जी
1: लेकिन इन वीडियोस में ऑडियो भी है
0: जी
1: और इन वीडियोस में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है,
0: जी
1: ताकि कोई भी छात्र चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख
0: जी
1: सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है
0: जी
1: जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
0: जी
1: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं, इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के
0: जी
1: हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
0: जी
1: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज।
0: जी
1: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध

0: सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है, ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें
1: जी।
0: सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो
1: जी,
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो, व्हीलचेयर आसानी से पहुंच जाए
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है, उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो
1: जी।
0: आपकी विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल।
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस
1: बिल्कुल
0: कर सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें
1: जी।
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी CIT NCERT की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है
1: जी प्रोफेसर भारती अभी आपने ये जानकारी दी कि NCERT की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं।
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से CIET के वेब पेज से मिल सकती हैं। आप CIET के वेब पेज पे जाइए वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी
1: जी।
0: और एक और सरल उपाय है
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है
1: बिल्कुल,
0: गूगल
1: बिल्कुल।
0: पर जाइए लिखिए ऑडियो बुक्स CIET NCERT आपको सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं
1: जी।
0: एक चीज और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं और CIT वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं
1: जी
0: और यह किताबें आपको NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को CIT की वेबसाइट से NCERT ऑफिशियल YouTube से और साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में NCERT की क्या पहल है।
0: बिल्कुल आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए NCERT की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं
1: जी
0: उनकी कहानियां उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती
1: जी
0: है तो सबसे बड़ी बात तो यही है और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष

0: प्रयास किए जा रहे हैं।
1: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात की है। उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह भी है, बहुत सरल से शब्दों में, कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है। एक और चीज भी है, इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी। मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके। यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा। जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं, तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्जवल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी। एक क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं दोपहर के 12 और ये समय होता है उन श्रोताओं के लिए खास जिन्हें पसंद है नए फिल्मी गीत। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का नए फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में। अब से लेकर 12:30 तक आप सुनेंगे कुछ चुनिंदा नए फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राज बर्मन के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे लिखा है रोहित शर्मा ने। इस गीत को शुरू में पिरोया है राघव सचर ने और फिल्म का नाम है मिशन मजनू।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको फिल्म जवान से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में, गीतकार कुमार, संगीतकार अनिरुद्ध रविचंद्रन।

फिल्म मेट्रो इन दिनों में अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को। गीत के बोल लिखे थे कैसर अल जाफरी ने और संगीत निर्देशन प्रीतम ने किया था।

नए फिल्मी गीतों का आनंद ले रहे हैं आप इस समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से, और अभी सुन रहे हैं आप जुबिन नौटियाल को फिल्म रेड 2 में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और संगीत निर्देशन रोचक कोहली का।

जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म माँ का ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत निर्देशन रॉकी मेहरबानो खान का, माफ़ कीजिएगा, संगीतकार हैं रॉकी मेहरबानो खन्ना।

फिल्म माँ के इस गीत के साथ ही नए फिल्म गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ और फिल्म गीत आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से इस सभा में दोपहर 1:15 पर और 2:30 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। प्रस्तुत है श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। बहनों, हमेशा की तरह आज भी हम ढेर सारी विषयों के साथ उपस्थित हैं। बहनों, आज 1 जून है। आज हम लोग मना रहे हैं विश्व अभिभावक दिवस और विश्व दुग्ध दिवस। तो सबसे पहले इन विषयों को मनाने का उद्देश्य के बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे और इसके बाद हम और भी विषयों पर बातचीत करेंगे। तत्पश्चात हम कार्यक्रम में आगे सुनेंगे मधुर संगीत, वार्ता और कार्यक्रम में उपयोगी बातें, उपयोगी और प्रेरणादायक खास टिप्स में बातें भी होगी। फिलहाल शुरू करते हैं ये विश्व अभिभावक दिवस के बारे में। बहनों, विश्व अभिभावक दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता के योगदान, प्रेम और त्याग को सम्मान देना है। माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं और माता पिता अथवा घर में बड़े बुजुर्ग जो अभिभावक जब माता पिता के जब नहीं हो, अगर बाहर चले गए हों या नहीं हो, तो घर के बड़े बुजुर्ग भी अभिभावक ही कहलाते हैं। तो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बड़े लाड़ प्यार से संस्कारों से पोषित करते हैं। माता पिता को प्रेम, संस्कार और देखभाल बच्चों को देती है, जबकि पिता उसे सुरक्षा और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। घर परिवार में बनाए रखने और बच्चों को अच्छे संस्कारों से संस्तरित करने में महिलाओं की जो भूमिका होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महिलाएं केवल माँ नहीं बल्कि परिवार की आधारशिला होती हैं। बहनों, वह घर को जोड़ कर रखती हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार और सद्गुणों से पोषित करती हैं। माता पिता बच्चों को के पहले शिक्षक होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। वे हमें चलना, बोलना, सोचने की क्षमता और सही निर्णय लेने की शिक्षा भी देते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है, दुनिया में सबसे निर्मल होता है। विश्व अभिभावक दिवस मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि बच्चे में परिवार के प्रति प्रेम और कृतज्ञता की भावना विकसित हो। आज के आधुनिक समय में कई बच्चे अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं।

यह तो कतई अच्छी बात नहीं है। तो यह दिवस उन्हें यह समझाने का अवसर देता है, समझने का, समझाने का कि माता पिता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यह दिवस समाज में पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश भी देता है। जब परिवार मजबूत होता है तो समाज और देश भी मजबूत बनता है। तो बहनों, हम कह सकते हैं कि विश्व अभिभावक दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में माता पिता के महत्व को समझाने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। इसलिए बहनों, हमें हमेशा अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके दिखाए गए सन्मार्ग पर चलना चाहिए। तो बहनों, बातचीत आगे और भी होगी। फिलहाल सुनते हैं माता पिता को संबोधित ये गाना।

बहनों, गर्मी अभी चरम पे है और ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय में जुटे रहते हैं। और ऐसे में बिजली, पंखा, एसी, कूलर चला करके हम लोग बिजली गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से बिजली का खपत गर्मियों में बढ़ जाती है। तो इस खपत को, इस बिजली की खपत को कैसे कम किया जाए और कैसे प्राकृतिक तरीके से अपने आप को ठंडा रखा जाए और बिजली का बहुत से बहुत बचाव किया जाए, तो इसी बात को जानने के लिए आइए सुनते हैं ये वार्ता हमारी रेडियो सखी श्वेता से।

0: नमस्कार श्रोता बहनों, मैं हूं श्वेता और एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूं एक छोटी मुलाकात के अंतर। आइए आज हम बात करते हैं गर्मी में करें बिजली की बचत विषय। बहनों, गर्मी का मौसम आते ही पंखे, कूलर, एसी और फ्रिज का उपयोग बढ़ जाता है, जिसमें बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। ऐसे में यदि हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो न केवल बिजली की बचत कर सकते हैं बल्कि अपने मासिक बिजली बिल को भी कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गर्मी में बिजली बचाने के कुछ आसान और प्रभावी उपाय। सबसे पहले, किसी कमरे में जब कोई ना हो तो वहाँ की लाइट, पंखा, कूलर या एसी को बंद कर दें। अक्सर हम जल्दीबाजी में इन्हें चालू छोड़ देते हैं, जिससे कि अनावश्यक बिजली खर्च होती है। यदि आप एसी का उपयोग करती हैं तो उसका तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। इससे कम तापमान रखने पर बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है। साथ ही एसी के फिल्टर की नियमित सफाई भी आवश्यक है। कूलर का उपयोग करते समय कमरे में उचित वेंटिलेशन रखें ताकि ठंडी हवा का बेहतर प्रवाह बना रहे और कूलर को अधिक मेहनत ना करनी पड़े। दिन के समय प्राकृतिक रोशनी का अधिक से अधिक उपयोग करें। खिड़कियां और पर्दे इस प्रकार रखें कि घर में पर्याप्त प्रकाश आ सके और दिन में लाइट जलाने की आवश्यकता ना पड़े। एलईडी बल्बों का उपयोग करें। ये सामान्य बल्बों की तुलना में कम बिजली खर्च करते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलने से बचें। इससे फ्रिज को दोबारा ठंडा होने के लिए अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। साथ ही फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें ताकि उसकी गर्मी आसानी से बाहर निकल सके। मोबाइल चार्जर, टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपयोग के बाद स्विच से बंद कर दें। स्टैंड बाई मोड में भी बिजली की खपत होती रहती है। बहनों, बिजली की बचत केवल पैसे बचाने की ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि हर परिवार थोड़ी सी सावधानी बरते तो हम ऊर्जा संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो चलिए, इन्हीं संदेशों के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे नारी संसार के अगले अंक में एक नई जानकारी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
1: बहनों, अभी आप बिजली की बचत इन गर्मियों में कैसे करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रही थी हमारी रेडियो सखी श्वेता से। तो आइए अब हम बातचीत करें विश्व दुग्ध दिवस के बारे में, जो आज मनाते हैं हम लोग। बहनों, विश्व

दुख दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूध के महत्व और उसके पोषण के मूल्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दूध एक संपूर्ण आहार माना जाता है और क्योंकि इसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। यह बच्चों के वृद्धि और विकास के लिए अति आवश्यक है। दूध पीने से हड्डियां मजबूत और शरीर स्वस्थ होता है। बच्चों, बहनों, विश्व दुग्ध दिवस हमें यह भी बताता है कि डेयरी उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। किसान, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों, इस दिवस के अवसर पर आज विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को दूध के फायदे बताए जाते हैं और संतुलित आहार के महत्व को समझाया जाता है। बच्चों को विशेष रूप से दूध पीने के लिए प्रेरित किया जाता है। आज के समय में दूध से बने कई उत्पाद जैसे दही, पनीर, मक्खन और चीज़ भी हमारे भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। तो बहनों, इस प्रकार आप दुग्ध दिवस पर, विश्व दुग्ध दिवस पर हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए दूध के महत्व को समझने और अपने दैनिक आहार में इसे शामिल करने के लिए यह दिवस प्रेरणा देता है। बहनों, भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देशों में से एक है और यह वैश्विक दुग्ध उत्पादन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। और दुग्ध उत्पादन न केवल पोषण प्रदान करता है बल्कि लाखों किसानों और पशुपालकों को आय का स्रोत भी देता है। डेयरी क्षेत्र में युवाओं के लिए अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध प्रसंस्करण और पशु चिकित्सा, दुग्ध मिनपन और डेयरी प्रबंधन जैसे बहुत से क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है। यदि आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए तो दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय दोनों में वृद्धि हो सकती है। विश्व दुग्ध दिवस हमें दूध के महत्व को समझने और डेयरी क्षेत्र के विकास में योगदान देने की प्रेरणा देता है। महिलाएं भी खास तौर पर, ग्रामीण महिलाएं खास तौर पर डेयरी फार्मिंग, दुग्ध सहकारी समितियां, पशुपालन और दूध से बने उत्पाद जैसे दही, पनीर, घी और मिठाइयां बनाकर अपना करियर और स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। उचित प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की सहायता से वे अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भर बन सकती हैं, एक सशक्त महिला बन सकती हैं। दूध उत्पादन महिलाओं के लिए घर के साथ साथ आय बढ़ाने का एक अच्छा और सशक्त साधन है। तो बहनों, दूध उत्पादन के प्रति जागरूकता फैलाएं, यही सही मायने में इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो बहनों, बातचीत आगे और भी होगी, आइए अब सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

बहनों, अभी आप कार्यक्रम नारी संसार के अंतर्गत फिल्म संगीत का आनंद ले रहे थे। आइए, अब वक्त हो चला है खास टिप्स का। हर दिन कुछ खास में खास बातचीत और खास टिप्स की। गर्मी के मौसम में आम का स्वाद हर किसी को पसंद आता है, और जब बात आम के अचार की हो तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो आज खास टिप्स में हम सीखेंगे घर पर स्वादिष्ट और पारंपरिक आम के अचार बनाने के आसान विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कैसे थोड़ी सी मेहनत और सही मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है स्वाद से भरपूर आम का अचार। सबसे पहले सामग्री इस प्रकार है, आप लिख लें। कच्चे आम 1 किलो ताज़ा वाला, और सरसों का तेल 250 ग्राम, नमक 100 ग्राम, हल्दी 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, सौंफ 3 बड़े चम्मच, मेथी दाना 2 बड़े चम्मच, राई या पीली सरसों आपको जो भी उपलब्ध हो आप ले सकते हैं 4 बड़े चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच, हींग 1/2 छोटा चम्मच। आप सामग्री एक बार फिर से सुन लें। कच्चे आम 1 किलो, सरसों का तेल 250 ग्राम, नमक 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, सौंफ 3 बड़े चम्मच, मेथी दाना 2 बड़े चम्मच, राई या पीली सरसों 4 बड़े चम्मच, कलौंजी 1 बड़ा चम्मच, हींग 1/2 छोटा चम्मच। अब इसे बनाने के लिए कच्चे आमों को अच्छी तरह से धोकर कपड़े पर से पोंछ लें। अब आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और गुठली अलग कर दें। कटे आम के टुकड़े में नमक हल्दी मिलाकर 5 से 6 घंटे या फिर 1 दिन के लिए रख दें। अब सौंफ मेथी और राई को हल्का भूनकर ददरा पीस लें। राई को सबसे कम भुनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भुनने से उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता है, ताकि उसका केवल नमी कम हो। चाहे तो आप 2-4 घंटों के लिए कड़ी धूप में सुखाकर भी आप दरदरा पीस सकती हैं। अब एक बड़े बर्तन में आम के टुकड़े, पीसे मसाले, लाल मिर्च, कलौंजी और हींग डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अब सरसों का तेल को गर्म करें और फिर उसे ठंडा होने दीजिए। गर्म गर्म अचार में डालने से ना अचार ख़राब हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक के लिए नहीं रहेगा। ठंडा तेल अचार में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब अचार को साफ और सूखे कांच के जार में भर दीजिए। जार को 5 से 6 दिनों तक धूप में रखिए, और आप चाहें तो गंदगी बाहर से नहीं पड़े, इसके लिए आप सूती कपड़े से उसका जार का मुंह बंद कर सकते हैं। अब रोज़ एक एक बार आप सूखे चम्मच से उसको हिलाते डुलाते रहिए, अचार को मिलाते रहिए कि ऊपर और नीचे एक एक जैसा हो। बस ध्यान रखें कि अचार बनाते समय बर्तन और जार पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। और लीजिए, इस तरह से आपका एक ही सप्ताह में लजीज खाने के लिए तैयार अचार तैयार हो जाएगा, और आप इसे पराठा पूरी या भी मेहमानों को सर्व करिए। और चाहे तो आप, अभी बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चों के लिए तैयार करके या और अपना प्यार परोसिए। सूखी चम्मच का प्रयोग नहीं करें, और अचार आप लजीज अचारों को सर्व करिए। तो बहनों, ये तो थी खास टिप्स की बातें। आगे फिर हमारी बातचीत अगले कार्यक्रम में होती रहेगी। फिलहाल के लिए दीजिए अपनी रेडियो सखी रजनी को इजाज़त।

नारी संसार ये था श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित किए जाएंगे। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 सीट और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए गए हैं। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। बॉम्बे एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक दोपहर तक 84 अंक गिरकर 74,692 पर और निफ्टी 32

0: अंक गिरकर 23,516 पर आ गया। बिजली, पूंजीगत वस्तुएं, उपयोगिता और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम विवरण में। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:10 पर आपको सुनवाएंगे देशभक्ति गीत। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे आप दोपहर 1:15 और 2:30 पर। दो बजे सुनते हैं प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें हमारे पटना केंद्र से। रोजगार सूचना का प्रसारण समय होता है दोपहर 2:10 पर। दोपहर समाचार आप सुनते हैं 2:15 पर।

दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। ये थे हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ की जाएगी, जिसमें आप सुनेंगे आज कार्यक्रम तरुण कुसुम। आज की चर्चा का विषय होगा डिजिटल युग में माता पिता और युवाओं के बीच विश्वास का महत्व। पांच बजकर 5:40 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का, और शाम 6:10 पर आप सुनते हैं विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण समय होता है शाम 6:25 पर, और गाम घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सा शाम 6:30 पर। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनते हैं शाम 7 बजे, और प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर। 7:47 पर जिले की हलचल। मैथिली साहित्यिक कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय होता है रात्रि 8:15 पर। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और रात्रि 10 बजे से सुनिएगा पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी समाचार।

सभा की समाप्ति रात्रि 11:10 पर की जाएगी। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म देशवासी का ये गीत, देशभक्ति गीत के अंतर्गत प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म ऐतराज़ के इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: SH बिहारी का लिखा हुआ ये गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत निर्देशन OP नैयर का। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: किशोर कुमार को सुनिए फिल्म इम्तिहान में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

कार्यक्रम का अगला गीत सुना रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा से। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत निर्देशन गुलाम मोहम्मद का है।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म पाकिजा के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ और फिल्मी गीत लेकर आएंगे हम आपके लिए दोपहर 2:30 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब आपको लिए चलते हैं अपने पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं इलाकाई खबरें। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन सीटों में से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम कौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 3 जून तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ाना, मौसम संबंधी चुनौतियों के बीच किसानों को समय पर सलाह देना तथा पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। इधर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी जोड़ा जाएगा। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में कयाजी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर कॉमन रैंक लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। शुभम कयाजी के नादरागंज ब्रह्मणी घाट के निवासी हैं। उन्होंने जेईई मेंस के दोनों सत्रों में 100% प्राप्त किए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की आशंका है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के

0: फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के पछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफ उलहुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साज काउंसिल की खाली हुई 10 नशस्तों के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामजदगी का अमल भी शुरू हो गया है। इन सीटों में 9 सीट के लिए 2 साला इंतखाबात हो रहे हैं, जबकि साबिक वजीर आला नीतीश कुमार के इस्तीफ़ा से खाली हुई 1 सीट के लिए ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। इंतखाबी कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक नामजदगी की आखिरी तारीख 8 जून तक मुकर्रर है। उम्मीदवार 11 जून तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों पर 18 जून को पोलिंग होगी और इसी दिन शाम को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत 9 पार्षदों की मुद्दतकार 28 जून को पूरी हो रही है। ज़राअत व किसान फलाह के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन से मुल्कगीर खेत बचाओ मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम 3 जून तक चलेगी। मुहिम का खास मकसद केमिकल्स का मुतवाजन और मुनासिब इस्तेमाल बढ़ाना, मौसम के चैलेंजेस से किसानों को बरवक्त सलाह देना और पंचायत सतह पर अवामी हिस्सेदारी को यकीनी बनाना है। इधर पटना में ज़रई भवन में मुनक़द प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान काश्तकारों को कीमियाई खाद की जगह ग्रीन खाद के इस्तेमाल के लिए तरगीब दी जाएगी। जनाब सिन्हा ने बताया कि मुहिम के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और वज़ीर आज़म किसान सम्मान निधि मंसूबे से भी मरबूत किया जाएगा। IIT रुड़की ने JEE एडवांस 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस इम्तहान में गया जी के शुभम कुमार ने 360 में से 330 मार्क्स हासिल करके कॉमन रैंक लिस्ट में अव्वल मकाम हासिल किया है। शुभम गया जी के नादरागंज ब्रह्मनी घाट के बाशिंदा हैं। उन्होंने JEE मेंस के दोनों सेशन में 100% हासिल किए थे। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की तमन्ना की है। गया के MP और मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने श्री कुमार को बिहार का फख्र बताते हुए इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। रियासत में सरकारी बसों से सफ़र आज से महंगा हो गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने बस किराए में 10-15% तक का इजाफा किया है। वहीं सिटी बसों के किराए में भी 15% तक का इजाफा किया गया है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रुपये का इजाफा किया है। अब पटना में कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडरों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। रियासत में बारिश की सरगर्मियों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे ज़्यादा 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान जताया है। इस दौरान जनूब मगरबी, जनूब वस्त और जनूब मशरक़ी हिस्से के कुछ ज़िलों में 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का अंदेशा है। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में जराइम पेशा अफराद ने बदनाम जमाना गोविंद शर्मा को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से मौके की ताक में रहे जराइम पेशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जाए वकूअ पर ही इसकी मौत हो गई। महलूक मुजफ्फरपुर के उस वक्त के मेयर समीर कुमार और ज़मीन ताजिर आशुतोष शाही कत्ल मामले का अहम मुलजिम था। बेगूसराय ज़िला के बछवाड़ा थाना हलका में पुलिस ने छापामारी करके तकरीबन

0: 83 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना।

भारतीय नौसेना भर्ती 2026 कुल पद 60 हैं। आवेदन 29 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। आप 18 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक हुआ है, वो इस आवेदन को करने के लिए पात्र होंगे।

एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 कुल पद 12,256 आवेदन 21 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। इस आवेदन को करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 32 वर्ष 1 अगस्त 2026 तक होने चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा कुल पद 11,127 आवेदन 15 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आप 14 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष 1 जुलाई 2026 तक जिनकी हो वे ये आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को करने के लिए आपको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आवेदन भी कर सकते हैं।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आब रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।
1: श्रोताओं दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। समय हो रहा है दोपहर समाचार का, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले

0: घर आप तक पहुंचाएंगे, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। मई महीने में सकल जीएसटी संग्रह बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव फिर तेज। अमेरिका ने ईरान में रडार और ड्रोन प्रणालियों पर हमले किए। और हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
2: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
3: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने

0: कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय जीएसटी का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य जीएसटी का 45,143 करोड़ और एकीकृत जीएसटी का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। जीएसटी रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपए होगी। मुंबई में 43.50 रुपए की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपए

0: ऐसे होगी। कोलकाता में 53.50 रुपए की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपए होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपए की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपए होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीनी हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
0: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमार के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुँच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

0: समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म ब्रह्मचारी के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को भी आप सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी में। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का था। गायक कलाकार की इसी जोड़ी को फिर से दोहराते हैं फिल्म जब जब फूल खिले में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का है।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को भी आप सुन रहे हैं फिल्म राजकुमार में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

फिल्म आराधना में अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का।

आराधना के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब प्रस्तुत है लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं संतोष यादव के गाए इस देवी गीत के साथ।

लोकगीत अभी आपने सुना। आज जिन कलाकारों के गाए हुए गीत आपने सुने वो हैं संतोष यादव, रामनाथ यादव, उर्मिला देवी और केदारनाथ कुमार। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 और 10 सेकंड हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे इसी मीटर पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: उसका हाथ कौन पकड़ता? गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
1: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
2: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
3: चौधरी अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है?
1: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
3: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
1: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
3: चौधरी मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
0: अच्छा
3: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में। पूछने लगा यह कितने दिन से रहता है, मैंने कहा कोई 10 साल से। तब कुछ सोच कर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा आप तो 1,000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है, फटकार बता दी।
0: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों दत्ते रे लालची?
3: 200 रुपए नहीं 2,000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
2: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
1: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी, नहीं 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा, वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहां तो गहनों से प्रेम है।
2: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं, हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था।

0: लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
2: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
5: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
6: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
5: और हिमानी शिवपुरी हमारी बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
6: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
5: शुभकामनाएं
6: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
5: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहें और अपने विचारों से अवगत करते रहें और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खास तौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
6: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे बर्थडे मनाने।
5: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है जी। और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना, तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाए, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे

0: अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं। और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं और एक बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना?
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना? तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश देता है। और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है। उन्हें सुरक्षा, स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं। उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो खैर बच्चे की देखभाल करते थे लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे। कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की, तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहाँ तक है एकल परिवार हो गए हैं। और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकरी करते थे और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे। वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
1: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना। दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी
0: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो, पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर

0: रखो, ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं। उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
1: जी।

0: सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है, जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है, जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
0: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबीयत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
1: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
0: समय तक तबीयत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
1: हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना चाहिए,
0: वहम नहीं होना चाहिए।
1: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है, आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता। और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
0: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
1: अरे, हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
0: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन, शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
1: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
0: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी, हाँ। आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को पिला सकते हैं।
1: खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं, ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं, जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला निमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मंगोड़ी 1 कप, मंगोड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए आधा कप,
1: हाँ, आलू, हाँ, 2 लंबे पतले कटे हुए मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगोड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगोड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं। अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे। भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगोड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिला और इसमें आवश्यकतानुसार गर्म पानी और नमक डालें। कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगोड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए। अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़के, आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोड़ी और निमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मंगोड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती है सखिया, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटावा साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीज़ें ले सकते हैं कम या ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊँगी हो सकता है आप उसे ज़्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें

0: आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें, फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है, एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी के दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें पांचे, और इसको गर्म गर्म तेल में तलें, और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना, वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: स्वाद लें। जी, गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
3: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
4: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा। बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
4: ठीक है।
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
4: हाँ जी।
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
4: सही है।
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
4: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है। ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए। और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजीली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजीली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
0: अच्छा।
4: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू। वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें है, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
0: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
4: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है।
0: जी
4: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
0: पेट में।
4: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज में बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स आल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स आल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
0: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने

0: के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों के,
0: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years मतलब बचपन पैदा होने से लेके 3 साल तक एक अलग टूथपेस्ट आता है, जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो,
1: बिल्कुल
0: उसके जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है, क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है, वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे,
1: ये हम सभी के मामले में करें,
0: हाँ हाँ
1: चाहे बच्चे हो
0: या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटालिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में, कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजिली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए बच्चे हैं, उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूँ वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजीली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा रहे जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की, कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है। नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है एनामल की। डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक, उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी

0: जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
1: ओके।
0: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते।
1: लेकिन नस तक,
0: नस तक अभी तक पहुंचा नहीं है
1: जी।
0: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरिया अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिनझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिनझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
1: जिसकी हमने चर्चा की।
0: एग्जैक्टली,
1: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
0: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंटर सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं, मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं, अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है, और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
1: अच्छा।
0: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम 1.5 गुना दांत अंदर होता
1: है,
0: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे 1.5 गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात
0: यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं,
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली, नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम होंगे। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, नेचुरल रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो, उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो

0: मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
1: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन हड्डी जो होता है जबड़े का उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
0: जैसे पहले के बुजुर्गों का है।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में बेसिक है, मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स क्या होता है जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है, जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगी, और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है, बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: ये रूल होता था घर का, आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
0: ये तो खाना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
0: उनके मुताबिक बन रहा है।
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए, हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। भी इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है या बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
0: ओहो,
1: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
0: बहुत सही है, बहुत सही है।
1: तो ये जो दुलार है ना,
0: ये बहुत नुकसानदेह है।
1: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
1: श्योरली। तो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
0: क्या बात है महबूबा,
1: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
0: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनाल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: yes.
1: इसके लिए रूट कैनाल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी.
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहाँ पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं? सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने।
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे, तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहाँ पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: वही मैं जानना चाहता हूँ।
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 pascal, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी। तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है।

0: पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने। फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें, ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइंफेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी दो या तीन जड़ें होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। भी यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस, मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा पा रहा हूं,
1: इसके बिना भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी डेढ़ गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, एक डेढ़ दो महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था डेढ़ दो महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी उस घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया, तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है, या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे हैं कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, एक डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है एक मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ न कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों की अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके।
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है। बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहाँ पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके।
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के। फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं।

0: वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज़ हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना ज़रूरी होता है। वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है। तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग, पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनस से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनस से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनस पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
1: ओके,
0: सेम ही आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है। और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है। इसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
1: ओके,
0: तो ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है।
1: ओहो।
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे डेढ़ गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी चार स्टेजेस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 बोलते हैं हम लोग, उसमें टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मली लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
1: ओके,
0: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको दो टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
1: ओके,
0: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
1: ओके,
0: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है, तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया, तो बहुत सारे केसेस में ग्रेड 1 वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिंस भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो, अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं,
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी
0: ठीक है, फिर उसके बाद

0: में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी।
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं। मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस।
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है।
1: यस।
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी चीजें,
0: तंबाकू,
1: स्मोकिंग,
0: और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे।
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।
1: बिल्कुल।
0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है। तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दांत बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह। पर हम वफा करना सीखे
0: क्योंकि
1: आपने करना सीखे।
0: एग्जैक्टली।
1: क्या बात है, सुनते
2: हम।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी दूसरी सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम में सभी युवा श्रोताओं का स्वागत। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं अलग अलग दिन अलग अलग विषय। आज हम सुनेंगे तरुण कुसुम के अंतर्गत करेंगे चर्चा, साथ ही साथ कुछ लोकगीतों का भी आनंद लेंगे। चर्चा का विषय होगा डिजिटल युग में माता पिता और युवाओं के बीच विश्वास का महत्व। जी हाँ, युवाओं से जुड़े इस खास महत्वपूर्ण विषय पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुंदर से लोकगीत के संग, जिसे आवाज़ दिया है हेमकांत झा ने।

अम्बे आप उचित नहीं दे रही। ये गीत सुन रहे थे हेमकांत झा के स्वर में अभी आप। कार्यक्रम है युववाणी, युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा ये कार्यक्रम। और आज चलते हैं अपने चर्चा के विषय पर। आज हम एक बेहद गंभीर

विषय पर बातचीत करने वाले हैं, वो है डिजिटल युग, युवा और अभिभावक। इन दोनों की क्या भूमिका हो सकती है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिजिटल युग कैसा युग है। जी हाँ, ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ युग है, जहाँ दुनिया की तमाम जगहों पर हमारी पकड़ बड़ी आसानी से हो जाती है, सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से। असीमित ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं हमारे सामने, असंख्यों रास्ते खुल जाते हैं, ढेर सारे ऐप, ढेर सारे माध्यम। लेकिन इनके साथ साथ युवाओं को ये सोचना समझना होता है कि हमें कितनी देर इनके साथ बितानी है। हम जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से न सिर्फ ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, न सिर्फ अपने आप को निखारा जा सकता है, बल्कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से भी जुड़े जा सकते हैं। यानी आप अपने गांव में बैठे हुए अमेरिका की किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप अपने गांव में बैठे हुए विदेश के किसी भी जगह के बारे में खास जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं। इतनी दूरियां जो हैं वो सिमट करके आपकी मुट्ठी में आ जाती हैं। और युवा, हर युवा के हाथ में आज एक स्मार्टफोन मोबाइल है, उसके माध्यम से वह लगातार ही सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है। लेकिन एक खास बात यह है कि एक बंद कमरे में एक बंद डब्बे के सहारे काम करते हुए हम भूल जाते हैं कि इस कमरे के बाहर पूरा का पूरा मकान है, और उस मकान में हमारे लोग रहते हैं, हमारे अपने, यानी माँ बाप, भाई बहन, और उस मकान के बाहर एक पूरा समाज है, जिस समाज में हमारे लोग रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे नाते रिश्तेदार। यानी मोबाइल में, अगर डिजिटल युग में हम सिर्फ डिजिटल चीज़ों से जुड़े रहे तो शायद अपनों से दूर होते चले जाएंगे। चर्चा भी जारी है युववाणी कार्यक्रम में। अभी रुकते हैं, एक और गीत का आनंद लेते हैं, हेमकांत झा के स्वर में। सुनते हैं या नचारी।

अभी आप सुन रहे थे हेमकांत झा के स्वर में ये लोकगीत। कार्यक्रम है युववाणी और आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल युग में माता पिता और युवाओं के बीच विश्वास का महत्व। एक तो ऐसे ही हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां शहरीकरण हो चला है, संयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं और डिजिटली बच्चे बहुत रिच हो चुके हैं, युवा बहुत रिच हो चुके हैं, यानी डिजिटल युग में उन्हें समझ बहुत ज़्यादा है। तरह तरह के ज्ञान को प्राप्त करते हुए कई बार युवाओं को लगता है कि वो अपने परिवार में अधिक समझदार हैं। ऐसा होता भी है कई बार। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके माता पिता या अभिभावक कम पढ़े लिखे हैं लेकिन मोबाइल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच का विश्वास कैसे बना रहे और विश्वास बनना क्यों ज़रूरी है, यह सोचना बहुत अहम है। हाल के दिनों में आपने कई सारी घटनाएं पढ़ी होंगी कि मोबाइल पर अलग तरह के गेम खेलते हुए, मोबाइल पर पैसे लगाते हुए, मोबाइल पर विभिन्न लोगों से जुड़ते हुए बच्चों की मानसिकता इस हद तक बदली है कि कुछ गंभीर मसले सामने आए हैं। कई मसलों में तो अंत बेहद ही भयावह था, यानी युवाओं ने अपनी जान तक दे दी। ऐसे में क्या अभिभावकों का कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखें? पूरी नज़र रखने का मतलब, अब युवा सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ पूरी नज़र यानी किसी कैद में रखना, जी नहीं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे होते हैं, उस वक्त अभिभावक को चाहिए कि अपना व्यवहार धीरे धीरे परिवर्तित करें, मित्रवत हों। हमारे यहाँ तो काफ़ी प्राचीन दिनों से कहा जाता है कि जब दोनों के जूतों के नाप यानी पाँव के नाप एक जैसे हो जाएं, तो मित्रवत ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे तो बच्चे हमें खुल के बता पाएंगे कि आखिर मोबाइल पर वो क्या कर रहे हैं। वो क्या किसी चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं, किसी अच्छे ऐप के माध्यम से कोडिंग सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, या फिर किसी ऐसे खेल के चंगुल में पड़ गए हैं जहाँ मस्तिष्क के साथ साथ शायद उनकी समझ का और उनके जो गुप्त इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी लीक होने की संभावना बनती है। तो गार्जियन अगर बातचीत करते रहें, गार्जियन अगर अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना करके रखें, विश्वास बना करके रखें, तो कई बड़ी समस्याओं को बेहद आसानी से टाला जा सकता है। बातचीत रहेगी जारी, युववाणी कार्यक्रम भी जारी है, लेकिन अभी सुनते हैं एक और गीत।

कहने लगे मोहन मैया मैया। हेमकांत झा के स्वर में सुन रहे थे आप ये गीत। कार्यक्रम युववाणी में आज बातें हो रही हैं डिजिटल युग में माता पिता और युवाओं के बीच विश्वास का महत्व। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि अभिभावक और युवाओं के बीच किसी भी युग में, डिजिटल युग में ही क्यों, मैं कहता हूँ किसी भी युग में माँ बाप और बच्चों के बीच विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस संसार में विश्वास के सहारे ही हम कुछ भी कर पाते हैं, और अगर परिवार में ही विश्वास जैसी चीज़ ना हो तो समस्याएं पैदा होती हैं। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों पर, चर्चा कर लेते हैं जिन पर हमें ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस डिजिटलीकरण के युग में क्या क्या समस्याएं युवाओं को आ सकती हैं, जिनमें तीन प्रमुख बिंदु तो बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। एक तो साइबर सुरक्षा पर खतरा, दूसरा स्क्रीन टाइम की लत, यानी लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े रहना, लंबे समय तक उन्हें देखते रहना, दूसरा मानसिक प्रभाव। ये तीन तरह के चैलेंजेस युवाओं को आ सकते हैं अगर वो लगातार मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। घंटों मोबाइल में व्यस्त रहने से शरीर पर भी असर पड़ेगा, जैसे आंखों की समस्या बढ़ सकती है, मोटापा की समस्या बढ़ सकती है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकती है

की नींद, जो कि बेहद अहम और ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। साइबर सुरक्षा के खतरे में आते हैं तो साइबर बुलिंग यानी ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन धोखाधड़ी और निजी डाटा के लीक होने का डर। ये तीन चीज़ें हैं, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा समस्याएं पैदा हुई हैं। युवा वर्ग मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कई के अंजाम तो यहाँ तक बुरे हुए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहते या नहीं रहे। तो साइबर सुरक्षा के खतरे से भी हमें बचना होगा, हमें सतर्क होना होगा, हमें समझना होगा कि कहाँ कहाँ हमारी निजी चीज़ें लीक हो सकती हैं, कहाँ हमारे साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है, कहाँ हमें ऑनलाइन उत्पीड़न दिया जा रहा है। मानसिक प्रभाव, सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ स्टाइल, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जीवन में, बहुत सारे ऑनलाइन एड्स देखते हैं, बहुत सारे गैजेट्स, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, यानी हम उस योग्य नहीं हैं कि हम उन चीज़ों को अपने तक ला सकें। लेकिन दूसरों के परफेक्ट लाइफ स्टाइल को देख करके कई बार युवाओं के मन में हीन भावना पनपने लगती है, फिर वो डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें यह भी सोचना होगा कि देखिए, जिंदगी के पंथ पर स्वप्न दो तो सत्य दो, स्वप्न पर ही मुग्ध ना हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। वह एक स्वप्न की दुनिया है जहां आप देख रहे होते हैं सुंदर सुंदर चेहरे, सुंदर कपड़े, अच्छे लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, लेकिन हकीकत कुछ और होती है, सत्य कुछ और है। उसे प्राप्त करने के लिए पहले हमें उस योग्य बनना होगा। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियाँ आज भी वैसे ही सत्य हैं जब उन्होंने लिखी थी। तो युवाओं को चाहिए कि वह मोबाइल का उतना ही प्रयोग करें जितने से उन्हें लाभ पहुंच रहा है, उनके पढ़ाई पे लाभ हो रहा है। इतना प्रयोग ना करें कि प्लास्टिक का वह डब्बा, इंटरनेट का वह डब्बा उन्हें घेर करके रख ले, एक कमरे के अंदर कैद कर दे और आप कैदी बन जाएं। चलिए, कार्यक्रम जारी है, एक और गीत का आनंद लीजिए।

युवाणी कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से, और आज बातें हो रही युवाओं के संग डिजिटल युग में माता पिता और युवाओं के बीच विश्वास का महत्व। इसके पूर्व हम चर्चा में बात कर रहे थे कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं इस विषय में, और अब बात कर लें जरा अभिभावकों के बारे में, उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो अभिभावक को सोचना होगा कि वो बच्चों के साथ खुला संवाद रखें, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि दोस्ताना व्यवहार करें, ताकि वे अपनी ऑनलाइन गतिविधियां किसी भी समस्या या साइबर बुलिंग के बारे में आपसे खुलकर बात कर सकें, मोबाइल पर आ रही किसी भी तरह की समस्या को वो आपको बता सकें। अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम भी तय करें, यानी घर में मोबाइल मुक्त समय कौन कौन से हो सकते हैं, यानी जिस वक्त बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, आपके हाथ में भी मोबाइल ना हो, आप खुलकर बात कर सकें। हो सकता है साथ खाना खाते वक्त या सोने के एक घंटे पहले सब मिलकर बातचीत करें, शाम को खेलते वक्त। देखा गया है कि मोबाइल के ज़माने में बच्चों ने शारीरिक खेलकूद बिल्कुल बंद कर दिया है, इसकी वजह से उनकी शारीरिक विकास में रुकावटें आती हैं। तो आप तय करें कि आपके बच्चे न सिर्फ मोबाइल पर गेम खेलें, न सिर्फ मोबाइल से चिपके रहें, बल्कि शाम के समय कुछ पल अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के ग्राउंड में, पार्क में, खेतों में, कहीं भी अपने दोस्तों के साथ बिताएं, कुछ शारीरिक गतिविधियां करें, और संभव हो तो छुट्टी वाले दिन उनसे बागवानी करवाइए, अपने साथ लगाइए, कुछ पुरानी कहानियां सुनाइए, कुछ बीते पलों की बातें कीजिए। इस तरह मोबाइल और स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करने की सोच सकते हैं आप। और अब आते हैं डिजिटल साक्षरता पर। माता पिता स्वयं भी तकनीक के बारे में जागरूक हो जाएं और अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रहना सिखाएं। आजकल आप देखते होंगे साइबर फ्रॉड, कई तरह के SMS आपके भी पास आते होंगे। कई तो ऐसे होंगे जिनके पास टेलीफोन कॉल तक आए होंगे कि आपके परिवार के फलाने सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, या आपके परिवार का फलाना सदस्य फलाने अस्पताल में भर्ती है और तत्काल पैसे भेजने हैं। इन सब तरह के कॉल से, या कोई आपके दोस्त के नाम से कॉल करके कह सकता है कि देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजे हैं, ज़रा मुझे ट्रांसफ़र करना दूसरे अकाउंट पे, ज़रूरी है, और सिर्फ संदेश आया होता है, पैसे नहीं आए होते हैं। इन सब तरह की छोटी छोटी चीज़ों से तो कई लोग वाकिफ हो चुके हैं, मगर इनसे बड़ी बड़ी समस्याएं भी हैं जिन पर सिर्फ बातचीत करना आसान है लेकिन उन्हें झेलना बहुत मुश्किल। इन सब तरह की समस्याओं से बचिए, अभिभावक भी जागरूक हों और अपने बच्चों को तो बिल्कुल ही जागरूक रखें। निगरानी और नियंत्रण, यानी बच्चों की ऑनलाइन गतिविधि पर नज़र रखने के लिए पेरेंट्स कंट्रोल ऐप्स का इस्तेमाल करें। जी हाँ, ये एक डिजिटल ऐप है, अगर बच्चे डिजिटल हो करके होशियार हो रहे हैं तो गार्जियन को भी होना पड़ेगा। आप मोबाइल में ये ऐप लगाकर बच्चों की गतिविधि पर नज़र रख सकते हैं कि दरअसल बच्चे क्या कर रहे हैं।

ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आउटडोर गेम्स, कला, परिवार के साथ समय बिताने जैसे ऑफलाइन गतिविधियों को प्रेरित करें और हफ्ते में एक टूर भी प्लान करें अपने शहर के किसी अच्छी जगह पे, ताकि शहर से उनका परिचय बढ़ सके, अपने क्षेत्र के बारे में उनकी रुचियां बढ़ सके। और हाँ, मोबाइल लेकर ट्रैवल करने के लिए कहिए। आजकल तो ब्लॉग बनाने का भी शौक है लोगों को, तो आप अपने शहर, अपने गांव के बेहतरीन जगहों का वहाँ घूमिए हफ्ते में एक दिन, और वहाँ के बारे में लोगों को जानकारी दीजिए। इस तरह आपका गांव पहुँच जाएगा हम तक, दूर दूर तक, और आप मुक्त हो पाएंगे थोड़ी देर के लिए अपने डिजिटल नेटवर्क वाली चीज़ों से, तारों में उलझी हुई बेतार तार वाली इस दुनिया से उलझन खत्म कर पाएंगे। तो चलिए, अभी आपकी उलझन को और न बढ़ाते हुए सुनवाते हैं आपको एक और मधुर गीत।

आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं, अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा हो और इस कार्यक्रम में आप चाह रहे हों कि आपके दिए हुए किसी विषय पर हम बातचीत करें या आपके कोई सुझाव हो, आपकी कोई सलाह हम तक आप पहुंचाना चाहते हों, तो हमें आप खत लिखकर बता सकते हैं। खत लिखने के लिए यूं तो आपको हमारा पता बिल्कुल याद है, लेकिन हम फिर दोहरा देते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। तो न सिर्फ कार्यक्रम को सुनिए बल्कि कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए खतों के माध्यम से। हमें बताइए कि इस कार्यक्रम में आप और क्या बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ नयापन चाहते हैं, और अगर आपके पास है कोई ऐसा ही विषय जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के करीब है, तो वो भी हमें लिख भेजिए। हमें रहेगा आपके खतों का इंतज़ार। और खत जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आज का ये अंक आपको कैसा लगा। पता एक बार फिर, कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004। चलते चलते आपको एक और गीत सुनवाते हैं।

पहला गाना आपको सुनवा रहे हैं हम हीर एक्सप्रेस से, आवाज है समीर कौर नवी शरण की। हरमनजीत के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अवि सरा ने।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। फिल्म है रेड 2।

नए जमाने के नए तराने, आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना सुनिए अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज में। कैसर उल जाफरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म है मेट्रो इन दिनों।

नए जमाने के नए तराने आप आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहे हैं। अगला गाना भी हमने लिया है अरिजीत सिंह की आवाज में। सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है मिथुन ने। फिल्म है गदर 2।

नए जमाने के नए तराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा से। अगला गाना सुनिए जावेद अली की आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे बोल को संगीत दिया है रवि बसूर ने। फिल्म है भोला।

0: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि इस समझौते के लागू होने से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों और कपड़ा, खेल वस्त्र, कृषि उत्पाद, फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले प्राथमिकता मिलेगी।
2: I am confident that this comprehensive agreement
3: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
2: Of our shared future.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और

0: दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं। एलपीजी आपूर्ति के संबंध में उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में 1,21,00,000 से अधिक बुकिंग प्राप्त हुई, जबकि 1,22,00,000 से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। शपथ लेने वाले सदस्यों में स्वपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस रॉय, शंकर घोष और अन्य शामिल हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का अंतिम संस्कार आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। उनका निधन कल रात मुंबई में हुआ था। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण एवं कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आकाशवाणी दरभंगा से आज कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे यानी संध्या 6:10 पर विद्यापति गीत। मैथिली संवाद का प्रसारण होगा 6:25 पर। 6:30 पर सुनिएगा गांव घर के अंतर्गत अनुभव के चश्मा सर। चर्चा का विषय होगा अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम। इसी के अंतर्गत सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। खेती गृहस्थी कार्यक्रम का समय होगा 7:00। हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनिएगा 7:30 पर। 7:47 पर जिले की हलचल। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:52 पर। सिंगरहार यह कार्यक्रम सुनवाएंगे 8:15 पर। समाचार संध्या का समय होगा 8:45 पर और 9:00 सुनिएगा News@9। 9:15 पर उर्दू खबरों का प्रसारण करेंगे। पब्लिक स्पीक यह कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:00 सुनिएगा आज फोन इन और SMS आधारित हमारा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

कल आप सुनेंगे 5:50 प्रातः चिंतन, जप और जाप, आलेख एवं वाचन होगा कुसुमाकर दुबे का। इसके उपरांत प्रातः 5:55 पर सुनिएगा कृषि चर्चा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाचन स्वर होगा शंकर कुमार चौधरी का। वंदना प्रातः 6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का हमारा यह कार्यक्रम। रामचरित मानस गान का प्रसारण करेंगे प्रातः 6:40 पर। प्रातः 7:05 पर सुनिएगा नमस्कार मिथिला।

अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल की हमारी सभा प्रातः 5:45 पर आरंभ होगी वंदे मातरम गीत के संग।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले पाएंगे आप प्रातः 10 बजे से 10:30 तक। बज का कार्यक्रम अंगना आप सुनिएगा प्रातः 10:30 पर। आलेख संकलन एवं वाचन होगा विजेता सिन्हा का, प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी दरभंगा है।

ये आकाशवाणी दरभंगा है। आइए सुनते हैं विद्यापति गीत। कलाकार हैं रामकुमार मल्लिक और समित कुमार मल्लिक।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हमारे पटना केंद्र से सुनिए मैथिली संवाद।

ध्याता वैद्य डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, सुनील कुमार सिंह समेत नौ विधान पार्षद लोकनिक कार्यकाल 28 जून के पूरा भऽ रहल अछि। केंद्रीय कृषि आ किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आइ मध्य प्रदेशक रायसेन सँ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ कयलनि। ई अभियान 3 जून धरि चलत। अभियानक मुख्य उद्देश्य उर्वरक केर संतुलित आ उचित उपयोग बढ़ायब, मौसम संबंधी चुनौती सभक मध्य किसान लोकनि के समय पर सलाह देब आ पंचायत स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करब अछि। एम्हर पटना में कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल भेला। ओ कहलनि जे अभियानक दरमियान किसान लोकनि के रासायनिक खादक स्थान पर हरित खादक उपयोगक लेल प्रेरित कयल जायत। श्री सिन्हा जनौलनि जे अभियानक दरमियान किसान लोकनि के किसान क्रेडिट कार्ड आ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सँ सेहो जोड़ल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार लेल घोषित प्रधानमंत्री पैकेज आ केंद्रीय बजट केर घोषणा सभक कार्यान्वयन में तेजी आनबाक अधिकारी लोकनि के निर्देश देलनि अछि। पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा बैसक में श्री चौधरी सभ परियोजना के समय पर आ गुणवत्तापूर्ण ढंग सँ पूरा करबाक संबंध में आवश्यक निर्देश देलनि। मुख्यमंत्री एहि गप पर जोर देलनि जे जनहित योजना सभक लाभ अंतिम व्यक्ति धरि पहुँचय। एम्हर समाज कल्याण विभागक समीक्षा बैसक में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सभक राशि सभ मासक 10 तारीख धरि लाभार्थी लोकनिक खाता में सुनिश्चित रूप सँ भेजबाक निर्देश देलनि।

0: राज्य सरकार गर्मी के देखैत आमजन के शुद्ध पेयजलक आपूर्ति सुनिश्चित करबा आ सब खराब पड़ल चापाकल के 15 जून धरि चालू करबाक निर्देश देलक अछि। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम सँ पेयजल संकटक समाधान आ चापाकल सभक मरम्मत लेल भेल बैसक मे एहि संबंध मे अधिकारी लोकनि के दिशा निर्देश देलनि। आम लोक सभक समस्याक निपटारा लेल पंचायतक तर्ज पर राज्यक नगर निकाय सभ मे काल्हि सँ सहयोग शिविरक शुरुआत भऽ रहल अछि। एहिमे लोक सभ सँ प्राप्त आवेदनक आधार पर हुनक समस्या सभक समाधान 30 दिनक भीतर कयल जायत। काल्हिये राज्यक पंचायत सभ मे सेहो सहयोग शिविर आयोजित कयल जायत। प्रदेश मे सरकारी बस सभ सँ यात्रा करब आइ सँ महगा भऽ गेल अछि। परिवहन विभाग बस किराया में 10-15% धरिक बढ़ोतरी कयलक अछि। ओतहि सिटी बस सभक किराया में सेहो 15% धरिक बढ़ोतरी कयल गेल अछि। तेल कंपनी सब 19 किलोग्राम वाला व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 53.50 रुपया के बढ़ोतरी कयलक अछि। आब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रुपया में भेटत। ओते घरेलू सिलेंडर के दाम में कोनो बदलाव नहीं कयल गेल अछि। नव दर आइ सँ लागू भऽ गेल अछि। जेईई एडवांस्ड 2026 मे गया जी के शुभम कुमार देश भर में पहिल स्थान प्राप्त कयलनि अछि। ओ एहि परीक्षा में 360 में सँ 330 अंक प्राप्त कऽ कॉमन रैंक लिस्ट में पहिल स्थान प्राप्त कयलनि। गया जी के नादरागंज ब्रह्मणी घाट निवासी शुभम जेईई मेंस के दुनू सत्र में 100% प्राप्त कयने छला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुभम कुमार के एहि सफलता पर बधाई दैत हुनकर उज्ज्वल भविष्यक कामना कयलनि अछि। केंद्रीय मंत्री आ गयाक सांसद जीतन राम मांझी शुभम के बिहारक गौरव जनबैत एहि उपलब्धि पर हुनका बधाई देलनि अछि। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुरक काल्हि मुंबई स्थित हुनक आवास पर निधन भऽ गेलनि। ओ 89 वर्षक छलीह। ओ 1950 सँ 1970 केर दशक मे फिल्म संगीत मे हिंदी आ मैथिली समेत अनेक भारतीय भाषा मे अपन मधुर गायकी लेल प्रसिद्ध छलीह। हुनकर निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देलनि अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाम घर।

0: कार्यक्रम गाम घर सुननिहार समस्त स्नेही श्रोता लोकन के देवू भाईक नमस्कार, संगी उगना भाई अहों के नमस्कार।
1: नमस्कार देवू भाई। देवू भाई, आई सोम दिन है आ आजुक दिन हमरा लोकन स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकनिक लेल लऽ कऽ अबैत छनि हुनक साप्ताहिक कार्यक्रम अनुभव के चश्मा सँ। एहि कार्यक्रम अंतर्गत हिनका लोकनिक लेल लऽ कऽ आयल छियनि एकटा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, एकर संगहि एकटा भेंटवार्ता, गीत नादक आनंद सेहो लेब, मुदा एहि सबसँ पहिने किछु दू टप्पी कऽ लै छी।
0: हाँ हाँ, किएक नहि उगना भाई, गप सप कयलासँ होइ छै कि कोनो तरहक तनाव जो रहैए ने मनमे, तो गप सप कयलाके बाद जे छै बुझू जे मन हल्लुक भऽ जाइ छै। ओना जँ ओना हमरा लोकनि जे छी उगना भाई, जे हमरा लोकनि एकटा सामाजिक प्राणी छी आओर समाजमे रहै छी, आ समाजमे रहि कऽ हमरा सबके कर्तव्य बनैत अछि कि हमरा लोकनि एक दोसरसँ मिलजुल कऽ रहबाक चाही। आइ एहिसँ सम्बन्धित आइ हमरा लोकनि गपशप करब जे अल्पसंख्यक लोकनिके लेल प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम सेहो अछि, एहिपर हमरा लोकनि विशेष रूपसँ गपशप करब। उगना भाई, हमर सभक जे देश अछि ने, ओ बुझू जे

0: अनेकता में एकता के देश अछि। सरकार के प्रयास अछि जे सभक साथ सभक विकास हुए। देश के विकास, देशक अर्थव्यवस्था तखने मजबूत हैत जखन सब कोई डेग से डेग मिलाकर आगू बढ़ब। आई इह से संबंधित एहि पर हमरा लोकन विशेष रूप से प्रकाश डालब। उगना भाई
1: ठीके कहलौ। आ देवू भाई, प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जे अल्पसंख्यक कल्याण लेल अछि, एहि अंतर्गत एकटा शिक्षा सेहो अछि, तऽ शिक्षा के विकास के संग संग हिनका लोकनि के कल्याण लेल से सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कतेको प्रकारक प्रयास कयल जा रहल अछि। जेना हिनका लोकनि के छात्रवृत्ति देल जाइ छनि, प्रशिक्षण देल जाइ छनि, कोचिंग के व्यवस्था कयल गेल छनि, अन्य कतेको तरहक सुविधा देल जाइ छनि। बेर रहत तऽ फिर गप करब, मुदा आप पहिने सुनै छी ई गीत, तऽ सुनल जाय चंद्रिका कुमारी गान।
0: सुनल जाय।

0: सिंगार देखे चलियो मैया के अद्भुत सिंगार।
1: चंद्रिका कुमारी के गावल छली देवी गीत,
0: हाँ ओतबे ने समय शाम के समय ओहे मैया के भजन कीर्तन बहुत निक लागल। आशा करै छियनि श्रोता लोकन के सेहो निक लागल हेतनि। आब जे देखू उगना भाई जे कार्यक्रम फेन आगे हमरा लोकन बढ़ाबी और एकटा हमरा लोकन ओवी पर आधारित एकटा कार्यक्रम सुनै छी भेंट वार्ता। भेंट वार्ता के विषय अछि बुजुर्गो का समाज में समाजक धरोहर। भेंट वार्ताकार छथि उमा शंकर झा, हिनका से गप कऽ रहल छथि शंकर कुमार चौधरी। तऽ आउ हमरा लोकन सुनी भेंट वार्ता।
2: एक गोटे छथि हिनका सँ भेंट भेल अछि, हिनका सँ ई स्नेही बुजुर्ग श्रोता लोकन के जनतब देबऽ चाहै छियनि जे समाज में बुजुर्ग लोकन के मान सम्मान एखनुक बेर में बड़ आवश्यक अछि। जे प्राय देखल जा रहल अछि जे आधुनिकता के बेर में भौतिकवादी जे परंपरा सब के लोक ध्यान दऽ रहल छथि ताहि में कतौ नहि कतौ सँ परिवार बिखरि रहल अछि। आ युवा संतान ई लोकनि अपन दायित्व सँ मुकरि रहल छथि। एहन परिस्थिति में अहाँ अपन की जनतब देबऽ चाहै छियनि? अपने के नाम भेल उमा शंकर झा जी, तो स्नेही श्रोता भाई बहिन लोकन के जनतब दियन जे वृद्ध लोकनिक की स्थित छन एखनुक समाज में।
3: अखनुक समाज में तो स्थिति ठीक छन, किछ आइ काल्हि के धियापुता के अपन सेहो समस्या छन। जे मिथिला के सामाजिक व्यवस्था छलै बुजुर्ग के मान सम्मान, तकर दिन सँ दिन क्षरण भेल जा रहल अछि। और किछ जगह तो वृद्धाश्रम खोलक के सूचना सेहो हमरा सबके भेटल अछि। जे हमरा सबके संस्कारगत मिथिला संस्कृति में ई एकटा अजीब ढंग से बुझा रहल अछि जे हमेशा जे बुजुर्ग व्यक्ति छथि घर के मुखिया मानल जाय छलथ, एकटा ओकरा मेह कह सकै छियै, मेह बुझि के ओकरा चारू तरफ लोक घूमे छलै, सामाजिक एकटा प्रतिष्ठा छलै, हुनके नाम से जानल जाय छल परिवार। लेकिन आब ओहि सब ढंग के बात छै नहि, तऽ आब एहिमे अखन कोनो एहन किछ कहल नहि जा सकै छै। मान सम्मान वापस भेनाइ तऽ जरूरी छै ने, चूँकि हुनकर देख रेख आब ज्यों ज्यों समय बीतै छै त्यों त्यों आदमी कमजोर होइत चलि जाइ छै, दोसर के सहारा के आवश्यकता होइ छै, जाहि मे अखन कमी बुझना जा रहल अछि।
2: बुजुर्गा अवस्था सब गोटा के अबैत छन, मुदा ई अबै वाला समाजक जे एखनुक युवा वर्ग छथि हुनक संतान छथिन, हुनक ई दायित्व भऽ जाइत छनि जे अपन जे बुजुर्ग सब पर ध्यान दैत, विशेष रूप सँ जखन ओ लोकनि बीमार पड़ैत छथि अथवा हुनका कखनो कोनो प्रकारक सेवा के आवश्यकता पड़ैत छनि। तऽ एहि प्रसंग अपने के की विचार अछि?
3: संस्कृति के क्षरण भऽ रहल छै और धीरे धीरे संयुक्त परिवार से सूक्ष्म परिवार के तरफ लोग बढ़ले, चाहे ओकर आवश्यकता रहल होय नहीं रहल होय, नतीजा ओकर आप सामने आबि रहल अछि जे कोनो बच्चा जे छै बहुत बच्चा के अपना दादा दादी से भेटो नहीं भऽ पबै छै, ने ओ सिर्फ नाम टा जो भेटो भेल तो बहुत थोड़े काल के लेल, तो धीरे धीरे वह सूक्ष्म रूप आप अपना में सिमट कर आधुनिकता के तरफ आदमी ओहि चलते सेहो हमरा लागि रहल अछि जे किछु ने किछु कतौ ई भऽ रहल छै जे ई दायित्व बनै छनि अखन।

0: के पीढ़ी के जे अपना बच्चा सबके अपन संस्कृत के शिक्षा देथुन और परिवार में बुजुर्ग के की महत्व छै ताहिसँ जरूर परिचय करब।
1: ठीक है कहलौ, बुजुर्ग लोकनि परिवार लेल समाज लेल धरोहर छथि, हुनक संरक्षण होबाक चाही, हुनका पर ध्यान देबाक चाही। यद्यप एहि दृष्टि में सरकार द्वारा सेहो कतेको प्रकारक कानून बनाओल जा रहल अछि, मुदा आवश्यकता अछि जे हिनका लोकनि के सेवा चाही, बेर पर भोजन वस्त्र आवास संगे जे संतान बाहर गेल छथिन रोजी रोटी के दृष्टि से हुनको लोकनि के बेर पर हिनका जे किछु आवश्यकता छन तकर पूर्ति पर ध्यान देबाक चाही जे कतौ ने कतौ सँ कमी भ रहल अछि।
0: जखने संस्कृति के क्षरण भेलै, आधुनिक युगिन बच्चा के महत्व नहि पता छै कि बाबा के की महत्व छन और हुनका अपना परिवार के लेल की करे पड़लन और केना परिवार बनले, एहि सब चीज के शिक्षा या जानकारी जाबत तक बच्चा सब के नहीं देल जेतै तो समानक कल्पना केनाई थोड़े मुश्किल अछि। तो एहि तरफ थोड़े ध्यान देबऽ पड़तै जे कम से कम जे व्यक्ति कोनो छथि बाहर कतौ छथि वो अपना धियापुता के अपना परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी हुनकर संघर्षक जानकारी देथुन और कम से कम अपना बच्चा सबके सामने में अपन माय बाप के सम्मान जरूर करत जे कल हुनको जहन वो बुजुर्ग हो तो हुनका सम्मान भेट सके।
1: ठीक है कहलौ, एकर संग संग इहो देखल जाइत अछि जे जखन कखनो परिवार में कोनो प्रकार के सामाजिक उत्सव होइत अछि तऽ ओहन बेर में एखनुक जे आधुनिक बेर अछि तै में सब गोटा लागल रहैत छथि आ हुनका बेर पर उचित समय नहीं दे पबै छथिन जाहिसँ कि ओहो लोकनि एहि उत्सव में सहभागिता अपन दे सकैत हैं। एहि प्रसंग की अपने के विचार
0: अछि? बहुत ठाम ई देखल गेल अछि जे बुजुर्ग पूर्णतः उपेक्षित रहै छथि एहि सब सामाजिक कार्य में, लेकिन हुनकर अपन एगो महत्व छन्हि। अखनो धरि तक लोग ई कहै छै जे कि फलां बाबू ओहिठाम मुड़न छन्हि या फलां संस्कार छै तो हुनका ओहिठाम कनी जाय पड़तै जाइ छै, तो बुजुर्ग व्यक्ति के वह महत्व छै जे हम सब अखनो आइ तक पितामह और पिता के नाम से परिवार जानल जाइ छै। गांव घर में लोग अखनो जहाँ हुनकर वंशज छथिन।
1: अपने के एहि लेल धन्यवाद।
2: हाँ, श्रोता लोकनि अखन हमरा लोकनि भेंट वार्ता सुन रहल छलहुँ। भेंट वार्ता के विषय छल बुजुर्गों का समाज के धरोहर छथि। भेंट वार्ताकार छला उमा शंकर झा, हिनका से गप कर रहल छला शंकर कुमार चौधरी। दोनों गोटे के बीच भेल गप सब खूब निक लागल। आब जे छै उगना भाई जे हमरा लोकन के कार्यक्रम के आगा बढ़ाबी आ सुनै छी प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
3: तो सुनल जा ई कार्यक्रम।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

नमस्कार, मैं हूं राजेश। सोमवार का दिन है, आ गया आपका दोस्त राजेश। कैसे हैं आप सब युवा साथियों? इन दिनों नए नए कोर्सेज की चर्चा कर रहा हूं, खास करके वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आज भी एक नया क्षेत्र है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और दूसरा कोर्स था आप सबों के लिए बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी। आज परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। और ये आया है जिसकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, बहुत ही उम्दा संस्थान, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतक।

0: आस बिहार। जी हाँ, ढेर सारी बातें होंगी। उससे पहले हम शेयर करते हैं अपना मोबाइल नंबर कि अगर आपको कोर्सेज के विषय में जानकारियां चाहिए, किसी भी टेक्निकल कोर्स के विषय में जानकारी चाहिए, चाहे हेल्थ सेक्टर से हो, मेडिकल के लिए हो, पैरामेडिकल के लिए हो, नर्सिंग के लिए यानी बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, या फिर जर्नलिज्म के लिए, लॉ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी क्षेत्र में अगर जो आपको जानकारियां चाहिए तो ये नंबर इस्तेमाल कीजिए। नंबर है 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर भी है 1800121001, 1800121001, और एक वेबसाइट भी है जहां जा सकते हैं आप, www.gnsu.ac.in। हमने कहा, राजेश हमेशा कहता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और करियर को और अपने जिंदगी को एक नई उड़ान दे दीजिए। कहते हैं ना कि बुनियाद मजबूत कीजिए। बहरहाल आज समय नहीं जाया करते हुए आप सबों को जानकारी देते हैं कि एक और नया कोर्स आया है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ सेक्टर में एक मुकाम बनाना चाहते हैं, वो क्षेत्र है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में जानकारी हम दिलवाते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, आइए इनसे ही हम इनकी जानकारी लेते हैं, इनका परिचय लेते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार।
0: प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुनियाद के आज के अंक में। पूरा बिहार और झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ चुका है युवाओं का। जी हाँ, उनके गार्जियन भी ये कार्यक्रम सुनते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानकारियां दें।
1: बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, हाँ, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट होते, दे आर वर्किंग ऑन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली पे वो काम करते हैं। जब किसी पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी होता है, उस दौरान उनकी हार्ट और लंग्स को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो उस दौरान जब वो हार्ट और लंग जो कि अगर निष्क्रिय है तो पेशेंट कैन डाई, तो उसको मेंटेन करने के लिए देर इज अ लाइफ सपोर्ट मशीन, जिसको कहते हैं हार्ट लंग मशीन, उसको ऑपरेट करने का काम यह परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के जने करते हैं। यानी उस पर्टिकुलर ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट वो इस परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के हाथों में ही रहती है। तो इनका काम बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही ज्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि निगरानी वाला महत्वपूर्ण कार्य है।
0: प्रोफेसर नीरज, पहली बार बिहार और झारखंड में बुनियाद कार्यक्रम में ये जो कोर्स है ना परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का, ये जा रहा है लोगों के बीच। हाँ, लोगों को जानकारियां पहुंच रही है कि ये कोर्स भी होता है और ये कोर्स गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है, जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में। और नीरज जी, आप ही के देख रेख में ये कोर्स चलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कौतूहल होगा और अभी जो आपने आंसर दिया है उससे संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन वो कौतूहल अभी बना हुआ होगा। हम एक बार फिर चाहेंगे कि उस कौतूहल को आप शांत करें, और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप सीधे सीधे फोन पर बात कर लें, 9431899002, 9431899002 और 1800121001। हाँ नीरज जी,
1: हाँ, यह कोर्स जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स है, और ये कोर्स मेरे ख्याल से बिहार झारखंड में बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, या तो ना के बराबर होंगे बिहार में, या बहुत कम ही होंगे जहां ये होता है। और ये कोर्स जैसे बताया कि इतना स्पेशलाइज्ड है कि बच्चे इसमें इतने स्किलफुल होते हैं कि एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान उनको उस मशीन को ऑपरेट करके उन्हें जिंदा रखना होता है, ताकि उनके पूरे शरीर में, पेशेंट के शरीर में ब्लड की और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रहे, ये इनका काम होता है।
0: वेल, बहुत अच्छा। साथ साथ हमारे युवा साथियों और उनके माता पिता को प्रोफेसर साहब ये भी बताते चलिए कि ये कितने साल का कोर्स होता है।
1: ये 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई होती है और एक

0: साल का इंटर्नशिप होता है।
1: अच्छा, हमें लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये आप जैसे मालूम है कि हमें पेशेंट पे ये काम करना है, तो उसके लिए एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और श्रोताओं को ये बताना भी चाहूंगा कि हमारा जो यूनिवर्सिटी, हमारे पास अपना इन हाउस हॉस्पिटल भी है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1200 बेडेड हॉस्पिटल, जहां पर हमारे पास एन नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर गोइंग टू ओपन हार्ट सर्जरीज, जिसमें कि हमारे यहाँ उनको अच्छा एक्सपोजर ही मिलने की पूरी

0: approximately 1200 bedded hospital, jahan par hamare paas n numbers of patients are coming, number of patients are going to open heart surgeries, jisme ki hamare yahan unko acha exposure hi milne ki pure chances hain. Aur kyunki hamare yahan apne yahan ek profession technologist waise kaam bhi kar rahe hain, unki dekh rekh mein ye log acha seekh bhi lenge.
1: Karyakram chal raha hai Buniyad aur main hu Rajesh. Hamare saath professor Neeraj hain जो जानकारी दे रहे हैं एक नए कोर्स परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में, जो इसी सत्र से गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास में शुरू हुआ है, वैसे युवा साथियों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है. और आपको बताएं कि इससे पहले हमने दो कोर्सेज की चर्चा की थी, जिसकी शुरुआत भी इसी सत्र से हुई है, और इसके लिए भी इंटरमीडिएट बायोलॉजी होनी चाहिए. बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, और दूसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज. इन दोनों और इन तीनों, अगर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को जोड़ ले मित्रों, तो बहुत ही उम्दा क्षेत्र है. आप चाहें तो अधिक जानकारियां ले सकते हैं इन नंबरों से, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051. प्रोफेसर नीरज, एक बात बताइए, जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे आपके यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो आपका जैसा कि बताया कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, 1200 करीब बेड है वहाँ पर, तो हमें ये जानकारी चाहिए आपके माध्यम से पूरे बिहार और झारखंड में ले जाने के लिए, कि क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलता है, और मिलता है तो कब से और कितना?
0: जी, हमारे बच्चों की वहाँ पर रोस्टर लगती है, हर महीने वाइज मंथली वाइज उनकी वो रोस्टर बनती है, और उसके हिसाब से उनकी वहाँ पर पोस्टिंग लगती है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक्स, 3 साल की पढ़ाई के दौरान भी, और जब 1 साल का इंटर्नशिप करते हैं उसमें भी उनकी रोटेटरी इंटर्नशिप की रोस्टर बनती है, फिर वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं, वो इंटर्नशिप करते हैं.
1: क्या बात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा जान करके कि जो इस क्षेत्र में पहले के दूसरे कोर्सेज हैं वहाँ के बच्चे ड्यूटी करते हैं और वहाँ अपनी काबिलियत प्रूफ करते हैं, और अब ये जो तीन कोर्स हम बता रहे हैं लगातार, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज और बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी. जी हाँ, क्या एक बात बताइए कि अगर यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर अच्छा करें तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें क्या आप उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी नौकरी लगती है, अपने बच्चों को लेते हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल, ये हमारी तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि हमारे और भी पिछले कोर्सेज, पुराने कोर्सेज के बहुत सारे बच्चे हमारे खुद के हॉस्पिटल में एब्जॉर्ब हुए भी हैं, और वो हमारे परस्पर संपर्क में भी रहते हैं, उनसे हम अपने बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते रहते हैं, उनको कई दफ़ा हम एलुमनाई लेक्चर भी कराते हैं, करियर काउंसलिंग भी उनसे कराते हैं, तो ये तो हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस पे हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज भी करते हैं.
1: हम चाहेंगे अब आपसे कि पूरा बिहार और झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुन रहा है हमारे बुनियाद कार्यक्रम को, वर्षों हो गए इस कार्यक्रम को लेकर आते आते बुनियाद को, और इस पर लोग भरोसा रखते हैं, युवा साथी भरोसा रखते हैं, गार्जियन भरोसा रखते हैं, और भरोसा रखते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार पर भी. हम आपसे प्रोफेसर नीरज ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स बोले तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में कैसे बच्चे आ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सीटें हैं, ब्ला ब्ला जितनी भी जानकारियां हैं आप दे दीजिए.
0: ये 10 इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विथ 45% मार्क्स इन ऑल टुगेदर, और हमारे यहाँ सीट इसकी है 10 हमने रखी है अभी, और आगे भविष्य में देखेंगे हम इसको बढ़ाना होगा, पर फिलहाल हमने अभी 10 सीट्स रखी है इनकी. और ये जैसे मैंने पहले बताया 4 साल का कोर्स है, 3 साल की पढ़ाई होगी, 1 साल का इंटर्नशिप होगा, और यह कोर्स कराने के लिए हमारे पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल विद आर पोस्टिंग्स डन इन NMCH.
1: इस कोर्स को करने के बाद रोजगार क्या डिमांड क्या है, क्या डिमांड है इस कोर्स की?
0: ये जैसे कि मैंने बताया कि आजकल ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ती जा रही है, अब जब ओपन हार्ट सर्जरी बढ़ेगी तो पेशेंट्स के हार्ट एंड लंग्स को निष्क्रिय किया जाएगा, उस दौरान परफ्यूजनिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, हर जगह पड़ती है, तो इसलिए इस कोर्स की डिमांड

0: भी धीरे धीरे वैसे ही बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वहाँ भी अब स्पेशलाइज्ड ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ भी प्रोफेशनिस्ट अपॉइंट किए जा रहे हैं, बहाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ भी इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना ही नहीं, बहुत सारे आपने भी जानते होंगे कि हर जगह जगह सुपर स्पेशलाइज हॉस्पिटल खुल रहे हैं जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और एक और ऑप्शन होता है विदेशों में करियर का ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया सुपर स्पेशलाइज्ड ये कोर्स है, तो इनकी डिमांड बाहर भी बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ के बाहर भी अब्रॉड सेटल हो चुके हैं, तो वहाँ भी इनके पास चांसेस हैं। और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर MSc मास्टर्स करके ये टीचिंग में भी आ सकते हैं।
1: अच्छा नीरज जी, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है, जो बच्चे रोजगार नहीं करना चाहें या अपना क्लिनिक खोल कर बैठे हैं, तो क्या उन्हें कॉल पर भी तो बुलाया जाता होगा?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल पे बुलाया जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते भी हैं कि उनका दे हैव द टाई अप विद और कॉन्टैक्ट विद 10 or more than 10 or 20 हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ जब कभी ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो दे इनको ऑन कॉल पे बुलाते हैं ऐसे लोगों को, और ये वहाँ जाके हर जगह से अपना वो अपना काम करके दे कैन चार्ज।
1: बहुत ही उम्दा कोर्स है। हाँ बहुत ही, हाँ पैसा कमाया जा सकता है, करियर बनाया जा सकता है, लोगों की सेवा की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में अगर आप दाखिला लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखिए, जैसा कि प्रोफेसर नीरज ने बताया है कि सत्र से सिर्फ 10 सीटें ही हैं, इसलिए देर नहीं कीजिए। थैंक यू डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक मिनट, आपसे एक जानकारी आपने दी, आपके सामने ही लोगों को बोल दें कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज में भी मात्र 30-30 सीट ही है। अगर उधर की तरफ रुख करते हैं तो आपको जल्दी करनी होगी, हाँ प्रयास करना होगा। और अब थैंक यू प्रोफेसर नीरज, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको जब भी बुलाएंगे आप आएंगे। समय खत्म हो रहा है, प्रोफेशनल पढ़ाई करने की हम बात करते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बीएड स्पेशल एजुकेशन की भी पिछले दिनों हम बहुत चर्चा कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारे संभावनाएं हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं। फिलहाल नोट करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये नंबर जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं, नंबर है 9431899002 9431899002। तो राजेश को दीजिए इजाजत, थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का राजेश को मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: देवू भाई, अखन हमरा लोकन सुनलो ये प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आ एकर संगे आब आजुक अनुभव के चश्मा से कार्यक्रम के बेर संपन्न भ रहल अछि। फिर अगला सोम दिन ई लऽ कऽ आयब आ एकर संगे खेती गृहस्थी में आब स्नेही किसान श्रोता भाई बहिन लोकन के स्वागत करै छियनि।
4: हमहुँ स्वागत करै छियनि, नमस्कार करै छियनि आ चलै छी तनी बाध वन दिस। उगना भाई, ओना तऽ हमरा लोकन के जे छै हमर किसान श्रोता लोकन 12 मास 3600 दिन जे खेत पथारी में लगले रहे छथिन, तऽ आइ हमरा लोकन समय के अनुकूल जो समय के जो कोनो चीज जे फसिल जो होइ छै ना ओकर ताक होइ छै, आ ताक के अनुकूल जहन खेती बाड़ी करबै ना तो बेसी से बेसी जो छै उपजा बाड़ी नीक होइ छै आ कीट व्याधि के समस्या से सेहो ओकर बचाव होइ छै।
3: ठीक है,
4: तऽ आइ हमरा लोकन गप सप करब जे ओल के उन्नत खेती कोना करी, कि एक तऽ ओल जो छै एकटा बहुत ही नीक तरकारी तिमन तरकारी अछि आओर एकर मांग जो छै उगना भाई सदखन जे हाट बाजार में होते रहते छे। कारण जे ओल के मांग जो छे चाहे कोनो तरहक शुभ काज में, चाहे वो उपनयन हुए, जनौ हुए, मुरन हुए, शुभ विवाह हुए, एहि तरह काज में जो छे सदखन एकर मांग होते रहते छे।
3: ठीक है कहलौ। आ ओल के कतेको प्रकारक जे उत्पाद अछि सेहो उपलब्ध रहते छे, हमरो लोकनि बनबै छी, मुदा ई सब तखने न होयत देवू भाई जखन कि एकर खेती नीक जकाँ करब। तो ओल के आधुनिक आ उन्नत ढंग से जो खेती करब तो निश्चित रूप से मनोनुकूल उपजा होयत, आ एहि लेल सदत किछु जे आवश्यक गप होइत अछि ओहि पर ध्यान देबाक

0: चाहि जना ओल के सदति उन्नत तो अनुशंसित प्रभेद के लगेबाक चाहिए। त एकर उन्नत ओ अनुशंसित प्रभेद है गजेंद्र ओल एक त एकर खेती निक जका करी।
1: हाँ हाँ बहुत निक गप कहलिए कि देखियो खेती बाड़ी करवा में पूँजी लगे है उगना भाई पूँजी लगे है मेहनत लगे है परिश्रम लगे है तखन जाकर जे निक जका उपजा बाड़ी होइ छै। अब मान लिया कि हमारा लोग इतने कैला के बादो जहन उपजा बाड़ी निक नहीं भेल तब बुझ ओहि काल में बुझू जो मन छोट भ जाए छे। तो सबसे पहले ओल के खेती करवा से पहले हमारा लोग के जो है उन्नत प्रभेद के तो चुनाव करबे करी संग संग जकर जो छे माटि के जो छे सेहो चुनाव करबाक चाही।
0: ठीक है कारण माटिए पर न फसल है
1: तो ओहि लेल जो छे एकर ओल के खेती लेल बलुआही आ दोमट माटि के बुझू जे बहुत उपयुक्त मानल गेल अछि। और प्रभेद के गप कहबे कल कि गजेंद्र प्रभेद हमारा लोकन के लगाबी उपज क्षमता के जो गप करी उगना भाई तो 50 से 55 टन प्रति हेक्टेयर दर से कर उपजा भ जाते अछि। रोपनी करबाक समय थिक मार्च अप्रैल से लऽ कऽ जून मास धरि जे अखन एकर समय जो छे उगना भाई बहुत उपयुक्त अछि।
0: अहि मास धरि अछि आब एकर बेर बचल
1: संग संग जो छे लगाबत काल हमरा लोकन के दूरी के सेहो ध्यान रखबाक चाही। तो दूरी लेल जो छे हमरा लोकन के जे 75 × 75 सेंटीमीटर जे रखबाक चाही। जो बिया दर के गप करी तो 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर से कर व्यवहार करबाक चाही। किसान श्रोता लोकन ओल कंद के खेत में लगाबा से पहिने हमरा लोकन के बीजोपचार अवश्य कऽ लेबाक चाही। ओहि लेल कटल कंद के ट्राइकोडर्मा विरिडी 5.0 ग्राम प्रति किलोग्राम पौध के पौध सामग्री के दर से जो है गोबरक घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट धरि डुबा कर रखला के बाद कंद के छाया में 10 से 15 मिनट धरि सुखैला के बाद तखन जो है उगना भाई हमरा लोकन के खेत में लगेबाक चाही।
0: ठीक है कहलो
1: होइ छै कि बीजोपचार कयला सँ जे अनोखो तरहक रोग माटि रोग जनित जो रोग होइए न ओ बुझू जे खत्म भऽ जाइ छै।
0: ओहिमे रोग प्रतिरोधक क्षमता सेहो बढ़ि जाइत अछि आ हमरा लोकनि के ओल के जखने रोग नहि लागत रोग ब्याध नहि होयत तऽ उपजा नीक होयत ओहुना ओलमे बीमारी कम लागत
1: अछि। तो हमारा लोकन जो छे संग संग जो छे खाद उर्वरक तो सेहो ना ध्यान राखे पड़त उगना भाई। तो ओहि लेल जो छे खाद उर्वरक में प्रति खद्धा 3 किलोग्राम गोबर 20 ग्राम अमोनियम सल्फेट आ 10 ग्राम यूरिया 37.5 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट आ 16 ग्राम पोटाशियम सल्फेट रोपनी के 78 से 90 दिन बाद उपयुक्त मात्रा में नेत्रजनीय उपरिवेशन हमरा लोकन के करबाक चाहिए।
0: देवू भाई हमरा लोकन जे खेती में उर्वरक के व्यवहार करै छी तो ई ध्यान राखी जे एकर संतुलित मात्रा के व्यवहार करी एकर व्यवहार करबाक जे उचित बेर होइत अछि ओहि बेर पर एकरा व्यवहार करी कारण एहि के ध्यान रखला सँ दूटा लाभ तो प्रत्यक्ष होते पहिने तो रुपया बचते।
1: हाँ हाँ
0: जखने कम उर्वरक के व्यवहार करबे आवश्यकता अनुसार करबे तो आर्थिक बचत हैत एकर संगे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़त फसिल पर कारण बेसी उर्वरक के व्यवहार कैला से माटि के गुणवत्ता पर दुष्प्रभाव पड़ते तो फसलक उपजा ओतेक नीक नै हैत जो बेसी दऽ देबै
1: माने उचित मात्रा में संतुलन मात्रा
0: में जो कहऽ चाहै छलौं आ फसिल के लगेबा से पहिने माटि के जांच सेहो करा ली
1: समय समय
0: उर्वरक के अनुशंसित जे मात्रा कृषि वैज्ञानिक लोकन कहै छथि ओकर व्यवहार करबाक चाही।
1: तो उना भाई जो एहि तरहे हमरा लोकन जो खेती बाड़ी करी तो बुझू जे नीक उपजा बाड़ी होयत आ जहन नीक उपजा बाड़ी होयत तऽ बुझू जे मन एकदम हर्षित भ जाय। तऽ हमरा लोकनि
0: बुझि रहल छी अहाँके मोनक गप।

0: हाँ, उगना भाई अखन हमार लोकन विभा सिन्हा के स्वर में ई देवी गीत सुन रहा छलो।
1: जेहने गीत तेहने बोल आ
0: तेहने समय भाई,
1: आब हमरा लोकन एकटा भेंट वार्ता सुनै छी।

0: हाँ हाँ समय जो छे अखन जो छे खरीफ मास के जो से सोहो नहु नहु समय आब रहल छे
1: आ हमर ई एच भेटवार्ता के विषय
0: हाँ हाँ भेटवार्ता के विषय छे हमरा लोकन सुने छी कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत से भेटवार्ताकार छे डॉक्टर एस पी गंगवार आ हिनका से गप कर रहल छे अमरेश कुमार झा
1: तो सुनल जा दुनू गोटा के बीच भेली गप सब
2: खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं लखनऊ प्रखंड के अंतर्गत सुखेत गांव में जहां कृषि विकास केंद्र है। हमारे बीच आज उपस्थित हैं यहां के निदेशक, मैं उनसे परिचय लूं पहले और उनसे जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि ये कितने रकबे का ये किसान विकास केंद्र है, इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या उपलब्धि रही और क्या क्या इसमें कार्य प्रणाली अभी होने बाकी है, ये सभी पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले अपना नाम कहा जाए।
3: धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एस के गंगवार हुआ, मैं यहाँ पे बड़ी वैज्ञानिक सह प्रधान हूँ यहाँ पे, और ये कृषि विज्ञान केंद्र 2019 में जो है शुरू हुआ है, तब से जो है अनवरत यहाँ पे काम चल रहा है और मैं अभी यहाँ पे 4 महीने पहले आया हूँ। यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र, जो अन्य कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो पूसा के करीबन 16 कृषि विज्ञान केंद्र जो है हमारे यूनिवर्सिटी में हैं, उसमें एक ये मधुबनी में है, जो यहाँ पे हमारे पास 5 हेक्टेयर लैंड है जिसमें हमारा जो मैंडेट एक्टिविटी है कृषि विज्ञान केंद्र की, जो सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है उसका जो है सीड प्रोडक्शन राजेंद्र मंसूरी यहाँ पे सीड प्रोडक्शन धान का हो रहा है, और जो है टारगेट हमारा 200 कुंटल का है 5 हेक्टेयर में, और हम लोग जो है पिछली बार 230 कुंटल का उत्पादन करके दिए थे जो कि टारगेट से काफ़ी अच्छा था। इस बार हम लोगों का उम्मीद है कि हम लोग 250 कुंटल से ज़्यादा धान उत्पादन करके यूनिवर्सिटी को देंगे। दूसरा यहाँ पे जो मैंडेट एक्टिविटी में ऑन फार्म ट्रायल होता है, ऑन फार्म ट्रायल में जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं असेसमेंट होता है उसमें जो है हम लोग यहाँ पे ट्रायल्स लगाते हैं। ट्रायल्स लगाने के बाद हम लोग जो है ये देखते हैं कौन सा ट्रायल या कौन सी क्रॉप अच्छी है, वो हम लोग जो है उसका डाटा कंपाइल करके उसको जो है भेजा जाता है। उस डाटा कंपाइलेशन के बाद जो भी सबसे अच्छी वैरायटी होती है या टेक्नोलॉजी होती है उसको हम लोग FLD प्रोग्राम में ले जाते हैं, वो फार्मर्स फील्ड लेवल पे जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है वहाँ पे जाता है। तो FLD में जैसे हम लोगों ने पिछले इस साल जो है ग्रवर दिए और जो है अच्छी जो हाई यील्डिंग वैरायटी की जो हम लोगों ने ट्रायल लगाया उसकी जो सीड हुए वो उनको दिए, उसी तरह के जो है हम लोग का जो CFLD प्रोग्राम है उसमें इस बार सरसों जो है हम लोग जो है 40 हेक्टेयर में किसानों को, मधुबनी के किसानों को उपलब्ध कराएंगे, और करीबन 30 कुंटल जो है अलसी इस सीजन में, रवि के सीजन में किसानों को 1 एकड़ पर किसान हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो उसके लिए किसानों से जो है डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो किसान लगाने के लिए तैयार होंगे जो करेंगे अच्छा उनको हम लोग वो सीड प्रोवाइड कराएंगे, और उनका उनके फील्ड का जियो टैगिंग होगा, और उनको हम लोग सीड के साथ साथ जो क्रिटिकल इनपुट होता है जो दवाइयाँ होती हैं अगर उनमें कोई बीमारी लगी तो उस वो दवाई भी हम लोग जो है विदाउट एनी कास्ट उनको प्रोवाइड कराई जाती है। सीड और दवाई वो जो है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पूर्णतया शुल्क नहीं है। तो ये दो काम हो गया। इसके बाद हम लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग का काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हमारे पास ट्रेनिंग आती हैं जिसकी भी जो है वो लोग लिस्ट भेजते हैं, और जो किसान स्वतः हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए एक स्पेसिफिक प्रशिक्षण लेने के लिए, जैसे कि बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, पशु पालन हुआ, मड़ुआ की प्रोडक्शन हुआ, श्री अन्न का प्रोडक्शन, उसके बाद बर्मी केचुआ उत्पादन प्रोडक्शन हुआ, सुखेत मॉडल जो जी ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा वो जो है यहाँ पे मॉडल हम लोगों ने जो विकास किया है उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कैसे जो है वेस्ट प्रोडक्ट है जो घर का उसको जो है हम लोग खाद में परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तित करने के बाद उसको 6 से 8 रुपये किलो के हिसाब से हम लोग बेचते हैं, उससे हम लोग सिलेंडर जो सिलेंडर होता है वो देते हैं, वो अभी तक हम लोग 300 से ज़्यादा सिलेंडर जो है किसानों को दे चुके हैं हाउस होल्ड को। उसके बाद जो हम लोग की फर्टिलाइज़र की ट्रेनिंग्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हम लोग को देता है खाद बीज के लाइसेंस की, तो वो ट्रेनिंग भी हम लोग को 15 दिवसीय प्रशिक्षण करते हैं, तो उस प्रशिक्षण में जो है जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जाता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपना जो है खाद की दुकान खोलने में सक्षम हो सकता है। और उसकी तरह से हम लोग जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमको हमारा जोन से अटारी जोन से जो हमें मिलता है या ICR से मिलता है, जैसे इस साल हम गार्डनिंग

0: मिला था। आप इस बार हम लोगों ने मुर्गी उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट उत्पादन इस तरह के प्रोग्राम लिए हैं, वो 300 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो है किसान रेजिडेंशियल पूरा होता है, उसमें यहीं पे रहेगा किसान, पूरी ट्रेनिंग होती है, यहीं पे सारा इंजाम रहता है, तो टोटल 24 घंटे किसान यहीं रहता है, दिन भर यहाँ पे प्रशिक्षण लेता है, प्रैक्टिकल क्लास प्रायोगिक कक्षाएं करता है, इन सब के साथ जब वो सीखता है तो उसके एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद जब वो पास हो जाता है तब जो है उसको सर्टिफिकेट मिलता है, जो उस सर्टिफिकेट से जो है वो नौकरी पाने में सक्षम हो जाता है। उसी तरह का जो है हम लोगों का साइबर जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान चल रहा है, SC ST प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में हम लोग जो एक विशेष वर्ग के जो लोगों को जो है प्रशिक्षण कराते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बकरी का प्रशिक्षण कराया, मधुमक्खी पालन कराया, मधुमक्खी पालन के साथ मशरूम उत्पादन कराया, उनको जो है हम लोग 5 दिन की ट्रेनिंग देने के साथ इसके बाद हम लोग जो है उनको स्वरोजगार के लिए 5 बक्से या कुछ क्रिटिकल इनपुट उनको देते हैं, जो हमें लगता है कि जितना हम लोग दे सकते हैं उतना देते हैं, उसके बाद फिर उनकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि वो 5 बक्से अगर हमने दिए हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर पाएँ, उसको आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको हमने 5 से 10 बक्से दिए, वो जो है आज उनके पास 30 बक्से 35 बक्से 40 बक्से, और अभी एक किसान है जो उसके पास 1.5 क्विंटल हनी का प्रोडक्शन हुआ है, और उसका जो है हम लोग शहद बिकवाने का भी प्रोसेस यूनिवर्सिटी के थ्रू करेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे पूछना था कि आपने कहा जैसे अभी हम देख रहे हैं खरीफ का मौसम चल रहा है, खरीफ में धान की रुपाई हमने देखा है कि पूरे किसान केंद्र में एक से विज्ञान केंद्र में है, धान की कितने प्रजाति की धान यहाँ पर अभी आपने ये किया है?
0: यहाँ पे हम लोगों ने किसानों को दिखाने के लिए 18 वैरायटी का धान का जो है कैफेटेरिया लगा रखा है, जिसमें वो स्वतः जा करके जो प्रोडक्शन है उसका ग्रोथ देख सकते हैं, उसका हम लोग पूरा क्राफ कैफेटेरिया का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, हर स्टेज पे डाटा इकट्ठा हो रहा है, अभी कुछ में टिलरिंग स्टेज हो गई है और कुछ में फ्लावरिंग स्टेज है, तो जैसे जैसे सारा डाटा इकट्ठा होता जाएगा वो सारा कंपाइल करके हम लोग एक रिसर्च पे उसको एक साइंटिफिक जर्नल में शोध पत्रिका में प्रकाशित करेंगे।
1: डॉक्टर साहब एक चीज आपने कहा अभी कि बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन और वर्मी कंपोस्ट, इस सब का प्रशिक्षण आप देंगे, लेकिन ये अभी चालू हुआ है कि इसका प्रोसेस चल रहा है कि आगे?
0: नहीं, चालू है, कई बैच हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं और निरंतर प्रशिक्षण चलता रहता है, तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया में जो किसान आता है वो अपना एनरोलमेंट करा लेता है, जैसे ही 20 किसान की लिस्ट बन जाती है एक सब्जेक्ट की, हम लोग मोबाइल के थ्रू उनको जो है सूचना कर देते हैं कि इस तारीख से आपका इस समय आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और उस ट्रेनिंग में उनको कुछ नहीं, एक आधार कार्ड लेके आना है, बाकी कुछ नहीं लाना है, बाकी सारा इंजाम कृषि विज्ञान केंद्र करता है।
1: डॉक्टर साहब आपने समझाया कि एक आधार कार्ड लेके आवे और इससे जुड़ सकते हैं किसान इस केंद्र से, तो किसान जो जुड़ेंगे इससे, चाहे उस प्रशिक्षण के दरमियान प्रशिक्षण के माध्यम से किसान को क्या सब दिया जाता है?
0: देखिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो मुख्य काम है वो किसानों को टेक्निक प्रशिक्षण देना, टेक्निक उनको बताना। डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे बकरी में अनुदान आता है, गौ पालन में अनुदान आता है, अगर उन्होंने 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग कर ली है, 5 दिन के प्रशिक्षण कर लिया है, तो उस अनुदान को पाने के लिए अपना वो अनुदान वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे पास SC ST प्रोजेक्ट है, अगर उस SC ST प्रोजेक्ट में हमारे कुछ सेगमेंट होते हैं, जैसे बकरी पालन हुआ या मैकेनाइजेशन हुआ या कुछ क्रॉप प्रोडक्शन में कोई वैरायटी देनी है, तो जितना हमारा बजट होगा उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं।
1: और डॉक्टर साहब रबी फसल आगामी आने वाला है, तो रबी फसल में सिर्फ गेहूं का ही प्रजाति आप पैदा करेंगे, विभिन्न किस्म का इसके बाद और है, जैसे अलसी है, सरसों है, राई है और दलहन में है, तो उस सब का भी प्रजाति का विकास होता है कि क्या?
0: प्रोडक्शन केंद्र है यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पे जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सीड प्रोडक्शन के लिए हमको जो बीज दिया जाता है उसको ही हम पैदा करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा सीड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर सीड में चला जाता है, वहाँ से फिर जो है सारी प्रोसेसिंग हो करके फिर ये किसानों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। वहाँ से किसान वहाँ से जा करके एक नियत जो उनकी दर है उस पे वो लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्राफ्ट कैफेटेरिया लगाएंगे, जो CFLD प्रोग्राम है उसमें हम लोग जो 40 हेक्टेयर का सरसों का है उसमें हम लोग राजेंद्र सुफलाम पूरे के किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 40 हेक्टेयर में जितने भी किसान हमारे साथ आ जाएंगे, एक एकड़ से हम किसी को ज्यादा का सीड देते नहीं है, एक

0: एकड़ से कम का दे सकते हैं, ज्यादा का नहीं देते, क्लस्टर में दे देते हैं। तो उस तरह के जितने भी उसका मेन जो उद्देश्य है कि हम जो सीड दे रहे हैं वो पूरे का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जो अच्छी वैरायटी का सीड है वो मल्टीप्लाई हो जाए, फिर जब वो सीड जैसे जैसे पुराना होता जाएगा फिर हम नई प्रजाति का सीड फिर बांटेंगे। उसी तरह अलसी का सीड हम लोग इस बार बांटेंगे, तो उसमें 300 क्विंटल का सीड हम लोग विभिन्न किसानों में बांटेंगे, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो हम वापस नहीं लेते हैं, वो सिर्फ किसान अपना प्रोडक्शन करके वो अपना जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन को हम लोग देखेंगे उसने कितना किया, अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो हम उसको दवाई देंगे, और उसका जो भी उत्पादन होगा वो खुद किसान का होगा, वो किसान अपना बेच करके उसका स्वतः फायदा ले सकता है। ट्रेनिंग में भी कोई शुल्क नहीं है, जो हमारी ट्रेनिंग जैसे खाद बीज लाइसेंस की होती हैं उसमें एक निर्धारित डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जो मिनिस्ट्री द्वारा निर्धारित होता है वो ही हम लोग लेते हैं। बाकी जो कृषि विज्ञान केंद्र में कोई भी प्रशिक्षण होता है उसमें कोई भी शुल्क हम लोग नहीं लेते हैं, मॉडल डेवलप हो जाएगा।
1: इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आपको हम लिए चलते हैं वापस दरभंगा आकाशवाणी के स्टूडियो।
2: हाँ, किसान सुधा लोखन अखंड भेंटवार्ता सुरल छलो, भेंटवार्ताकार छला डॉक्टर एस पी गंगवार, हिनका से गप कर छला अमरेश कुमार झा, एक संग भेंटवार्ता सम्पन्न भेल। आब उगना भाई जे देखू जे हमरो लोकन के जो छे आप किसान सोता लोकन से चल के आ गया ली। नमस्कार उगना भाई।
3: नमस्कार देवू भाई।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000,
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूले।

0: गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधान परिषद की रिक्त हुई 10 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज जिन 10 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हुई है उनमें से 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई 1 सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि डॉ कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस और सुनील कुमार सिंह समेत 9 विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को पूरा हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। पटना में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने सभी परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की भी समीक्षा बैठक की।

0: में सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में सुनिश्चित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की तकनीकी माध्यम से निगरानी करने और बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विभाग की सभी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। समाचार कक्ष से नंदिनी।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान
2: एक महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: इस अवसर पर पटना के कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान किसानों को रासायनिक खाद की जगह हरित खाद के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।
4: हम सब बिहारी माँ भारती के संतान इस अभियान को पर्यावरण के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी के लिए हम खेत बचाने का अभियान में सम्मिलित हों। हर व्यक्ति अपने जमीन के एक चौथाई में कम से कम प्राकृतिक खेती करे, ये हमने आह्वान किया है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से कई चुनौतियों का सामना कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। कल ही राज्य की पंचायतों में भी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। सहयोग शिविर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश में सरकारी बसों से सफर आज से महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की है। सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 53.50 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब पटना में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3,414.50 रूपये में मिलेगा। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और सभी खराब पड़े चापाकलों को 15 जून तक चालू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में पेयजल संकट के समाधान और चापाकलों की मरम्मति को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। श्री अमृत ने भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संवेदनशील मामलों को देखते हुए जिलाधिकारियों को विशेष रूप से चौकस रहने के निर्देश दिए। उन्होंने ज्ञान भारत मिशन के तहत चल रहे सर्वेक्षण की प्रगति की भी समीक्षा की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। जेईई एडवांस 2026 में कयाची के शुभम कुमार ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों, अभिभावक और कड़ी मेहनत को दिया है।
2: टॉप करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक है कि हम जितना कर सकते हैं, जितना भी हमने पढ़ा हो, जितना भी हमारी पोटेंशियल है, उसको एटलीस्ट 80-90% रिफ्लेक्ट करना अपने फाइनल पेपर में। आई थिंक वही काफी होता है, बिकॉज अगर अपने आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब हम जितना कर सकते हैं हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो। तो उसके लिए तो आई थिंक अपना विल पावर पूरा होना चाहिए कि अगर करना है तो करना है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम कुमार को इस सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केंद्रीय मंत्री और गया के सांसद जीतन राम मांझी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभम कुमार को बिहार का गौरव बताते हुए इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद और पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की खबर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान के हुसैनगंज में सबसे अधिक 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
1: जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 21 जून को पटना में बैठक होगी। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर परिषद की औपचारिक मुहर लगना है।
4: राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर 25 जनवरी को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। इस निर्वाचन की औपचारिक पुष्टि के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक आगामी 21 जून को पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। 21 जून को अन्य कई बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
1: नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रवि संगम की पुस्तक रामायण परिपथ बिहार का लोकार्पण किया। इस शोध पुस्तक में प्रभु श्री राम की बिहार यात्रा से जुड़े स्थलों का जिक्र है। इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार, राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार संग्रहालय की ओर से पटना में कल से 7 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को टेराकोटा कला, मुखौटा निर्माण कला तथा कहानी लेखन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह करेंगे। खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार आज कटिहार के विकास भवन में 20 सूत्री और आपदा की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत अनुदान राशि अब स्थानीय जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ही दी जाए। मुजफ्फरपुर के अमर सिनेमा रोड में अपराधियों ने कुख्यात गोविंद शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि गोविंद शर्मा के फ्लैट में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मुजफ्फरपुर के तत्कालीन मेयर समीर कुमार

0: और जमीन कारोबारी आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 83 लीटर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। बिहार के एथलीट पीयूष राज ने 22वीं जूनियर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। चीन के हांगकांग में आयोजित 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य के रूप में पीयूष ने यह उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीयूष राज की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में सोनपुर के रितेश रंजन ने स्वर्ण पदक जीता है। पटना में संपन्न राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शेखपुरा के खिलाड़ियों ने 21 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधान परिषद की रिक्त 10 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। 8 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज और केंद्रीय बजट की घोषणाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से शुरू हुआ राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान। और आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर राज्य के नगर निकायों में कल से सहयोग शिविर की हो रही है शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत
1: और

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
3: नवादा जिले में जनगणना के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस चरण के तहत मकानों की गणना, मकान सूचीकरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियां एकत्र की गई है। इससे पहले ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों ने पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज की। जिले के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

0: दर्ज की जा रही है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिदिन अधिकतम 8,000 पर्यटकों के प्रवेश की सीमा निर्धारित कर दी है। साथ ही प्रवेश शुल्क में भी वृद्धि की गई है। सोमवार से शुक्रवार तक 10 रुपए की जगह अब 100 रुपए तथा शनिवार और रविवार को 20 रुपए की जगह 200 रुपए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। नवादा जिले के रजौली प्रखंड की पश्चिमी पंचायत की मुखिया सुभद्रा सिंह को पंचायत स्तर पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 3 जून को नई दिल्ली में आधारभूत संरचना विकास, जल संरक्षण, पौधारोपण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस उपलब्धि से पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मुखिया सुभद्रा सिंह ने कहा, यह सम्मान पूरे पंचायत परिवार और पंचायतवासियों की उपलब्धि है।
1: हमको बहुत खुशी है कि महिला मुखिया के सरकार ने सम्मान दिया कि हमको दिल्ली बुलाया गया, इससे हम और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं।
0: जिले में किसानों को डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी अभियान के तहत पंजीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी अजीत प्रकाश ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1,86,000 लाभार्थी हैं, जिनमें से अब तक 1,00,000 किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। यह कुल लाभार्थियों का 54.23% है। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी बनाने के मामले में नवादा जिला राज्य में 5वें स्थान पर है। फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर अनुदान तथा फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इधर जिले में खरीफ फसल की बुआई को लेकर किसान धान का बिचड़ा डालने के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 8,500 हेक्टेयर क्षेत्र में बिचड़ा डालने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इधर रोहिणी नक्षत्र के दौरान हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है, जिससे किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य तेज कर दिया है। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने इस पहल को सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना और उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना है। श्री सुमन ने कहा कि सबका सम्मान सबका आसान हो कार्यक्रम के तहत सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पूर्व में सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार तथा शिकायत निवारण अधिनियम के माध्यम से समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिससे आम लोग अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान करा सकेंगे। नवादा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की गई। सांसद विवेक ठाकुर ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
2: के बीच में एक अच्छा संवाद हो और समीक्षा हुई केंद्र और बिहार सरकार की सभी योजनाओं की और नवादा के विकास में अच्छा योगदान आज के बैठक में रहेगा।
0: नवादा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मई माह में हाथियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 45 दिनों के दौरान हाथियों के उत्पात में कुल 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है।
3: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। कल हमने भारतीय सिने जगत की एक प्रख्यात आवाज को खो दिया। आप थी सुमन कल्याणपुर। आप भले ही शरीर से हमारे बीच नहीं हैं,

कार्यक्रम में सुनते हैं उन्हीं के गाए कुछ बेहतरीन नगमे। पहला गाना हमने लिया है फिल्म राजकुमार से। मोहम्मद रफी के साथ है सुमन कल्याणपुर की मखमली आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत।

यूं तो अब पुकारे से भी शायद वो लौट कर ना आए, लेकिन उनके गाए नज्म जहां बजेंगे, उनके गाए नगमे हम जहां सुनेंगे, खिंचे चले जाएंगे, कुछ पल को ठहरेंगे और याद करेंगे सुमन कल्याणपुर को। अगला गाना सुनिए मीनू पुरुषोत्तम के साथ उनके युगल गीत को। ताजमहल फिल्म ने साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है रोशन ने।

सुमन कल्याणपुर की पूरी परिवार में। घर में सभी को कला और संगीत में रुचि था, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित थे। लेकिन सन 1952 में जब ऑल इंडिया रेडियो ने गाने के लिए प्रस्ताव भेजा तो वो ना ना कह सकी और यहीं से शुरुआत हुई उनके व्यावसायिक सफर की। फिल्म मंगू

और दरवाजा के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। इसके बाद 1950, 60 और 70 के दशक में वो लोगों की चहेती आवाज बनी रहीं। अगला गाना सुनिए मोहम्मद रफी के साथ गाए उनके गीत को। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म है सांझ और सवेरा।

कल्याणपुर ने मियां बीबी राजी बात एक रात की, दिल एक मंदिर दिल ही तो है शगुन, जहां आरा सांझ और सवेरा, नूर जहां साथी पाकीजा जैसे कई फिल्मों में अपनी मखमली आवाज दी। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के कई गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए इन तीन दशकों में, साथ ही साथ अन्य भाषाओं के लिए भी अपनी आवाज दी। आइए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है खयाम ने। सुमन कल्याणपुर के साथ हैं मोहम्मद रफी।

आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, सबों के दिल में अपनी जगह बनाकर सुमन कल्याणपुर ने दुनिया को अलविदा कहा। मगर जैसा कि हम जानते हैं, आवाजें कहीं नहीं जाती, कलाकार कहीं दूर नहीं निकलते, वो हमारे बीच हैं हमेशा अपनी मखमली आवाज से। आइए आखिरी दुआ कबूल करते हैं उनकी आवाज में। फिल्म दादा का ये गाना अशद भोपाली के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

खुदा सब पर रहम करे, ईश्वर सब पर करम करे। सुमन कल्याणपुर अपनी मखमली आवाज हमारे बीच छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। आकाशवाणी दरभंगा परिवार उन्हें सादर नमन करता है। इसी के संग फिल्म गीतों का ये सफर हम यहीं समाप्त करते हैं।

श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहारक एहि नव अंकक संग हम राकेश चंद्र नंदन। बंधु लोकनि, कार्यक्रम सिंगरहारक प्रति अपने लोकनिक जे स्नेह अछि ओ सदैत हमरा लोकनिकें प्रेरित करैत रहैत अछि। अपने सभक प्रतिक्रिया ओ सुझाव हमरा सब धरि जखन पहुँचैत अछि तऽ ओ हमर सभक सम्बल बनैत रहल अछि। अपन एहि कार्यक्रमक माध्यमे हमरा लोकनि अपन साहित्य, संस्कृति ओ परम्परा सभक बहुत रास चर्च करैत छी, ओहिपर गम्भीर विमर्श करैत छी। अहाँ ओहि सभक सङ्ग हमसभ मोन पारैत छियनि साहित्य साधक लोकनिकेँ सेहो, जिनकर सभक परिश्रमक बले आइ मैथिली साहित्य आगाँ बढ़ि रहल अछि। हमरा लोकनि जनैत छी जे कार्यक्रम सिंगरहार हमसभ सोमसँ लऽ कऽ शुक्र धरि राति 8:15 पर लऽ कऽ अबैत छी, आ निश्चित रूपसँ एहि बीच जिनक जयंती आकि पुण्यतिथि रहै छनि तिनकर स्मरण हमरा लोकनि करैत छी। एहि क्रममे ध्यान आयल जे बीतल शनि दिन माने 30 मई कऽ 2 गोट साहित्य साधक केर पुण्यतिथि छलनि। हँ बंधु लोकनि, हम गप कऽ रहल छी उपेन्द्र नाथ झा व्यास आ मैथिली पुत्र प्रदीप केर। हिनकर सभक जे अवदान, ओहिसँ मैथिली साहित्य पुष्ट भेल अछि, संवर्धित भेल अछि। जखन चर्च केलहुँ मैथिली पुत्र प्रदीप केर तऽ आउ ने हुनकर एक गोट गीत रचना हमरा लोकनि सुनि लैत छी। स्वर छनि ममता ठाकुर केर।

0: मैथिली पुत्र प्रदीप केरी रचना हमरा लोकनि सुन रहल छलहुँ। कवि कोकिल महाकवि विद्यापतिक रचना जय जय भैरवीकर बाद सबसँ बेसी गाओल जायवला रचना जे अछि ओ इएह अछि। प्रायः प्रत्येक घरमे ई रचना नित्य गाओल जाइत रहल अछि। बंधु लोकनि, पहिने चर्च केलहुँ जे पछिला शनि दिन माने 30 मई कऽ हिनक पुण्यतिथि छलनि। 30 मई 2020 ईस्वीकेँ मैथिली पुत्र प्रदीप केर निधन भेल छलनि। बंधु लोकनि, आउ ने हिनकै पर केन्द्रित एक गोट पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम सुनैत छी। संकलन वाचन छनि डॉक्टर अमलेन्दु शेखर पाठक केर।
1: प्रस्तुत अछि विशेष कार्यक्रम मैथिली पुत्र प्रदीप। मिथिला केर जागरण हेतु हे मैथिली क उत्थान

tipe. मनुखक जीवन प्राप्त करबे दुर्लभ अछि, कठिन अछि। ओहू में विद्यावंत होएब माने विद्या प्राप्त मनुख होएब आरो दुर्लभ। एहू सँ दुर्लभ अछि कवि होएब। आ जो कवि भइयो गेलहुँ तो शक्ति संपन्न होएब माने काव्य शक्ति संपन्नता प्राप्त करब अत्यंत दुर्लभ होइत अछि। ई कथन थिक अग्नि पुराण केर। मिथिला मैथिलीक अभ्युत्थान कामी एहन अक्षर साधक लोकनि केर विशाल श्रृंखला रहलन या छी जे अग्नि पुराण केर एहि कथनक अनुरूप रहला। अक्षर साधना में आजीवन अहर्निश जुटल रहनिहार ई साधक लोकनि मातृ मंदिर में काव्य पुष्प समर्पित करैत रहलाह अछि, अक्षरामृत केर पान करैत रहलाह अछि। साहित्य क्षेत्र में एहन कवि साहित्यकार केर यशोगान होइत रहलनि अछि, मुदा ई सौभाग्य गनले गुथल कवि साहित्यकार के प्राप्त भेलनि जे ओ अपन रचना केर माध्यमे सर्वसाधारण केर बीच लोकप्रिय भेल होथि। महाकवि विद्यापति तो अपवादे थिका जे सैकड़ों बरख सँ जनमानस पर राज कऽ रहल छथि, लोक कंठ में विराजमान छथि, लोकक ठोर पर आइयो हुनक गीत नर्तन करैत अछि। काशीकांत मिश्र मधुप के सेहो ई सौभाग्य प्राप्त भेलनि आ हुनका बाद मैथिली पुत्र प्रदीप एकमात्र कवि साहित्यकार संप्रति भेलाह जे जनमानस पर एक छत्र राज कऽ रहल छथि। मिथिले नहि विश्वक कोन एहन क्षेत्र होयत जतो मैथिल रहित होथि आ हुनका ठोर पर प्रदीप अपन भक्ति गीत केर संग विराजमान नहि होथि।

जनकंठ में बसल ई काव्य पुष्प प्रदीप केर युवावस्थाक रचना छैली। 1960 ईस्वी में एकर ओ रचना कैलनि, जाहि में भक्ति भाव केर तरलता सघनता केर संग जन भावना के सोहरेबाक अद्भुत क्षमता छैक। यह कारण अछि जे मैथिलक कंठ में बसल हुनका संग ई गीत सात समुद्र पारो केर यात्रा करैत रहल अछि आ कवि गीतकार प्रदीप के जनप्रियता केर संग अमरताक अनुपम उपहार सेहो दैत रहल अछि। से तेना जे हिनकर मूल नाम प्रभु नारायण झा पूर्णतः इरोत भ गेलनि आ उपनाम मैथिली पुत्र प्रदीप सह मूल नाम भ गेलनि। लिखलनि सैकड़ों गीत कविता, ओहिमे सँ बहुतो प्रशस्त भेलनि आ लोकक ठोर पर अपन स्थानों बनौलक। जाहि गीत सब में भक्ति भावना प्रधान काव्य रचना केर सर्व प्रमुखता रहल। एकर अर्थ ई नहि जे कवि प्रदीप आन भाव भूमि केर रचना नहि कयलनि, कयलनि आ ओ रचना चर्चित प्रशंसित सेहो भेलनि। जहिया गौलनि चलू चलू बहिना हकार पुरैले, टुन्नी दाई केर बर एलै टेमी दगैले, लहटा चूरा छैनौ कूरा, पाकल केरा सात चंगेरा, छाली वाला दही तो करेज कटैय, चलू चलू बहिना हकार पुरैले, टुन्नी दाईक बर एलै टेमी दगैले, तो इहो गीत खूब लोकप्रिय भेल छल आ जनप्रियता हिनक काव्य सर्जन केर प्रति अगाध स्नेह के आरो प्रगाढ़ करैत गेलनि। लेखन तो

छात्रावस्थेसँ आरम्भ कऽ देने छलाह कमी अवस्थासँ, आ आठम नवम कक्षामे अबैत अबैत रचनामे परिपक्वता तेना भऽ कऽ आबऽ लगलनि जे 1955 जखन स्कूलीय जीवनमे छलाह हिनक पहिल काव्य संग्रह गुलाबक बहार प्रकाशित भऽ गेलनि। एकर बाद तऽ पोथीक अमार लगा देलनि, प्रत्येक 2-4 बरख पर पोथी आबऽ लगलनि, कतेको बरख तँ 1 बरखमे 2-2 टा पोथी। एकर संख्या बढ़ैत बढ़ैत लगभग 3 दर्जन पर पहुँच गेल। छात्र छलाह तखने अमोल बोल, टुन्नीदायिक सुहाग आ सुहाग नाटक प्रकाशित भऽ गेलनि। एकर बाद गीत प्रदीप, उगल नवचान, कुहुकल कोयलिया, क्रांति गीत, 1 घाट 3 बाट आदि आयल। कवि प्रदीप केर मातृक छलनि मधुबनी जिला केर बांकी प्रसाद गाम, सटले रहुआ संग्राम गामक पारसमणि महादेव स्थान, जतौ संत शिरोमणि भक्त कवि लक्ष्मीनाथ गोसाई सिद्धि प्राप्त कयने छलाह। प्रदीप जीक माम लोकनि गोसाई जीक प्रति बेस समर्पण आ स्नेह रखैत छलथिन। माम लोकनि हुनक गीतो गाबैथि। मायक संग मातृक में बेसी काल रहनिहार मैथिली पुत्र प्रदीप केर मानस पर एकर बेस प्रभाव भेल, आ यह कारण छल जे जगदम्ब अही अवलम्ब हमर सन काव्य रचना कऽ सकला। ओना बाद में बहुत दिन धरि जनमानस पर राज कैनिहार विविध भाव केर गीत सेहो लिखैत रहलाह।

मुदा ई बेसी दिन नहीं चलल। नेनपन में भक्ति भाव केर से अनुलेप मानस पर पड़लनि जाहि पर बैसल जनजीवन केर विविध रंग धोखर लगलनि आ भक्ति भाव तेना भक प्रखर मुखर भेलनि जे यह प्रधान भ गेलनि। आ ई सभ गीत काव्य संग्रह अष्टदल जगदम्ब अहि अवलम्ब स्वयं प्रभा श्री राम हृदय साधना प्रार्थना भक्ति गीत प्रदीप आरती संग्रह श्री राघव लीला महाकथा श्री नटवर लीला महाकाव्य श्री त्रिशूलिनी आरती संग्रह आदि में अपन विभिन्न छवि छटा कर संग पाठक श्रोता आ गायकक मोन के तरंगित करीत रहल त कखनो कल कल छल छल शीतल नीर सँ तवधल हृदय के जुड़बैतो रहल। मैथिली में श्रीमद् भगवद गीता आ चैतन्य चरितामृत सनकर ग्रंथ एकर वानगी अछि। काव्य में दुर्गा चरित नाटक अन्हार सँ इजोत में आओ आ गद्य रचना उपन्यास नामपट सेहो प्रदीप केर साहित्य प्रतिभाक अनुपम उदाहरण अछि। कवि प्रदीप केर जन्म 1936 ईस्वी में फागुन कृष्ण पंचमी के दरभंगा जिला केर कैथबार गाम में भेल छलनि। पिता छलथिन स्वरूप झा आ माय बुचनी देवी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कयलनि गामेक स्कूल में। तकर बाद उच्च विद्यालय नारायणपुर में शिक्षा प्राप्त कयलनि। महाविद्यालयी शिक्षा दरभंगा केर मारवाड़ी महाविद्यालय सँ प्राप्त भेलनि। गामे में एक गोट स्कूलक स्थापना कयलनि आ बाद में मध्य विद्यालय में शिक्षक भ गेलाह। एहि क्रम में अस्थुआ दुलारपुर तुमौल पुअर होम दरभंगा आदर्श मध्य विद्यालय लहटा गौरी शंकर महाविद्यालय नाका नंबर 5 दरभंगा विविध विद्यालय में अध्यापन कार्य कयलनि। अध्यापन कार्य आरंभ कयने छलाह कुरसों नदियामी गाम सँ। 1999 में सेवानिवृत्त भ गेलाह। किछु दिन कलकत्ता में सेहो रहलाह। मैथिलीक प्रति हिनक प्रगाढ़ स्नेह जे नेनपन सँ छलनि ओ निरंतर आरो गढ़ाइत रहलनि। से तेना भक जे मैथिलीक उत्थान आंदोलन केर नेतृत्व सेहो कयलनि। कवि प्रदीप ओना तो विविध देवी देवता केर प्रति समर्पित भाव अपना रचना केर माध्यमे रखैत

0: आई प्रदीप हमरा लोकनिक बीच सशरीर नहीं छाया थी। 30 मई 2020 के हिनक महाप्रयाण भेलैन, मुदा अपना साहित्य में, अपना गीत में, अपन रचना के चिंतन में इस सदिखन हमरा लोकनिक बीच विराजमान रहता है। एकरा संगे संपन्न होइत अछि विशेष कार्यक्रम मैथिली पुत्र प्रदीप।
1: बंधु लोकनि, एखन हमरा लोकनि ई पूर्व प्रसारित विशेष कार्यक्रम सुन रहल छलहुँ। आज एखन मैथिली पुत्र प्रदीपक एते रास चर्चा हमरा लोकनि केलहुँ आ संगहि हुनक जे गीत पहिरलाल साड़ी तेकर एकटा अंश सुनलहुँ। आउ ने ओहि गीतके पूरा हमरा लोकनि सुनै छी, फेर आगा गप करब।

बंधु लोकनि, एखन हमरा लोकनि मैथिली पुत्र प्रदीप केर ई रचना सुनि रहल छलहुँ। पहिने चर्चा केलहुँ जे 30 मई कऽ उपेन्द्रनाथ झा व्यास केर सेहो पुण्यतिथि छलनि। मधुबनी जिलाक हरिपुर बक्सी टोल निवासी उपेन्द्रनाथ झा व्यासक जन्म 16 जुलाई 1917 कऽ भेल छलनि। विभिन्न विधा सबमे हिनक जे पोथी सब प्रकाशित छनि ओहिमे उपन्यासमे कुमार आ दूपत्र, कथा संग्रहमे विडम्बना आ भजना भजले, खंडकाव्यमे सन्यासी, शारदा विजय आ पतन, मुक्तक काव्य संग्रह छनि प्रतीक, यात्रा साहित्यमे विदेश भ्रमण, बाल साहित्यमे अक्षर परिचय, एकर अतिरिक्त अनुदित कृति छनि श्रीमद् भगवद गीता, स्त्रोत्रांजलि, रुबाइयात ए उमर खय्याम, विद्रोही ओ अन्य कविता। उपन्यासमे श्रीकांत, बाभनक बेटी आ विप्रदास, सम्पूर्ण महाभारतके ई मैथिली पद्यमे लिखब आरम्भ केने रहथि जकर 2 खंड मात्र लिख सकलाह। आ 30 मई कऽ हिनक देहांत भऽ गेलनि 2002 ईस्वीमे। आ आब हमरा लोकनि चली शब्द विमर्श दिस, ओहिसँ पहिने अपने लोकनिसँ एक गोट आग्रह। आग्रह ई जे कार्यक्रम सिंगरहार अपने लोकनिकेँ केहन लगैत अछि, अपने लोकनिक जे प्रतिक्रिया, अपने लोकनिक जे सुझाव, ओकर प्रतीक्षा रहैत अछि हमरा सबकेँ। अपने लोकनि जनैत छी जे अपने सब द्वारा पठाओल गेल सुझाव प्रतिक्रिया हमरा लोकनिक सम्बल बनैत रहल अछि। अपने लोकनि जँ पत्र द्वारा अपन प्रतिक्रिया, अपन सुझाव पठबऽ चाहैत छी तऽ एहि लेल हमर सभक पता अछि कार्यक्रम सिंगरहार द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा, पिनकोड अछि 8460004। बंधु लोकनि, आकाशवाणी दरभंगा @gmail.com पर सेहो ईमेल द्वारा अपने लोकनि अपन प्रतिक्रिया आकि सुझाव पठा सकैत छी। आ आब शब्द विमर्श। एकटा शब्द अछि तत्मत। दुविधा, अनिर्णयावस्था वा तारतम्य लेल हमरा लोकनि तत्मत शब्द केर प्रयोग करैत छी। भरसह, भरसह भेल भारी वस्तु उठेबामे आंशिक भार अपना पर लऽ सहायता केनाइ। आ भरसाहा कहैत छियनि भार सहबामे जे समर्थ, हुनका भरसाहा कहल जाइत छनि। एकटा शब्द अछि सक्कत, मने कठोर। कठोर लेल हमरा लोकनि सक्कत शब्द केर प्रयोग करैत छी। आ सकदम, सकदम भेल ठकुआयल, भयसँ त्रस्त। तहिना एकटा शब्द अछि सपठब, मने सङ्ग चलब, सङ्ग देब। खेती आदि काजमे जे सङ्ग देब, ओहि लेल हमरा लोकनि सपठब शब्द केर प्रयोग करैत छी। ओना एहिठाम तऽ हमरा सबकेँ घड़ीक सङ्ग चलऽ पड़ैत अछि, कारण

समयसँ सभ केओ बान्हल रहै छी आ समयक सङ्ग चलै छी। निश्चित रूपसँ हमरा लोकनि प्रयास करै छी जे समयक सङ्ग चलैत रही। तऽ अपने सभसँ विदा ली, ओहिसँ पहिने निश्चित रूपसँ पुनः आग्रह जे अपन प्रतिक्रिया हमरा सभ धरि पठबैत रही। अगिला भेंट धरिक लेल हमरा यानी राकेश चंद्र नंदन के चलबाक आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।

सिंगरहार, अब इस कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदर

का अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री

0: 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
2: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-2371-7117 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
3: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lhyng hold talks in New Delhi. Emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ल्हैंग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी के माहदे पर अमल आवरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फ़रोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए म्यांमार के सदर मिन ऑंग ल्हैंग ने आज बाहमी उमूर के तमाम मामलों पर तफसीली मुज़ाकरात किए, जिनमें तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलों, सरहदों का बंदोबस्त, तरक्की में तआवुन, सकाफती तबादले और इलाकाई सूरत हाल शामिल हैं। दोनों लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने करीबी तआवुन को फ़रोग देने में दिलचस्पी का इजहार किया, बिलखसूस तजारत और सरमायाकारी, तरक्याती तआवुन, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में तआवुन को बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की गई। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने म्यांमार की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहत भारत की हिमायत की तौसीक की और दोनों मुल्कों ने ऐसी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जो दोनों के सिक्योरिटी मफादात के लिए नुकसानदह हों। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार के सदर ने इस यकीन दहानी को दोहराया कि म्यांमार की सरजमीन को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जनाब मिसरी ने कहा कि म्यांमार एक अहम मुल्क है और एक ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत की सरहद 1643 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। ये भारत की पड़ोसी को अव्वलियत देने एक्ट ईस्ट, नीज महासागर और भारत बहरुल काहल पॉलिसियों में मरकजी हैसियत रखता है। भारत और म्यांमार के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $2 अरब पर मुश्तमिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत की पड़ोस पहले एक्ट ईस्ट और महासागर जैसी पॉलिसियों में म्यांमार अहम शराकतदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के सदर मिन ऑंग ल्हैंग का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि भारत और म्यांमार के सकाफती, तहजीबी और रूहानी ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। भारत से म्यांमार के गहरे रिश्ते की निशानदही करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत और म्यांमार के दरमियान मुश्तरक सरहद होने की वजह से म्यांमार जुनूब मशरक़ी एशिया में रसाई का जरिया भी है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी माहिदा CEPA जिस पर 6 महीने कबल दस्तखत किए गए थे आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि CEPA सिर्फ कोई तिजारती माहिदा नहीं है बल्कि ये तहजीबी रिवायतों पर एतमाद का एक बयानिया है। जनाब गोयल ने कहा कि ये जामे माहिदा ओमान के साथ भारत के ताल्लुकात को नई रफ्तार अता करेगा। मरकजी वजीर ने मुतल्ला किया कि पहले ही दिन भारत को ओमान के टैरिफ खतूत के 98% तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल हो जाएगी और ये ओमान के लिए भारत की 99% बरामदात का अहाता करते हैं। वजीर मौसूफ ने इत्तला दी कि मुख्तलिफ साजो सामान पर मुश्तमिल कई खेप मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आज पानी के जहाज से रवाना हो रही हैं जो कि इस माहदे पर अमल आवरी की अलामत है। CEPA के तहत कई अहम

0: सुलझाबियों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि यूएस एफडीए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी या यूके एमएचआरए से मंजूर शुदा भारत की जेनेरिक दवाओं को अब 90 दिन के अंदर ओमान में मार्केट ऑथोराइजेशन मिल जाएगी। जनाब गोयल ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ओमान माहिदा भारत के 9 आज़ाद तिजारती माहिदों का हिस्सा है जो 38 ममालिक का अहाता करता है और जिसे पिछले 3.5 साल में कतई शक्ल दी गई है। हुकूमत ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के खातिर खा स्टॉक की दस्तियाबी की बात को फिर दोहराया है। मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी खुर्दा आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल की हसब मामूल फराहमी बरकरार रखने के लिए सभी तेल मार्केटिंग कंपनियां सरगर्म तरीके से पेट्रोल और डीजल के जखीरे को पूरा कर रही हैं। एलपीजी सप्लाई पर मोहतरमा शर्मा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 1,21,00,000 से ज़्यादा बुकिंग हुई हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: मुल्क भर में होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारी इदारों के इस्तेमाल में आने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। अलबत्ता घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 42 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये सिलेंडर 3,113.50 रुपये का हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में पिछले 12 साल के दौरान भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र अक्सर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे में मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फ़ीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज किसानों की बहबूद के तहत हुकूमत के इकदाम पर रोशनी डाली जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान किसानों की फलाह व बहबूद और उनकी आमदनी में इजाफे के लिए कई इकदाम किए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला पीएम किसान स्कीम का आगाज़ है, जो कि मुल्क में फलाह व बहबूद का सबसे बड़ा कदम है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में फराहम किए जाते हैं। इसके तहत तकरीबन 9.5 करोड़ किसान कुटुंबों को 4,28,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम मुंतकिल की गई है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना और मवेशी परवरी के कौमी मिशन जैसी स्कीमों का आगाज़ किया गया। पीएम कृषि सिंचाई योजना और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जैसी कोशिशों ने सिंचाई को मुस्तहकम किया और मिट्टी की पैदावारियत में इजाफा किया। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदा ने स्कीम की तारीफ़ करते हुए इसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया, क्योंकि ये उनके गुजर बसर में मदद कर रही है।
4: मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपये की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
2: फसलों की कम से कम इमदादी कीमत MSP किसानों के लिए लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि हुकूमत ने पैदावारी लागत का 1.5 गुना MSP मुकर्रर की है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए 154 मिलियन टन से ज़्यादा चावल की रिकॉर्ड पैदावार के साथ चावल उगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जदाश्त की समाअत से इनकार कर दिया जिसमें नीट यूजी 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान को मौजूदा कागज़ कलम फॉर्मेट की बजाय कंप्यूटर पर मबनी जांच के तर्ज पर मुनाकिद करने की दरख्वास्त की गई थी। जस्टिस PC नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की एक बेंच ने कहा कि दोबारा होने वाले इम्तिहान को कंप्यूटर पर मबनी जाँच CBT मोड में मुनाकिद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी

0: के सदर मिन ऑंग लैंग ने नई दिल्ली में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम इकतसादी शराकत दारी के माहदे पर अमलावरी शुरू हो गई है। ओमान की टेरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुस्तकबिल पर मबनी टेक्नोलॉजी तहकीक में दिफाई सनती शराकत दारी को फरोग देंगे। मलेशिया उन ममालिक में शामिल हो गया है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। और राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहली आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज चमक और तेज आंधी के सिलसिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, गर्मी का मौसम चल रहा है। ये मौसम जहां अपने साथ रसीले आम, तरबूज, लीची, खरबूज जैसे स्वादिष्ट फल लाता है, वहीं लू का प्रकोप भी। देश के कई हिस्से इस समय लू यानी हीट वेव से जूझ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बारिश होने से गर्मी से राहत भी मिलती है। भीषण गर्मी के मौसम में लू कई बार जानलेवा भी साबित होता है। ऐसे में जरूरी है कि हम लू से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। हमारा आज का कार्यक्रम इसी पर आधारित है। लू से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और लू लगने की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप इस पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाशंकर वाजपेयी रायबरेली से। जी रमाशंकर जी।
1: जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था कि लू से बड़ी पुरानी कहीं सुनते आए हैं, लू में प्याज बहुत ही बचाव करता है और अन्य कोई भी साधन जिस तरह से लू से बचा जा सके वो कृपया बताएं।
2: रूपाली जी। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि लू के समय में प्याज से बहुत बहुत ही बचाव मिलता है, तो इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी, बट फिर भी जो हम पुराने समय से ये जो धारणाएं चलती आ रही हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। तो आप प्याज जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक यानी कि पीने की जो तरल पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लू के समय में बचने के लिए है एक एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक यानी कि तरल पदार्थ का सही मात्रा में आपको आपको लेना है, और इसके अलावा आपको गर्म जगह से बचना है। मतलब अगर घर से बाहर जितना हो सके उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, घर जितना हो सके घर के अंदर रहना है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाने पीने में आपको जो भी आपको अभी मौसमी फल जो मैडम ने अभी बताए, तरबूज, लीची, आम, इनका सेवन करना है और तरल पदार्थ का आपको पर्याप्त मात्रा में सेवन करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है।
0: डॉक्टर रूपाली, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लिक्विड लेना चाहिए, तो किस तरह के तरल पदार्थों को लेना ठीक रहेगा ताकि जो शुगर का जो लेवल है वो बॉडी में वो कंट्रोल्ड रहे?
2: आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप आम रस, आम पन्ना, आम पन्ना जो कि बहुत गर्मी के समय में बहुत ही एक कॉमन एक कूल ड्रिंक माना जाता है, बेल का रस, इस तरह के जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं आप उनको प्रिपेयर कीजिए, आप उनको लीजिए और आप नॉर्मल अपना पानी लीजिए। और अगर आपको डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स जैसी अगर फीलिंग आती है तब आप ओआरएस

0: जो मेडिकल ORS जो अवेलेबल है उसका सेवन भी कर सकते हैं।
1: श्रीकांत झागड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी क्या पूछना चाहते हैं आप?
2: हेलो
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं श्रीकांत झागड़े बोल रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से। मेरा दो सवाल है। ये बहुत अधिक गर्मी में जैसे थकान है, चिड़चिड़ापन है, बेचैनी लगती है, तो उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और दूसरा ये था कि ऐसे में मतलब ब्लड प्रेशर वालों ने क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खासकर ना हाई बीपी वालों ने?
0: हाँ जी, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि जो हाई बीपी के जो मरीज होते हैं वो बहुत समय इस तरह की कुछ दवाइयों पे होते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एंड वो जो लोग होते हैं दे आर प्री डिस्पोज टू हैव हीट स्ट्रोक, मतलब उनको हीट स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और आपको बीमारी से अगर आप ग्रस्त हैं, कोई भी क्रॉनिक आपको डिजीज़ है, COPD, एस्थमा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को धूप से, गर्मी से बचा कर रखें, क्योंकि इसमें आपका जो कार्डियो रेगुलेटरी जो मैकेनिज़म्स हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह के मरीज को खास ध्यान रखना है।
1: डॉक्टर पटनायक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हीट वेव यानी लू क्या है?
3: देखिए, ये हीट वेव जो लू बोलते हैं बहुत भाषा में, तो हमारा जो समर टाइम में जो ज़्यादातर कि अप्रैल में, जून, थोड़ा सा जुलाई पार्ट में भी, तो क्या टेम्परेचर जो तापमान है, ये तापमान है उसका साधारणतः नॉर्मल से कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो गर्मी का महीना है, गर्मी का महीना है तो टेम्परेचर साधारणतः ज़्यादा रहता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी 30 साल का एवरेज जो उसको नॉर्मल बोलते हैं, उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटिन्यूसली कुछ दिन के लिए प्रिवेल करता है, तो वो हम उसको एक हीट वेव तरह डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो एंड उसका जो नॉर्मल से 4.5 से 6.4 तक अगर हो गया तो हीट वेव हम बोलेंगे। अगर उस 6.4 से भी ज़्यादा डिपार्चर जो कि नॉर्मल से ज़्यादा इतना हो गया तो सीवियर हीट वेव बोलेंगे। तो ये एक डेफिनेशन के हिसाब में हम जैसा कि नॉर्मल से अगर इतना है तो करते हैं। और एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर 45 डिग्री हो गया तो हम उसको हीट वेव कर देंगे।
1: लेकिन क्या ये अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग होता है? जैसे कोस्टल एरियाज के लिए अलग होगा, प्लेन्स के लिए अलग होगा।
3: हाँ, कोस्टल एरिया के लिए थोड़ा सा है कि कोस्टल एरिया में 37 डिग्री होने के बाद भी हमने हीट वेव करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में जो ह्यूमिडिटी का थोड़ा प्रभाव रहता है ना, तो इससे कारण ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। तो अगर तापमान बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन जो ह्यूमिडिटी जो होता है, जो एयर का ह्यूमिडिटी होता है कोस्टल एरिया में उसको मिलता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा कोस्टल जो 37 डिग्री से ज़्यादा होना वो कोस्टल एरिया है।
1: और प्लेन्स के लिए?
3: प्लेन्स के लिए 40 डिग्री से ज़्यादा होना।
1: एक और श्रोता है हमारे साथ, राजू लवानिया, आगरा उत्तर प्रदेश से। राजू जी
4: जी मेरा नमस्कार डॉक्टर साहब को, दीदी आपको भी
1: नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे घरेलू नुस्खों में तो खैर जैसे आम का पना है, बेल का शरबत है या नींबू पानी है, ये तो खैर पुराने जो नुस्खे हैं वो तो है ही, लेकिन मेडिकल साइंस में हीट वेव का परमानेंट ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट क्या है?
0: कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है कि आप जो गर्मी वाली जगह है उससे दूर रहें। तो अगर कोई किसी को भी इस तरह के लक्षण अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को फटाफट से गर्मी वाली जगह से दूर मूव करना है। उसके बाद हमें उनको ठंडे पानी की पट्टी करनी है और साथ में अगर पॉसिबल है तो एक पंखा करना है, आप थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके और पंखा करें। पंखा करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे इवेपोरेशन से जब हीट उड़ती है तो उससे और ज़्यादा आपका हीट लॉस होता है, ज़्यादा देर की अगर आप खाली उस पर ठंडा कुछ रख देंगे। उसके अलावा आपको पंखा भी ऊपर से करना है, तो पंखे के आगे थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के थोड़ी ठंडी पट्टी करना। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है जो कहीं भी किया जा सकता है।
1: लू लगने पर क्या लक्षण दिखते हैं?
0: देखिए लू के लक्षण बहुत तरह के हो सकते हैं, माइल्ड लक्षण हो सकते हैं जिसमें कि आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं जिसको कि नॉर्मल भाषा में हम प्रिकली हीट बोलते हैं या घमोरियाँ बोलते हैं। तो उसमें आपको आपको थोड़ा पाउडर डाल लेना है, कुछ एंटी एलर्जी के एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे

0: कि सिट्रजीन वगैरह है उसका आप यूज़ कर सकते हो, और पानी आपको अच्छे से पीना, और ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, और हल्के रंग के, हल्के कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो आपको पहनने हैं। तो ये हुआ हीट रैश के लिए। हीट क्रैम्प्स में आपको हो सकता है कि थोड़ा अकड़न जकड़न महसूस हो, आपको हाथ पैर सीधा करने में दिक्कत लगे, मांसपेशियों में आपको जकड़न महसूस हो, तो इस स्थिति में आपको फ्लूइड्स का ध्यान रखना। ये डिसइलेक्ट्रोलीमिया जो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस जो हो जाता है हीट के वजह से, वो उससे होता है। तो उस समय आपको मेडिकल जो ORS है, आप ना केवल जो बाकी तरल पदार्थ जो कि हम रूटीनली लेते हैं, उसके अलावा आप मेडिकली जो ORS मिलते हैं, मेडिकल ORS, आप उनका सेवन करें अगर आपको हीट क्रैम्प जैसा सिस्टम हो।
1: गंभीर लक्षण क्या होते हैं?
0: गंभीर लक्षण हो सकते हैं आपको हीट एग्जॉशन या फिर हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक सबसे सीवियर वैरायटी है, जिसमें कि आपको बेहोशी, आपका एक तो जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो 40 डिग्री कोर बॉडी टेम्परेचर, जो कि आपका रेक्टल टेम्परेचर आइडियली होना चाहिए, ना कि सरफेस सतह वाला नहीं, कोर बॉडी जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर आइडियल माना जाता है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर आपका है तो वो, प्लस आपको कुछ भी बेहोशी का लक्षण, ऑल्टर्ड सेंसोरियम जिसको बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इस तरह का कोई भी लक्षण है, तो ये आप सबसे सीवियर फॉर्म जो होता है हीट स्ट्रोक का, उसमें गिना
1: तो
0: जाता है।
1: अगर ऐसी स्थिति हो तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले तुरंत क्या सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है?
0: फटाफट आप उनको ठंडी जगह, तो हल्के कपड़े, ढीले कपड़े और गीला करके, कपड़ा गीला करके पंखा उसके ऊपर करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इवन अस्पताल में भी जो सबसे पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा यही दिया जाएगा। हीट स्ट्रोक दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक्सर्शनल। तो क्लासिकल में आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है। जो एक्सर्शनल होता है उसमें बहुत बार हम इमर्शन भी बोलते हैं कि आप उसको ठंडे पानी में इमर्स कर दो, कि कपड़े सब हटा के किसी ठंडे पानी के टब में लिटाना, वो एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में होता है। बट जो आजकल जो मिलता है उसमें क्लासिकल हीट स्ट्रोक है, और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर कोई बाहर हैवी वर्क कोई कर रहा है तो उसमें क्लासिकल और एक्सर्शनल दोनों तरह का हीट स्ट्रोक हो सकता है।
1: चौधरी महेंद्र सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जी महेंद्र जी।
2: जी कनक जी नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
0: धन्यवाद
2: जी। मैं चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति दिन में कितना पानी पिए और कितना पानी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति पानी की पूर्ति हेतु बोतल लगवाता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर कहें या कुछ भी कहें उसे, तो आवश्यक है या नहीं?
0: ये देखिए, एक किसी भी अडल्ट व्यक्ति की जो बॉडी होती है उसका 70-80% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जो अडल्ट व्यक्ति है कम से कम उसको 8-10 ग्लास पानी डेली पीना है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, लगभग एटलीस्ट कम से कम आपको 8 ग्लास पानी पीना है, क्योंकि आपका 70-80% जो आपका बॉडी का वेट है वो उसमें वाटर है, तो उसको जो रिप्लेनिश करने के लिए आपको कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। बट अगर हम आज के समय की बात करें, जब हम लू लगने की बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पीना ही है। इसके अलावा डिपेंडिंग कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, अगर आपको लगता है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत वाटर लॉस है, तो आप इसके अतिरिक्त भी पानी पी सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में 3-3.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वरना उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं।
1: और ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पानी पीने के नाम पर या लस्सी पीने के नाम पर बहुत ज्यादा मीठी चीजें
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मीठा तो अतिरिक्त बिल्कुल ना लें, और पैक्ड इसलिए जूसेस जो है वो अवॉइड करें। नेचुरल अगर आप लें वो फिर भी
1: जो हमारे पुराने लस्सी, छाछ, बेल का शरबत, ऐसी चीजें ज्यादा अच्छी होती। नींबू पानी
0: बिल्कुल।
1: डॉक्टर पटनायक, कई बार वार्म नाइट और वेरी वार्म नाइट की भी चेतावनी जारी की जाती है, तो ये कब किया जाता है और इसका क्या, इसके मतलब क्या होता है?
3: देखिए ज़्यादातर क्या होता है, तो दिन का तापमान तो हमेशा समर में हाई रहता ही है, तो उससे जो हम हीट वेव का डेफिनेशन करते हैं, दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिन के साथ मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, हीट वेव हुआ, उसके बाद नाइट जब आता है तो नाइट में भी क्या होता है, जो नाइट का टेम्परेचर तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग

0: जो बाहर में रहते हैं, ये दिन का भी गर्मी झेल लिया, उसके बाद जब नाइट का भी टेम्परेचर, अगर उनके पास एसी नहीं है, जो यूज नहीं करते, तो उसको हम वार्म नाइट कहते हैं। तो उसमें तो मिनिमम टेम्परेचर जो है आपका नाइट का टेम्परेचर, वो भी अगर 4.5 to 6.4 हो गया, तो उसमें वार्म नाइट कर दे। तो वार्म नाइट जो है नाइट टेम्परेचर में, समर के टाइम में, लेकिन नाइट टेम्परेचर में अगर अधिक हो गया तो उसको वार्म नाइट कहे।
1: और वो भी खतरनाक
0: हो, वो भी खतरनाक होता है।
1: धर्मवीर लाइन पर है हमारे साथ दिल्ली से। जी धर्मवीर जी।
2: हेलो नमस्कार जी, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गांधीनगर मार्केट में रहते हैं और दुकान, हर प्रत्येक दुकान में एसी चलते हैं, एक एक दो दो, तो एक तो उनकी भी हीट निकलती है। मार्केट में निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी बच्ची से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग सावधानी क्या बरते हैं, जाना भी जरूरी होता है। और दूसरा मेरा ये पूछना है कि डायबिटीज मरीजों को सिकंजी और ओआर का घोल लेना ठीक है कि नहीं। और तीसरा एक और पुरानी एक बात याद आती है, बुजुर्ग कहते थे, जैसे कहते थे कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जो गर्मी गर्मी को मारती है, बैलेंस बराबर करती है। अगर जितनी ज्यादा गर्मी हो आप चाय पी ले, कॉफी पी ले, तो बैलेंस बना रहता है। कोल्ड ड्रिंक लेना ठीक रहता है कि नहीं, कृपा करके।
3: हाँ जी, देखिए कोल्ड ड्रिंक लेना तो नहीं ठीक है ना, बट जो आप नेचुरल जो चीजें हैं जो आपको वैसे ठंडक प्रदान करती हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप बेल रस पी सकते हैं या फिर आप नींबू पानी ले सकते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, तो जो तरल चीज़ें हैं उनका सेवन आपको बढ़ाना है। इसका मतलब कोल्ड, ठंडा लेने से आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक लेने से आपकी शरीर को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है, वो अवॉइड करनी है। और जो आपने कहा शुगरी ड्रिंक, क्या डायबिटीज़ के मरीज़ को हम दे सकते हैं? नहीं, वो अवॉइड करनी है। नींबू पानी अगर आप देंगे उनको, तो आप बिना चीनी के दीजिए, नमक वाला नींबू पानी दे सकते हैं, सॉल्टेड नींबू पानी दे सकते हैं, या आप उनको लस्सी दीजिए, छाछ वाली जो होती है, जो कि नमकीन लस्सी होती है, तो उनको उस कोकोनट वाटर आप दे सकते हैं।
1: जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम लू से सुरक्षा और सावधानियों पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित उपाध्याय बिहार से। अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी
4: हाँ हाँ जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ अमित उपाध्याय। मैं ये मेरा ये सवाल था कि जैसे कि पिछले हम लोग देखें तुलना करें और पिछले साल के और हर एक साल से तुलना करें, तो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जैसे कि पहले टेम्परेचर हाई, अभी जैसे मई में ही टेम्परेचर इतना 45 प्लस जा रहा है, 48 तक आ जा रहा है। तो हम ये मेरा ये प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर, जो जिसका शरीर में कुछ नहीं है जांच करने पर भी, वो भी चलते चलते कभी कभी गिर जाते हैं अचानक से, उनका भी बेहोशी वह कुछ वैसे हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खूब पानी पीना, जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब हम लोग करते हैं, इसमें और क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें? जी
3: देखिए, जब भी आप बाहर निकलें, कुछ एक आप छतरी लें या कपड़ा लें, गमछा जैसा कि कहा जाता है, गीला करके लें तो और भी अच्छा है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज़ हो सकती है, जिसको पहले से कोई बीमारी है वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, क्योंकि उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। एंड स्पेशली जैसे कि कोई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं, खास तौर से वो लोग बहुत ही प्रीडिस्पोज्ड होते हैं इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उसमें पूरा टेम्परेचर रेगुलेशन उनका हो जाता है। तो वो लोग खास ध्यान रखें, और जो नॉर्मल व्यक्ति है तो बाहर निकलते समय ये सब प्रिकॉशंस लें, फ्लूइड्स लें, तो इतना ही है आप कर सकते हैं। और अगर कोई सिम्टम आपको लगता है हीट एग्जॉशन का या हीट स्ट्रोक का, तो इमिडिएटली ठंडी जगह पे मूव करके, गीला कपड़ा रख के आप हवा कर सकते हैं।
1: तो हीट वेव किसी को भी प्रभावित कर सकता है, पर जैसा कि आपने बताया कि जिनको शुगर है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें इसका ज़्यादा खतरा रहता है। और कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, मतलब कैटेगरी क्या क्या है जिनके लोगों को इसका खतरा?
3: किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का अगर कोई मरीज़ है, कोई अस्थमा है, कोई COPD है, कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, कोई कैंसर कीमोथेरेपी पे है, ये सब भी प्रीडिस्पोज्ड हैं. बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ये सभी जो हाई रिस्क ग्रुप्स में ही आते हैं.

0: तो प्रेग्नेंट लेडीज की जो आपने बात की उसमें क्या असर पड़ता है उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर हीट वेव का?
1: देखिए, जब आप हीट, अगर आप हीट से एक्सपोज हैं तो आपको पेरिफेरल वेज और डायलिटेशन होता है, यानी कि आपकी जो पेरिफ्रीज की जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट आपके बॉडी से बाहर निकल सके। उसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम जो है आपका बाकी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई, उसके लिए ब्लड कम हो जाता है। तो ऐसे में जो बच्चा है उसका ब्लड सप्लाई भी कम हो सकता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम कोशिश करें ऐसी गर्मी की जगह से बचा कर रखें, और फ्लूइड, फिर से वही बात है, तरल पदार्थ का जितना हो सके सेवन करें।
0: महाराष्ट्र से कोल्हापुर से विजय कुमार स्वामी है हमारे अगले श्रोता।
2: हाँ जी
0: जी,
2: हाँ कनक दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: हाँ दीदी को भी नमस्ते, सर नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: हाँ, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शिवर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी जी।
2: हाँ, मेरा सवाल यह है कि अभी दिन रात पंखे जो चालू है
0: जी,
2: इसका हमारे पर शरीर पर कुछ असर हो सकता है क्या?
0: पंखे का असर तो गलत नहीं होगा।
1: नहीं, पंखे से फायदा है, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर है तब केवल पंखा चलाने से फायदा नहीं है। तब आप एसी चला के, एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री रख के साथ में आप पंखा चलाएंगे तो उससे और आपको 4 डिग्री कम महसूस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एसी का टेम्परेचर 15, 20, 22, 21 नहीं रखना है, 27 रखना है ज्यादा से ज्यादा जो पॉसिबल, और साथ में आप थोड़ा फैन तब चलाएंगे तो वो और मदद करेगा। और जैसे कि पहले वो मैं पूछ रहे थे कि हम सब जगह एसी चल रहा है, इतना गर्म है, तो और हम क्या कर सकते हैं? आपको जितना हो सके अपने छतों पे ग्रीन प्लांटेशन करना चाहिए, उससे थोड़ा सा आपका जो है
0: घर का तापमान, थोड़ा
1: तापमान जो है कंट्रोल रहेगा।
0: और घर के आसपास भी पौधे लगाने चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: हमारे एक श्रोता ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछा है डॉक्टर पटनायक कि आईएमडी की एडवाइजरी और मौसम संबंधी अपडेट आम लोग कहां से और कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
3: देखिए, आईएमडी जो,
0: ये मयंक शेखर जी, मैं आपको नाम बता दूं, मयंक शेखर मिश्रा हैं, ये वाराणसी से उन्होंने पूछा है।
3: हाँ, वाराणसी भी बहुत गर्मी जगह है और वहाँ भी बहुत लस्सी ये सब जो इसलिए भी चलता है। तो देखिए, जो हम जो आईएमडी जो देता है सूचना, जो हीट वेव का अर्ली वार्निंग जो बोलते हैं हम, वो बहुत सारे मैकेनिज्म में हम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहला तो एक है कि हम हमारा वेबसाइट में देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वेबसाइट नहीं करते अपडेट, मान लीजिए वेबसाइट नहीं देते। दो देन दूसरा, हमारा जो ऐप वगैरह है उसमें भी हमारे इसका जानकारी देते हैं। ऐप के साथ साथ हम आजकल क्या कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड किया जाता है, तो उसमें आपका पुरका जानकारी जो यूट्यूब में अपलोड किया जाता है, तो जो जो लोग उसको भी एक्सेस करते हैं उसमें से मिल रहे हैं, आपको ऐप से मिलेगा, व्हाट्सअप में मिलेगा, देन सोशल मीडिया, फेसबुक, आईएमडी का अगर कोई है जिनका अकाउंट अगर करेंगे तो उसमें मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया लेवल में भी है, और हमारे जो रीजनल सेंटर वगैरह, जैसे कि वाराणसी से हमने बताया भाई साहब, तो लखनऊ में हमारा जो रीजनल मेट सेंटर्स है, वहाँ से जो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन, उनका वेबसाइट एक अलग होता है, उनका जो डाटाबेस है जहाँ जहाँ के मैसेज जाता है उनका सारा सब उन्होंने रखा है। तो हर तरह का मीडियम से हम लोगों को प्रेरित करते हैं।
0: इन्होंने ये भी पूछा है कि दिन के कुछ वो विशेष समय क्या है जब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए इतनी भीषण गर्मी में?
3: देखिए, ये दिन में जब टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो लगभग अराउंड 2:30 के आसपास, 3:30 इसी में होता है दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर। लेकिन सुबह से गर्मी शुरू हो जाता है, गर्मी टेम्परेचर भी बढ़ता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब नीचे का ज़मीन भी गर्म हो जाता है वहाँ से भी टेम्परेचर ऊपर रेडिएट होता है। तो ये दोनों का जब ये होता है तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो आपका इसलिए मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग उसी टाइम में 2:30 के बाद आता है, जबकि पहला 12 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं आता है, 2:30 के बाद 3 बजे अराउंड उसमें आता है कि जब दोनों तरफ से रेडिएशन आता है। तो इसलिए उसी टाइम में नेचुरली जब डायरेक्ट सनलाइट है 11 बजे के बाद एटलीस्ट डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा तेज है उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। जब मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है, जब गर्मी धरती के नीचे गर्मी हो गया, गर्म हवा भी नीचे से फेंक रहा है, तो वो भी 3-4 बजे तक, तो
0: मतलब 11 से 4 तक अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। अगला सवाल है रवि जवालिया जी।

0: जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
0: जी, मैं रवि जवालिया जगमीरपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ और सभी सभी विशेषज्ञ को और आपको भी नमस्कार बोल रहा हूँ जी, और आप सभी को और मेरे सभी श्रोता गणों को भी अभिभावक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी।
1: जी आपको भी।
0: हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोरजेटन मशीन पे जट्टा कंपनी में काम करता हूँ, वो मशीन थोड़ी हीट जनरेट करती है, तो मुझे वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी शायद गर्मी का एहसास होता है ये सभी को, तो मैं अपने माध्यम से वैसे तो मुझे पता है, मैं श्रोताओं को भी जान मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि क्या मुझे उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैम जी।
1: ये जहाँ काम करते हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
2: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा, और लिक्विड चीजें लेते
1: हैं। ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
2: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
1: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
2: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया

0: हैं वो मशीन से गर्मी निकलती है काफी, तो क्या सावधानी इनको बरतनी चाहिए?
1: तो जितना हल्का कपड़ा हो सके आप उतना हल्का कपड़ा पहने, और फिर वही अगर एक गीला कपड़ा आप सिर के आसपास लगा सकते हैं तो वो आई थिंक आपको थोड़ा मदद करेगा। और लिक्विड चीजें लेते
0: ये तो हम आपको बार बार बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बार बार बता रही हैं कि आपको जितना हो सके उतना तरल पदार्थ लिक्विड लेना है,
1: और आसपास कहीं पंखा है तो आप पंखा
0: बीच बीच में आप जा सकते हैं वहाँ। डॉक्टर रूपाली, बहुत छोटे बच्चे जो अभी अपनी स्थिति नहीं बता सकते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे को लू लग गई है?
1: जी बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तो बच्चों को गर्मी के समय जैसा सर ने बताया 11 से 4 के बीच में आप घर से बाहर ना भेजें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लू लगने का रिस्क होता है। और बच्चों को हमें बहुत इंश्योर करना है कि वो कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि इस समय हो सकता है बच्चा पानी कम पी रहा है, तो हमें उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों का फ्लूइड इनटेक ठीक रहे, 11 से 4 के समय वो बाहर ना निकले। और बाकी अगर लगता है कि बच्चा कुछ भी सुस्तीपन दिखा रहा है,
0: जैसे बहुत छोटा बच्चा,
1: बिल्कुल
0: जो बहुत, का
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसके लिए
1: सुस्तीपन, दूध नहीं पीना अगर बच्चे इतना छोटा है, बिल्कुल अगर दूध नहीं पीना या बुखार होना तो इमिडिएटली आपको किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी को विजिट करना है और उनकी मदद लेनी है। और बच्चों को भी ढीले कपड़े, ये कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के फुल्के हवादार ढीले कपड़े।
0: अगला सवाल है राकेश जी का शिमला से।
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, और कितना घातक है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जैसे कि अब हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ रही है, तो इसमें मैदानी क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? ये मेरे दोनों सवाल है।
0: जब हिल स्टेशंस पे गर्मी बढ़ने लगी है तो प्लेन्स पे और भी गर्मी होगी, इनका ये पूछना है कि क्या असर पड़ेगा प्लेन्स पे?
3: देखिए, जैसा कि हिल स्टेशन में थोड़ा सा हमारा ये है कि हिल स्टेशन में थोड़ा तापमान प्लेन स्टेशन से थोड़ा कम रहता है, ठीक है, तो इसलिए जैसा कि प्लेन स्टेशन से भी लोग जाते रहते हैं, तो बट आजकल क्या होता है, क्लाइमेट चेंज है तो हिल एरिया में भी जो जैसे कि पहला इतना गर्मी नहीं होता था, आजकल हिल एरिया में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए तो हिल स्टेशन के लिए तो गर्मी आपका धीरे धीरे भी हो रहा है, पहले जो इतना नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन प्लेन एरिया में तो आपका उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेन एरिया में तो थोड़ा गर्मी का ज़्यादा पकड़ेगा, क्योंकि वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऑलवेज थोड़ा सा ज़्यादा है हिल स्टेशन के ऊपर, तो इसलिए हिल स्टेशन में जब हो रहा है तो उसका प्रभाव प्लेन में नहीं है, लेकिन उसका प्लेन में भी रहेगा, जब हिल में हो रहा था तो प्लेन में भी रहेगा।
0: डॉक्टर पटनायक, हीट एक्शन प्लान्स क्या है?
3: हाँ, हीट एक्शन प्लान क्या होता है कि पहला क्या हो रहा था, जब ये एक्शन प्लान नहीं होता था तो हीट क्या धीरे धीरे किल करता है, तो हीट वेव के कारण भी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेथ जो है नंबर ऑफ डेथ बढ़ता गया, तो गुजरात साइड में पहला ये महसूस हुआ कि बहुत सारे जो हीट रिलेटेड डेथ बढ़ रहा है, तो देखा गया कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत अनजान के कारण लोग क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं जानते थे, इसलिए बहुत एक्सपोजर होता था, क्या एक्शन लेना है उनको पता नहीं था, तो इसलिए लोग थोड़ा डेथ 2010-12 में ऐसा हुआ, तो उसमें हीट एक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ उसमें क्या होता है, एक जो जो भी इस राज्य में जहां हीट रिलेटेड ये सब इफेक्ट रहता है तो उन्होंने वन बाय वन थोड़ा हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो पहला मान लो गुजरात में हीट एक्शन प्लान शुरू किया, तो हीट एक्शन प्लान में क्या होता है, ये बहुत सारे म्यूनसिपल लोग जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं, IMD के जो अर्ली वार्निंग देते हैं, और ये बाकी जो एडवाइजरी इशू करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी, ये सारे जो है एक तरीके से रहता है, तो पहला उनको क्या होता है, एक हमारे डिपार्टमेंट से अगले 5 दिन अगले 7 दिन के लिए तापमान कैसा रहेगा वो एक पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन के बाद फिर म्यूनसिपल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर ज़्यादा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उनको फिर मेडिकल अटेंशन देना जाता है।
0: डॉक्टर पटनायक, अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक, आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है, अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप एवं DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये फोन इन प्रोग्राम आपके फोन कॉल से गुलजार होता है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए हमारा नंबर, जिस नंबर पे आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं, 9430029353। नंबर एक बार फिर 9430029353। जी हाँ, और आज के हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं दो दिग्गज सिनेमा की हस्तियों को। एक जिनका कल निधन हुआ, मखमली आवाज़ की मल्लिका सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने कल इस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी मखमली आवाज़ छोड़ गई हैं हमारे लिए। और साथ ही आज याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की कालजयी अभिनेत्री नरगिस दत्त को, उनकी जयंती पर। नरगिस दत्त की मशहूर फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें स्थापित किया था। एक संवेदनशील कलाकार, एक समर्पित माँ और एक मजबूत व्यक्तित्व, नरगिस दत्त भारतीय सिनेमा की अमर धरोहर हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कार्यक्रम में ले रहे हैं हम पहला फोन कॉल। हमारे साथ फोन कॉल पे मौजूद हैं हमारे श्रोता। हेलो, हेलो आकाशवाणी।
1: हाँ हेलो आकाशवाणी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद मोहियुद्दीन ग्राम अग्यासपुर दरभंगा बिहार से सर बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद मोहियुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बस गर्मी है, इतना ही है कि जो हवा साफ बंद है और क्या कहा जाए गर्मियों में।
0: बिल्कुल,
1: आज तो पहली बार आपसे मुलाकात भी हो रहा है सर।
0: बिल्कुल, मैं पहली बार हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त सागर, और गर्मियों में बस एक ही चीज़ तो है कि दिन की तपिश सूरज से हमें छुटकारा दिलाने रात आती है, और इन गर्मियों भरी रात में हेलो आकाशवाणी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी ठंडक आपके दिल को ज़रूर पहुंचाएं।
1: जी
0: जी, मोहिनुद्दीन जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे? जैसा कि आपको पता है हम आज
1: फिल्म का नाम है सर फर्ज।
0: जी जी,
1: और मोहम्मद रफ़ी और कानपुर की आवाज़ों में है सर।
0: बिल्कुल, आपकी फरमाइश का गीत हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं, आनंद लीजिए अपने पसंद के इस गाने का।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल से।
0: तेजस्वी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। कहिए, कैसा चल रहा है सब कुछ?
1: सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अब मानसून आने की चांस है, वो कुछ हवाएं भी चल रही हैं और हल्की हल्की बूंदे भी आ रही हैं, तो कुछ गर्मी से राहत महसूस हुई है करीब सर।
0: बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमें इस गर्मी से निजात मिले और बरसात का और मानसून का हम आनंद ले पाए आप सबों के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो तेजस्वी जी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज?
1: आज सर आप सुनवा दीजिएगा काला बाजार मूवी से, कृष्ण भगवान का भजन है उसमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल तेजस्वी जी, आपकी फरमाइश का गाना आपके रेडियो सेट पर।
1: सर मैं आपको
0: हेलो
1: केसरी सिंह राजपूत।
0: केसरी सिंह राजपूत जी?
1: जी सर,
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा कीजिएगा मैं आपके नाम को नहीं सुन पाया था। केसरी जी, आपकी पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहा हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू। राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी। इस वक्त आप हमारे फोन नंबर 9430029353 पर कॉल लगा सकते हैं और शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर के गाने और साथ ही साथ नरगिस दत्त के फिल्म के गाने। हमारे साथ एक श्रोता लाइन पर बने हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो आकाशवाणी, आप जरा अपने रेडियो सेट को दूर कर लें। हेलो आकाशवाणी, कौन बात कर रहे हैं जनाब? बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रिय कार्यक्रम में। कहा जाए, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं
0: जी। तो आज कौन से गाने की फरमाइश लेकर आए हैं?
1: गाड़ी चलाते हैं, आप ही के लिए आप रहते हैं।
0: अच्छा, गाड़ी चलाते हैं आप? चलिए, तो फिर किसी दिन मुलाकात हो और साथ में चाय भी हो और कुछ बात हो गानों के बारे में।
1: ठीक है
0: जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? मदर इंडिया फिल्म का गाना। तो चलिए, आपकी गाड़ी से ही मिलता जुलता गाना सुनवा देते हैं। मदर इंडिया फिल्म में बड़े प्यार से कहा जा रहा है, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांक रहे। तो आपके पसंद का गाना आपके रेडियो सेट पर, ये लीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक श्रोता। चलिए पहले लेते हैं उनका कॉल और करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी हाँ, कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा
0: हूँ। नमस्कार मनोहर जी, कैसे हैं आप और गाजियाबाद में मौसम का क्या हाल है?
1: मौसम अब ठीक हो गया है, बाकी तीन दिन पहले तो बहुत ही ज्यादा गर्मी था यहाँ पे,
0: अब गर्मी
1: चल रही थी, लेकिन तीन दिन से जो है मौसम ठंडा हो गया है।
0: चलिए ऐसे ही मौसम ठंडा रहे, हम सबको ठंडक मिलती रहे। बहरहाल आपके दिल के को ठंडक पहुंचाने के लिए हम कौन सा गाना भेजें आप तक?
1: जी श्री 420 का गीत सुना दीजिए, क्योंकि आज जो है नरगिस जी जो महान कलाकार थी
0: जी,
1: आज उनकी जयंती है, तो हम उनको सबसे पहले सश्रद्ध नमन करते हैं।
0: बिल्कुल, चलिए आपकी फरमाइश का गाना नरगिस जी के फिल्म श्री 420 से आपके रेडियो सेट पर जा रहा है, सुनते हैं मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद, शुक्रिया।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
0: नमस्कार सर, मैं मोहम्मद जलील अहमद, ग्राम अशराम पोस्ट मिल्की कट, थाना बहादुरपुर, जिला दरभंगा से बात कर रहा हूँ सर।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। कहिए कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं सर, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी अच्छे हों। हेलो ये आकाशवाणी दरभंगा के तमाम पदाधिकारी और आज हेलो आकाशवाणी सुनने वाले तमाम श्रोताओं जो है जो खुशी खुर्रम से जीवन व्यतीत करें, उनके जीवन में खुशी भरे।
1: बिल्कुल, मैं कामना करता हूँ कि आपकी दुआ कबूल हो और हम सब खुशहाल रहें। और मौसम का मिजाज कैसा है आपके घर की ओर?
0: वो गर्मी तो ठीक था, उसके बाद कल से जो है तो बहुत ज्यादा उमस वाली गर्मी एकदम।
1: चलिए उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे आप रेडियो सेट जरा दूर कर लें। हेलो, फोन कॉल तो इनका कट गया लेकिन इनकी फरमाइश हम तक आ चुकी है, तो चलिए इनकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी। हमारे संग बन चुके हैं एक श्रोता, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो।

0: हमारे साथ लाइन पे बने हुए एक श्रोता, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो आकाशवाणी। हेलो
1: आकाशवाणी।
0: जी हाँ, कहा जाए, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं लाल पोखर नगर में पांच दरभंगा से मोहम्मद कलीम दीवाना बोल रहा हूँ।
0: कलीम दीवाना साहब, आप हमारे पुराने श्रोता हैं और लगातार आकाशवाणी दरभंगा से जुड़े हुए हैं, कहिए क्या हाल चाल है आपके?
1: आप तो हमारे बीच जो है सुमन कल्याणपुर तो हम लोग को छोड़ के चले गए और ऊपर वाले के प्यारे
0: जी,
1: तो आज सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना है, राजकुमार फिल्म का गाना है
0: जी। बिल्कुल, मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने गाया है इस गाने को
1: जी सर।
0: तो चलिए कलीम साहब, आपकी पसंद का गाना हम भेज रहे हैं रेडियो सेट पर, सभी श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी, और आज सुनवा रहे हैं आपको सुमन कल्याणपुर के गाए कुछ गाने और साथ ही नरगिस दत्त के फिल्मों से गाने। हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, चलिए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं सर, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से।
0: साबिर परवाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साथी के प्रिय कार्यक्रम में। कहिए जी, कौन से गाने की फरमाइश है आपकी आज?
1: आज बरसात फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: जरूर,
1: हम
0: आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं, आपके रेडियो पर भेज रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी, आकाशवाणी दरभंगा से। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत करें। हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्ते सर, हम चंद्रेश्वर साहब रामपुर पूर्वी जाले प्रखंड से बोल रहे हैं। सर
0: चंद्रेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए कैसे हैं आप?
1: आपको आकाशवाणी स्टाफ को मेरे तरफ से नमस्ते, और मैं हार्दिक शुभकामना भी देना चाहता हूँ। आप लोग कल्याणपुर की विशेष प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कल्याणपुर का जो भी समर कल्याणपुर जी का जो भी अच्छा गाना है, आप अपनी तरफ से सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, हम अपनी ओर से आपको सुनवाते हैं तब जहां आ रहा फिल्म का गाना जो मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने गाया है, बाद मुद्दत के।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं ये गीत।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं हेलो आकाशवाणी। हम आपको बता दें कि हमारा फोन नंबर 9430029353, इसी पे आपसे हमारी बातचीत हो सकती है। तो बिना देर किए नंबर डायल कीजिए। अभी हमारे साथ एक श्रोता मौजूद हैं फोन लाइन पर। हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार नमस्कार सर, मैं रामपट्टी गौसनगर जिला मधुबनी से बोल रहा हूँ सर।
0: शुभ नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम में। बताइए कैसे हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि हम लोगों के बीच आकर के आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप अपना पूरा अपना नाम हम आपका नहीं क्लियर सुन सके तो अपना नाम पूरा बता दें।
0: जी मैं हूँ सागर, आपका रेडियो दोस्त। काफी सालों के बाद फोन इन प्रोग्राम में आप लोगों से बात हो रही है हमारी,
1: इसलिए तो मैं सोच रहा था कि नया सर आया है तो हमसे बात तो होना ही चाहिए। और मैं भी आपको बहुत दिनों के बाद रेडियो पर इस प्रोग्राम में सुनने को मिला है।
0: बिल्कुल, हमारे हमारे साथ तो नाम की दोस्ती नहीं है, हमारे साथ तो आवाज की दोस्ती है और उम्मीद करते हैं ये दोस्ती हमारी लंबी चले।
1: धन्यवाद।
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गाना सुनेंगे
1: आज? मुझे फिल्म मदर इंडिया का गीत सुना दीजिए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, गीत का बोला यही गीत मुझे सुना दीजिए।
0: शुभ नारायण जी, आपकी फरमाइश हम तुरंत पूरी किए देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: जी। हेलो आकाशवाणी,
1: मैं राम कुमार साहब सिमरिया भिंडी पंचायत है कल्याणपुर समस्तीपुर से बोल रहा हूँ। श्रीमान
0: बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी आपका आपके कार्यक्रम में। कहिए कैसे हैं आप?
1: जी हाँ है, सामान्य है। आप लोगों की कृपा है, ऊपर वाले की मर्जी से मैं सामान्य हूँ।
0: बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह हमारे कार्यक्रम के साथ बने रहें। कहिए क्या फरमाइश है आपकी?

0: चांस है सवेरे का, ये अभी तो बर्निंग जो टॉपिक है जिसमें कि सुमन कल्याणपुर जी बहुत खनकती आवाज वाली हम लोगों को बीच से छोड़ के चली गई है, उनका मैं सुनना चाहता हूँ सांझ और सवेरा फिल्म का।
1: जी बिल्कुल, आज हम सारे गाने उन्हीं के गाए हुए सुनवा रहे हैं और नरगिस दत्त को भी याद कर रहे हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर। तो चलिए आपकी फरमाइश हम शीघ्र पूरी कर देते हैं, रेडियो सेट पर सुनिए आप अपनी पसंद का गाना।
0: ठीक है श्रीमान।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
0: जी। हेलो आकाशवाणी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हाशिम बोल रहे हैं।
0: जी मोहम्मद हाशिम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: से बोल रहे हैं सर, दादा मूवी का गाना सुना है, सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में है। अच्छा, ही कर्म करना मौला ही कर्म करना, अच्छा ही करना है।
0: मोहम्मद हाशिम जी, आपकी फरमाइश तो हम पूरी कर देते हैं। और बताइए, आप हैं कैसे अभी? इस गर्मी में कैसा आनंद आ रहा है?
1: सर बहुत गर्मी है, आनंद क्या आया। अब क्या कि हम लोग का बाटल बीच के ये आजम नगर के इस पार हम लोग नदी के साइड में घर है, पेड़ पौधा है, तो इसका राहत है।
0: बिल्कुल,
1: के अंदर जब बाजार जाते हैं तो बहुत प्रसन्न हुआ दोस्त।
0: पेड़ पौधे और नदियाँ ही हैं जो इस समय हमें जीवन दे रही हैं, इस बात को सबों को समझना होगा, है ना? तो चलिए गर्मी का आनंद लीजिए, फलों का मौसम है, फलों के राजा आम का आनंद लीजिए, लीचियों का आनंद लीजिए, और अभी आप आनंद लीजिए अपनी फरमाइश के इस गीत का।
1: जी शुक्रिया।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद दस्तगीर अंसारी बात कर रहे हैं दरभंगा फजुल्ला खां साहब की हवेली वार्ड नंबर 29।
0: दस्तगीर अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सी फरमाइश है आज आपकी?
1: आप सबसे पहले बताइए सागर भाई, आप कैसे हैं? आपकी पूरी टीम है ना?
0: बिल्कुल, आप सबकी दुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, हम सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका साथ बना हुआ है तो और आनंद आ रहा है।
1: जी अल्लाह ताला आप सबको लंबी उम्र दे और ये दुआ करते रहेंगे। और आवाज के बादशाह हैं आप लोग, अल्लाह ने आवाज दिया है आप लोग को,
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: आवाज के साथ,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तगीर जी ऐसे ही बने रहिए, रेडियो सुनते रहिए, आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हमारी आवाज में अपने आप खनक आ जाती है।
1: जी जी जी जी जी जी
0: जी, बताइए दस्तगीर साहब गाना कौन सा सुनवा दूं?
1: हमको ब्रह्मचारी का सुना दीजिए।
0: ब्रह्मचारी फिल्म का
1: गाना पसंद है, हमारी भी पसंद है, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में,
0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज है।
1: जी जी जी
0: जी जी जी, बिल्कुल, चलिए आपकी फरमाइश का ये गाना बेहतरीन गाना आप सुनिए, अभी आनंद लीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया आपका भी हमें फोन करने के लिए।
1: अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, शुक्रिया मेरे भाई,
0: बहुत शुक्रिया।

0: राजकुमार जी, राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी में। अपनी फरमाइश बताइए। राजकुमार जी, आपको बताते चलें कि आज हम सुनवा रहे हैं नरगिस जी के फिल्मों के गाने और सुमन कल्याणपुर के फिल्मों के गाने।
1: ठीक।
0: कौन सा गाना सुनेंगे? ठीक है, उन्हीं की फिल्म का एक गाना सुनवा देते हैं, अनाड़ी फिल्म से, लता जी और मुकेश जी की आवाज में। चलिए तो आनंद लीजिए इस गाने का। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर
1: जमाने। हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी
1: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: जी मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से चंद्रप्रभाकर बोल रही हूँ।
0: चंद्रप्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। बताइए कैसी हैं आप?
1: शुक्रिया जी, मैं बहुत अच्छी हूँ जी, बहुत बढ़िया हूँ।
0: और इन गर्मियों के मौसम में क्या खास चल रहा है?
1: गर्मी तो बहुत है जी, धूप तेज है, गर्मी बहुत है, गर्मी है, बहुत परेशान है। अभी आंगन में बैठे हैं और आपको कॉल लगा रही थी तो लग गई, तो ऐसे ही चलता है जी गर्मी में, और क्या करेंगे।
0: बिल्कुल, मौसम को तो आना जाना है, पर आकाशवाणी के साथ जो आपका साथ है वो सदियों पुराना है और सदियों तक चलना है।
1: जी
0: हाँ, बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी आज गाना सुनेंगे, सुमन कल्याणपुर की आवाज में, उसका तो निधन हो गया और वो तो बहुत गाने गा चुके हैं, तो उसकी उनकी आवाज में बहुत बढ़िया जादू है, तो उनकी जो भी फिल्म हो उनकी आवाज में गाना सुनेंगे, सुना दीजिए जी।
0: जी बिल्कुल, सुमन कल्याणपुर जी।

0: की बहुत सारे नगमों को लेकर के हम यहाँ तैयार बैठे हैं आपके लिए, और आपको सुनवाते हैं अभी उनकी आवाज़ में एक बेहतरीन गाना जिसमें उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का आखिरी फोन कॉल हम ले रहे हैं इस वक्त। हेलो आकाशवाणी
1: हेलो
0: जी, बताइए कौन जनाब बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: चलिए हारून साहब, कार्यक्रम का समय खत्म होने को है लेकिन आपका कॉल लग गया, आपसे बातचीत हो गई हमारी। बताइए अपनी फरमाइश।
1: चोरी चोरी का सुना देना,
0: चोरी चोरी फिल्म का गाना आपको सुनवा दें। नरगिस जी की बेहतरीन अभिनय में से एक फिल्म है ये, उनकी अभिनीत।
1: कॉल लगा तो आपने लगा कॉल
0: जी। चलिए, लेकिन आपकी फरमाइश हम पूरी किए देते हैं, समय बहुत कम है, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी

कड़ी की सुनिया कह रहे हैं कि हेलो आकाशवाणी का आज का यह अंक यहीं समेटना होगा, तो इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त सागर को। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।

अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही देर में समाचार होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: Both sides underscored the importance.
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने आज नागरिकों को आश्वस्त किया है कि ईंधन, खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव अनुपम मिश्रा ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में मजबूत स्थिति में है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी खुदरा दुकानों पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव मनोज मुत्तथिल अयप्पन ने बताया कि सरकार ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिसमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpgvitrakchayan.in पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने, संगठन के विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आर.एन. नवी ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी डबल इंजन सरकार में नई टीम पूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता और जनसेवा की भावना के साथ काम करेगी। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए गरज के साथ तूफानी मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi today. The discussions covered trade, defence, border management, culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in the areas of trade and investment, development, cooperation, health, education and energy.

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता